0: नो नव्येभिर् वृषकर् मुन्नक्थैः पुराम् दर्तः पायुभिः पाहि शग्मैः दिवो दासेभिरिन्द्र स्तवानो वावृधीथा अहोभिरिवद्यौः। शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य संपन्न हे इंद्रदेव, आप नवरचित स्तोत्रों से संतुष्ट होकर सुखप्रद साधनों और हमारे अनुष्ठित कर्मों का संरक्षण करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता को द्युलोक में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे स्तोत्र आपकी शक्ति को बढ़ाएं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंककर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांग कर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया। उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है। मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंसी समूह क्वाहोग क्लेम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं। ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग खोल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंसी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंसी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंसी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
5: सुनो कहानी। कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। सुनो कहानी कार्यक्रम में जीवन की सच्चाइयों को दर्शाती हम कुछ कहानियां आपको सुनाते हैं और आज हमने कार्यक्रम में लिया है प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कप्तान साहब।

जगत सिंह को स्कूल जाना बिल्कुल कुनैन खाने जैसा था, या कहिए मछली का तेल पीने जैसा था। वो सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियां भी बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार देहातों में दूर निकल जाता। गालियां खाने में जैसे उसे मजा आता था। गालियां खाने का कोई भी अवसर वो अपने हाथ से नहीं जाने देता था। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्को को पीछे से पकड़ कर खींचना, बुजुर्गों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता है, पर हाँ, दुर्व्यसनों का दास होता है, और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को भी जब भी अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा लेता था। नगद ना मिले तो बर्तन और कपड़े ले जाता था। उसे कोई संकोच नहीं होता था। घर में शीशियां और बोतलें थी, वो सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार में बेच दी थी। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में थी, उसके मारे तो एक नहीं बची। और इस कला में वो ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कानीसों के सहारे अपने दो मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया था वो, और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी सी थाली लेकर उतर आया था, और घर वालों को आहट तक नहीं मिली थी। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का ये डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा सपना नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। देहातों में जो भाजी, साग, उपले, ईंधन मुफ्त मिल जाते थे वो यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। और इस कठिन समय में जगत सिंह की हाथ लपकियां बहुत अखरती थी। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा था। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से पिता की मार खा लिया करता था। अगर वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता तो ना हिल नहीं पाते वो, पर जगत सिंह इतना सीना जोर नहीं था। हाँ, मारपीट, घुड़की, धमकी किसी का असर नहीं होता था उस पर। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ दूर दूर से दौड़ती, बहनें गालियां देती, मानो घर में कोई छुट्टा सांड घुसाया हो। बेचारा उल्टे पांव भागता था। कभी कभी तो दो दो तीन तीन दिन तक वो भूखा रहता था। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वो निर्द्वंद हो गया था। जहां नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो मिल जाता वो खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता वो उससे चौकन्ने हो गए। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर उसकी दाल नहीं गली। नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो धार चढ़ गए। गांजे वालों ने धुआंधार तकादे शुरू कर दिए। हलवाई कड़कती आवाज में बात करने लगा। अब बेचारा जगत जहां से निकलता वहीं से उसको सुनना पड़ता। रात दिन ताक झांक में रहता, पर उसकी घात नहीं मिल रही थी। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागों छीका टूट ही गया। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने हरकारा या डाकिया शरारत कर जाए। किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की उन्हें सुध नहीं रही। अब जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था। पैसों के लोभ से जेब टटोली, उसे तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे हुए थे। वो कई बार टिकट चुरा कर आधे दामों पर बेच चुका था। उसने तो चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो वो कभी नहीं छूता। लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ लिया और उसमें से नोट निकल पड़े तो वो बड़े संकट में पड़ गया। फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कार रहा था। उसकी दशा तो बिल्कुल उस शिकारी की तरह हो गई थी जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति नहीं थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंख में एक नींद नहीं थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी, इसमें तो संदेह नहीं था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं था,
10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम भी नहीं चलेगा, बस्ती में वो कई दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई ना कोई जरूर ही उसका पता बता देगा और वो पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए तो कुछ ना कुछ खर्च भी तो पास होना चाहिए ना। यही सब उसके मन में चल रहा था, तो दूसरी तरफ मन ने कहा कि क्यों ना वो लिफाफे में से एक नोट निकाल ले, ये तो मालूम हो ही जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है, और दादा के पास रुपए तो हैं, दे देंगे। यही सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके कान में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हो गया कि क्यों ना ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो अरे वाह, बड़ा मजा आ जाए। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सारा रुपया जमा करके घर आ जाएगा और लोग चकित हो जाएंगे। बस उसने मन की मान ली, लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपए के नोट थे। 200 रुपए में तो दूध की दुकान खूब चलेगी। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और है क्या। लेकिन देखो तो कितने ठाट हैं, रुपयों की चरस उड़ाता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए रखता है। नफा ना होता तो ये ठाट कहां से निभाता। इस आनंद कल्पना में वो इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाएं और वो लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वो मुंबई चल दिया और दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। मुंबई शहर, मुंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था। राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना का नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना और बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो। साहब, फौज में भर्ती कर लीजिए। सैनिक ने कहा, मरने से तो नहीं डरते। जगत सिंह ने भी तुरंत जवाब दे दिया, बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसमें भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। जगत ने भी जवाब दिया। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब है, मन चला हिम्मत का धनी जवान है ये, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हो गया। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वो जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वो भूमि जल में विलीन हो गई तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाक कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई थी। वो हमारा छोटा सा अपना कस्बा, गांजे की दुकान, सैर सपाटे, सुहृदय मित्रों का जमघट आंखों में फिरने लगा था। कौन जाने फिर कभी भेंट होगी या नहीं। एक बार तो वो इतना बेचैन हो गया कि जी में आया कि पानी में कूद जाए। जगत सिंह को अदन में रहते अब 3 महीने गुजर गए थे। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिनों तक उसे मुग्ध रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत हो गए। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वो दिन याद आया जब एक बार बीमार पड़ गया था। उसके बचने की आशा नहीं थी, पर ना तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी न बहनों को, केवल माँ थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी थी, अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीरव रात्रि में रोते देखा था। वो स्वयं रोगों से जीर्ण हो गई थी, लेकिन उसकी सेवा सुश्रुवा में वो अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं था। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे। वो इसी शोभ और नैराश्य में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखता रहता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी,
किंतु लज्जा और ग्लानी के कारण वो टाल रहा था। आखिरकार एक दिन उससे नहीं रहा गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा था। अंत में उसने शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गई थीं, मैं इन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच ना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। बस ये पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ दिया। उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। महीना गुजर गया, जवाब नहीं आया। अब जगत का जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आया? कहीं माता जी बीमार तो नहीं? हो सकता है शायद दादा ने क्रोधवश जवाब ना लिखा हो। हे भगवान, कोई और विपत्ति तो नहीं? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख ली। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाते। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाता। आज वो पागलों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वो इसी ध्यान अवस्था में बैठा ही था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ये दफ्तर का चपरासी था, उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था।

भी कहा तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, कप्तान ने साफ इनकार कर दिया। मैं अब एक क्षण भी नहीं रह सकता, मुझे जाना है। जगत ने अपना फैसला सुनाया तो कप्तान ने भी अपना फैसला। रहना तो पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लाम पर जाना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई है। जगत के मन में प्रश्न आ गए, लड़ाई छिड़ गई? अब मैं घर नहीं जाऊंगा, हम लोग कब तक यहां से जाएंगे? कप्तान ने बस जवाब दिया, बहुत जल्द, दो ही चार दिनों में। चार वर्ष बीत चुके थे, कैप्टन जगत सिंह का सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं था। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती थी, उसे अपने सिर करना उसी का काम था। हल्ले और धावे में वो सदैव सबसे आगे रहता, उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। इसके साथ ही वो इतना विनम्र, इतना गंभीर और इतना प्रसन्नचित रहता कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते। उसका पुनर्जीवन हो गया था। उस पर अफसरों का इतना विश्वास था कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते थे। जिससे पूछे वही वीर जगत सिंह की विरुदावली सुना देता था। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाल लाया, कि कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर वो निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं, मानो वो काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जगत सिंह को अवकाश मिलता, वो अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद करता था और दो चार आंसू बहा लेता था।

वो प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता था और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि जब वो अपनी माता को पत्र ना लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की थी, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे थे। वो कौन दिन होगा जबकि वो उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करेगा और उसके सिर पर हाथ रखकर पिता आशीर्वाद देंगे। 4.25 साल बीत गए। संध्या का समय, नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है और उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हैं, किंतु बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास सा बैठा है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है, देह अस्थि पंजर। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर जैसे रख दी हो। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया है। आए भी कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से नहीं आया? भक्त सिंह ने कंपित स्वर में कहा, घर में है ही कौन, तो घर नहीं चलोगे? अब मेरा घर कहाँ? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। यही जवाब थे बूढ़े भक्त सिंह का। आज 4 साल के बाद भक्त सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का तो सर्वनाश हो गया था, आबरू मिट गई थी, घर बर्बाद हो गया था और उसकी स्मृति भी उन्हें असहनीय थी। किंतु आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्हें अपने उसी तिनके का सहारा था। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, पानी तो देगा। मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया, जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार रहता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया, ये उसी का दंड है। जहां प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहां परिवार की रक्षा कैसे हो सकती? यही सब कुछ भक्त सिंह के मन में चल रहा था। सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियां कितनी कोमल और मधुर थी, वायु कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे और पक्षियों का कलरव कितना मीठा।

सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी थी, पर भक्त सिंह के चारों ओर घोर अंधकार था और अंधकार। जेल का अफसर आया, कैदी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित हो गए। जिसका नाम आता वो खुश होकर अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था तो कोई मिठाइयां बांट रहा था। कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम भी दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वो सिर झुकाए धीरे धीरे जेलर के पास गया और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर बढ़ चला, मानो सामने कोई समुद्र लहरे मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वो जमीन पर बैठ गया। वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन अचानक उसने देखा एक सैनिक अफसर घोड़े पर सवार जेल की ओर आ रहा है। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारजोबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम ठोक दिया। भक्त सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वो है जिसके लिए देखो फिटन आ रही है और एक अभागा मैं हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं। फौजी अफसर अब पास आ गया था। उसने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह तो पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो चौंक कर बोल उठे, अरे बेटा जगत सिंह। और जगत सिंह रोता हुआ अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की जादू बिखेरती कहानी कप्तान साहब। अब दीजिए भारती को अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बुढ़िया का रहस्य, वह साधारण पत्ती जिसने दुनिया जीत ली। 18वीं शताब्दी के लंदन के चहल पहल भरे चाय घरों में चीनी मिट्टी के एक साधारण कप में क्रांति जन्म ले रही थी, जहां कुलीन वर्ग पैको वसंत की पहली सफेद कोमल कलियों की तलाश में रहता था, वहीं आम जनता बुहिया नामक एक रहस्य की दीवानी हो रही थी। हालांकि यह किस्म राजाओं की पसंद से कोसों दूर थी। वास्तव में ये सीजन की सबसे आखिरी और सबसे देर से की जाने वाली तुड़ाई थी, जिसे चाय के पौधे की बड़ी और खुरदुरी पत्तियों से तैयार किया जाता था। बुहिया का रहस्य परिष्कृत स्वाद का विषय नहीं था, बल्कि यह अर्थशास्त्र और सामाजिक आदतों का एक शानदार तालमेल था। जैसे जैसे वेस्टइंडीज के बागानों से आने वाली चीनी की कीमतें गिरी, चाय कामकाजी वर्ग के लिए मिठास के उपभोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। चूंकि बुहिया उपलब्ध किस्मों में सबसे सस्ती थी, इसलिए यह वे एकमात्र पत्ती थी जिसे आम जनता वहन कर सकती थी। 1700 के दशक के मध्य तक इस साधारण चाय ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कुल काली चाय के आयात में इसकी हिस्सेदारी 37.8% से उछलकर आश्चर्यजनक रूप से 63.3% हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि बुहिया की भारी मात्रा में बिक्री ने उनके वैश्विक संचालन की विशाल लागत को वहन करने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान किया। भले ही सरकारी कर अंततः 100% से अधिक हो गए हों, लेकिन इस किफायती पेय के प्रति जनता के जुनून ने फसल के बचे कुचे हिस्से को पश्चिमी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बना दिया। बुहिया ने यह साबित कर दिया कि बढ़ते हुए साम्राज्य में विपत्ति सबसे शक्तिशाली थी, जिसने हर किसी को चाय के कप तक आने का निमंत्रण दिया।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लो।

0: श्रोताओं, आज कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में हम बात करेंगे बनारस घराने के गौरव कहे जाने वाले पंडित किशन महाराज की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र चमके हैं जिनकी आभा सदियों तक कला के मार्ग को आलोकित करती रहती है। लय, ताल और छंद की इस त्रिवेणी में जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व की खोज करते हैं जिसने साधना से ऐसी सिद्धि हासिल की कि न केवल वो स्वयं कालजयी कहे जाते हैं बल्कि उन्होंने अपने साज को भी परम ऊंचाई प्रदान की।
1: जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज जो धमक है वो सास की है जो किसी भी महफिल की जान होता है। आज बात उस उस्ताद की, उस महान संगीतिक पंडित की जिसकी उंगलियों में गंगा की लहरों का वेग और माथे पर महादेव का तिलक रहता था। आज हम बात करेंगे तबला सम्राट ताल शिरोमणि पंडित किशन महाराज जी की, एक ऐसा फकीर और शेर कलाकार जिसने तबले को संगतकार के पीछे के अंधेरे से निकालकर मंच के ठीक बीचों बीच उजाले में ला खड़ा किया।
0: बनारस घराने के गौरव, तबले के अप्रतिम सम्राट और भारतीय संस्कृति के प्रखर ध्वजवाहक पंडित किशन महाराज केवल एक तबला वादक ही नहीं थे, वे मंच पर संगीत के एक ऐसे महानायक थे जिनकी उंगलियों में गंगा का प्रवाह था, जिनकी थाप में बिजली की कड़क थी और जिनके व्यक्तित्व में एक शेर जैसी दहाड़ और गरिमा थी। उन्होंने तबले को महज एक संगत के वाद्य से ऊपर उठाकर स्वतंत्र वादन के शिखर पर प्रतिष्ठित किया।
1: श्रोताओं, किशन महाराज सिर्फ अपने तबले के लिए नहीं बल्कि अपने कड़क और शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। मंच पर जब वे बैठते थे तो उनका रौब देखने लायक होता था। रेशमी कुर्ता, गले में सोने की कंठी, उंगलियों में अंगूठियां, माथे पर बड़ा सा लाल तिलक और मूंछों पर ताव, वे किसी राजा से कम नहीं लगते थे। वे अक्सर कहते थे, हम बनारस के हैं, किसी से दबकर नहीं बजाते। उन्होंने ये साबित किया कि तबला वादक मुख्य कलाकार से छोटा नहीं होता, वो महफिल का बराबरी का हिस्सेदार होता है।
0: जी हाँ, लेकिन ये बराबरी का दर्जा और ये ठसक यूं ही नहीं आई, इसके लिए पंडित जी ने बरसों कठिन साधना की। दोस्तों, विश्व के प्राचीन और आध्यात्मिक शहर वाराणसी में एक मोहल्ला है कबीर चौरा। यह केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक पवित्र गर्भगृह है। इसी कबीर चौरा की गलियों में बड़े बड़े उस्तादों, पंडितों और कथक नृत्यांगनाओं का बचपन बीता है और इसी मिट्टी में 3 सितंबर 1923 को पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ।
1: और जिस दिन किशन जी का जन्म हुआ वो कोई साधारण दिन नहीं था, वो कृष्ण जन्माष्टमी की पावन रात थी। पूरा देश जब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के आनंद में डूबा था तब कबीर चौरा के इस संगीतकार परिवार में एक बालक की किलकारी गूंजी। कृष्ण जन्म के इस अद्भुत संयोग के कारण ही बालक का नाम किशन रखा गया। उनके परिवार की कई पीढ़ियां संगीत की सेवा में लीन थीं, इसलिए संगीत सीखने के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत तो थी नहीं किशन जी के पिता पंडित हरि महाराज अपने समय के बेहद प्रतिष्ठित और कुशल तबला वादक थे। बालक किशन ने होश संभालते ही घर में 24 घंटे तबले की थाप, डग्गे की गूंज और शिष्यों का जमावड़ा देखा। उनके पिता ने किशन के भीतर छिपी लयबद्धता को बहुत जल्दी पहचान लिया था और उन्होंने खेल खेल में बालक को तबले के मूल अक्षरों जैसे ता, धिन, धा का ज्ञान देना शुरू कर दिया था।
0: लेकिन श्रोताओं, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब किशन महाराज एक अबोध बालक थे तभी पंडित हरि महाराज का अचानक निधन हो गया। पिता के साये के उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बालक किशन के सामने केवल पिता की कमी नहीं थी बल्कि उस महान संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने की चुनौती भी थी जो उनके पूर्वजों ने शुरू की थी। और इसी संकट के समय उनके जीवन में एक मसीहा, एक गुरु और एक पिता के रूप में प्रवेश हुआ, पंडित कंठे महाराज का। पंडित कंठे महाराज किशन जी के सगे चाचा थे और उस समय बनारस घराने के सबसे प्रखर और सम्मानित तबला आचार्यों में से एक थे। वे न केवल अपने अद्वितीय वादन के लिए जाने जाते थे बल्कि संगीत के प्रति उनकी अदम्य अनुशासन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए भी वे प्रसिद्ध थे। भाई के निधन के बाद उन्होंने बालक किशन को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने न केवल किशन के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई बल्कि यह संकल्प भी लिया कि वे किशन को बनारस घराने का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनाएंगे जिसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी।
1: श्रोताओं, हम अपने कार्यक्रम में जब भी किसी महान कलाकार की जिंदगी के डायरी के पन्ने खोलते हैं तो उनमें सबसे अहम इबारत वो होती है जिसमें उनके द्वारा की गई साधना का जिक्र होता है। यही वो समय होता है जब प्रतिभा तप कर कुंदन बनती है और फिर सालों साल की गई मेहनत की सुगंध से पूरी दुनिया सुवासित होती है। संगीत के क्षेत्र में आप नवांकुर हों या युवा साधक, निश्चित ही रेडियो आजाद हिंद के जरिए आप तक पहुंचने वाली इस जानकारी से प्रेरणा लेकर आप भी कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर जगा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं पंडित किशन महाराज के उस सघन साधना काल के बारे में।
0: जी हाँ, पंडित जी के गुरु कंठे महाराज जी की तालीम कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। वह एक कठिन तपस्या थी जहां शरीर को गलाना और आत्मा को स्वरों में ढालना पड़ता था। किशन जी के सीखने के दिनों की दिनचर्या आधुनिक सोच को लगभग झकझोर देने वाली है। बालक किशन को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, कड़ाके की ठंड में भी उठा दिया जाता था। उस पर भी गुरु का आदेश था कि रियाज पर बैठने के पहले शरीर और मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। किशन जी गंगा नदी के घाट पर जाकर स्नान करते और सूर्योदय से पहले गुरु के सामने उपस्थित हो जाते।
1: और पंडित जी के तबले की तालीम की शुरुआत किसी पेचीदा टुकड़े या तिहाई से नहीं हुई। कंठे महाराज ने किशन जी को लगातार 6 महीने तक केवल एक ही अक्षर बजाने का आदेश दिया था और वो था धा। गुरु का कहना था कि जब तक तुम्हारे हाथ से निकलने वाले धा में गंगा के पानी जैसी पवित्रता और गूंज ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, बनारस घराने की वादन शैली को खुले हाथ का वादन कहा जाता है। इसमें उंगलियों के साथ साथ पूरी हथेली और कलाई की ताकत का इस्तेमाल होता है। इस शैली को साधने के लिए हाथों में असीम शक्ति की आवश्यकता होती है
0: और इसीलिए घंटों लगातार भारी तबले पर चोट करने के कारण बालक किशन की उंगलियों की त्वचा फट जाती थी और कई बार उनसे खून निकलने लगता था। जब वे दर्द से कराहते तो कंठे महाराज उन पर तरस खाने के बजाय उन जख्मों पर गर्म सरसों का तेल और कत्था लगा देते थे और कहते थे, बेटा, यह दर्द ही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, बजाते रहो। और उस पर रियाज से बालक का मन न भटके, इसलिए कभी कभी उन्हें एक शांत कमरे में घंटों बंद कर दिया जाता था। उनके पास केवल उनका तबला, पानी का एक घड़ा और गुरुजी की आज्ञा होती थी। दिन में 12 से 16 घंटे का यह अनवरत रियाज किशन जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था।
1: श्रोताओं, पंडित कंठे महाराज केवल बंद कमरों के गुरु नहीं थे, वे किशन जी को बनारस के घाटों पर ले जाते थे। वे कहते थे कि किशन, उस धोबी को देखो जो कपड़े धो रहा है, उसकी थाप में एक लय है। उस नाव चलाने वाले को देखो जो चप्पू चला रहा है, उसकी गति में एक छंद है। मंदिर के घंटों की गूंज सुनो, उसमें एक नाद है। जब तक तुम प्रकृति की इस सहज लय को अपने भीतर नहीं उतारोगे, तुम्हारा तबला केवल शोर मचाएगा, संगीत नहीं पैदा करेगा।
0: पंडित किशन महाराज और पंडित कंठे महाराज का संबंध भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह रिश्ता केवल एक शिक्षक और छात्र का नहीं था। कंठे महाराज के अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे किशन जी को अपनी संतान से भी बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन उनका यह प्यार कभी किशन की तालीम में ढीलापन नहीं लाया। जितने बड़े दयालु पिता थे, उतने ही क्रूर उस्ताद भी थे।
1: जी हाँ, वो सीख भी देते तो उसमें भी काफी कठोरता होती। कुछ ऐसा ही किशन महाराज जी के जीवन का एक बेहद प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद किस्सा है। जब किशन जी लगभग 18-19 वर्ष के थे, तब उनकी कला में काफी निपुणता आ चुकी थी। बनारस की एक स्थानीय महफिल में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। श्रोताओं ने उन्हें पैसों और तारीफों से लाद दिया। किशन जी जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक गर्व और अहंकार का भाव था। वे गुरु के सामने थोड़े अभिमान से बैठ गए।
0: अब उस्ताद तो उस्ताद थे, पंडित कंठे महाराज ने बालक की आंखों में वह अहंकार देख लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे किशन जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। किशन जी दंग रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए पूछा, गुरुजी मेरा अपराध क्या है? आज तो सबने मेरी इतनी तारीफ की है। कंठे महाराज ने बहुत ही गंभीर और वात्सल्य भरे स्वर में कहा, बेटा थप्पड़ तुम्हारी कला को नहीं, तुम्हारी आंखों में आए उस घमंड को मारा है। जिस दिन एक कलाकार यह सोच लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है और वह सर्वश्रेष्ठ हो गया है, उसी दिन उसकी कला का अंत हो जाता है। तारीफें जहर की तरह होती हैं, इन्हें कान से सुनो लेकिन दिल में मत उतरने दो।
1: और फिर श्रोताओं, किशन जी ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और अंतिम सांस तक वे खुद को एक अदना छात्र ही मानते रहे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता, किशन महाराज की ख्याति फैलने लगी। कई बार ऐसा होता था कि मंच पर पंडित कंठे महाराज मुख्य कलाकार के साथ बैठे होते थे और किशन महाराज उनके पीछे तानपुरा या छोटे तबले पर संगत कर रहे होते थे। कंठे महाराज अपनी वृद्धावस्था में जब कभी थक जाते तो वे बीच महफिल में गर्व से मुड़कर देखते और कहते, अब आगे का समा मेरा किशन बांधेगा। जब किशन जी अपनी कड़क बनारसी उठान और रेला शुरू करते तो कंठे महाराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते थे। वे मंच पर ही चिल्ला उठते थे, जियो मेरे शेर, तुमने आज अपने बाप का नाम रोशन कर दिया।
0: श्रोताओ, इन दोनों का संबंध इस कदर आध्यात्मिक था कि वे एक दूसरे के मन की बात बिना बोले समझ जाते थे। जब पंडित कंठे महाराज का अंतिम समय निकट आया तो वे अस्वस्थ थे। किशन जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनके पैर दबाते थे और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते थे। कहा जाता है कि कंठे महाराज ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले किशन जी का हाथ अपने हाथ में लिया, उनकी उंगलियों को चूमा और कहा, किशन मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें बहुत मारा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी उंगलियों में वो वज्र देखना चाहता था जो काल को भी मात दे दे। आज मैं चैन से मर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद बनारस घराने की मशाल बुझेगी नहीं बल्कि और तेज चमकेगी।
1: और दोस्तों, अब बात करते हैं बनारस घराने की वादन शैली और किशन जी के योगदान की। तबले के मुख्य रूप से 6 घराने माने जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, फरुखाबाद, अजराड़ा, पंजाब और बनारस। इन सब में बनारस घराने की शैली अपनी कुछ खासियतों के कारण सबसे अलग और निडर मानी जाती है। जहां दिल्ली घराने में उंगलियों के पोरों का महीन काम होता है, वहीं बनारस घराने में हथेलियों के भारी प्रहारों का प्रयोग होता है। पंडित किशन महाराज इस शैली के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। इसके साथ ही किशन जी के वादन में रेला यानी तीव्र गति का जो वादन होता था, उसकी तुलना गंगा की तेज लहरों से की जाती थी। उनके हाथ की थाप इतनी साफ होती थी कि बहुत तेज गति में भी तबले का एक एक अक्षर यानी बोल श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई देते थे।
0: जी हाँ, और इसके साथ ही किशन महाराज जी का तबले के लिए महत्वपूर्ण योगदान ये है कि किशन महाराज जी से पहले अधिकांश तबला वादकों को मुख्य रूप से एक संगतकार माना जाता था जो मुख्य गायक, सितार वादक या नर्तक के पीछे बैठकर केवल ताल देने का काम करते थे। उन्हें वह सम्मान और स्थान नहीं मिलता था जो मुख्य कलाकार को मिलता था। लेकिन किशन जी ने इस रूढ़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने यह मांग की और साबित किया कि तबला अपने आप में एक संपूर्ण वाद्य है। जब वे मंच पर सोलो परफॉर्मेंस के लिए बैठते थे तो हजारों की भीड़ केवल उनका तबला सुनने के लिए आती थी। उन्होंने तबले को मंच के पीछे से उठाकर सेंटर स्टेज में ला खड़ा किया।
1: दोस्तों, अपने गुरु के स्वर्ग से धारने के बाद भी पंडित जी ने कभी अपने संगीत से कोई समझौता नहीं किया। एक बार की बात है, किसी रियासत के नवाब ने किशन जी को अपने महल में बजाने के लिए आमंत्रित किया। नवाब साहब महफिल के बीच में ही आपस में बातचीत करने लगे और उनका ध्यान संगीत पर नहीं था। किशन जी ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत तबला बजाना बंद कर दिया। नवाब ने हैरान होकर पूछा, महाराज आप रुक क्यों गए? किशन जी ने गरजते हुए कहा, नवाब साहब मैं बनारस का ब्राह्मण हूँ और ये तबला मेरी इबादत है। मैं यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आया हूँ। अगर आपको सुनना है तो अदब से बैठिए, वरना मैं अपना साज उठा रहा हूँ। नवाब साहब को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी।
0: उनकी बनारसी ठसक के इसी तरह के एक संस्मरण का जिक्र पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने एक बार याद करते हुए बताया था कि एक बार वे और किशन जी एक ग्रामीण इलाके में खुले मेले में परफॉर्म करने गए थे। वहां दर्शकों की भीड़ बहुत शोर मचा रही थी। लोग गाय, ऊंटों और अपने मवेशियों की बात कर रहे थे। किशन जी ने माहौल देखा तो वे अपनी बंदूक, जो वे अक्सर अपने साथ शौकीय तौर पर रखते थे, मंच पर लेकर आ गए। उन्होंने मंच पर बैठकर शांति से बंदूक साफ करने का नाटक किया। हवा में दो हवाई फायर किए और बंदूक को जनता की तरफ घुमा दिया। इसके बाद तो पूरे मेले में सन्नाटा छा गया और दोनों कलाकारों ने शांति से अपना कार्यक्रम पूरा किया।
1: दोस्तों, पंडित किशन महाराज ने अपने दौर में लगभग हर बड़े कलाकार के साथ मंच साझा किया और उनकी जुगलबंदियां आज भी संगीत के इतिहास की धरोहर हैं, जैसे पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान। ये दोनों दिग्गज सुरों का जाल बुनते थे तो किशन जी का तबला उन सुरों को एक ऐसी लयबद्ध गति देता था कि पूरी महफिल झूम उठती थी। इसके साथ ही पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी के कथक नृत्यों के साथ किशन जी की संगत अद्भुत होती थी। बिरजू महाराज जब पैरों से घुंघरुओं की तान छेड़ते थे तो किशन जी तबले पर उसका ऐसा सटीक जवाब देते थे कि दोनों के बीच का संवाद देखने लायक होता था। पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी के साथ उनके कॉन्सर्ट्स केवल संगीत के नहीं बल्कि थिएट्रिकल रूप से भव्य होते थे। बिरजू महाराज के पैरों की घुंघरू की गति पर किशन जी जब तबले से हूबहू वही ध्वनि निकालते थे तो वो मंच का सबसे रोमांचक क्षण होता था। लोग इन कार्यक्रमों को देखने के लिए महीनों पहले से टिकटें बुक कर लिया करते थे।
0: वैसे दोस्तों, पंडित किशन महाराज का संगीतमय सफर केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी गूंजती हुई थाप और अद्वितीय लयकारी से देश विदेश के हर बड़े कॉन्सर्ट हॉल को मंत्रमुग्ध किया। मंच पर उनका ऐसा दबदबा था कि विदेशी श्रोता, जो भारतीय ताल व्यवस्था से पूरी तरह परिचित नहीं थे, वे भी उनकी गणितीय शुद्धता और प्रस्तुतिकरण के दीवाने हो जाते थे। आइए अब आपको बताते हैं उनके कुछ ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के बारे में। पंडित किशन महाराज ने 1960 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वैश्विक स्तर पर तबले को एक सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।
1: उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी दौरा ब्रिटेन दौरा और एडिनबर्ग फेस्टिवल माना जाता है। 1965 में उन्होंने यूके के विश्व प्रसिद्ध एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल और कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल में भाग लिया। इन समारोह में पश्चिमी देशों के महान संगीतकारों और समीक्षकों के सामने उन्होंने बनारस घराने के खुले हाथ के वादन का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश प्रेस ने उनकी जटिल तिहाई और चक्करदार टुकड़ों की गणितीय सटीकता को मैजिक करार दिया था।
0: श्रोताओं, इसके साथ ही शीत युद्ध के दौर में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत किशन जी ने सोवियत संघ के कई शहरों जैसे मॉस्को, लेनिनग्राद की यात्रा की। वहां के श्रोताओं के लिए तबले की यह गति और धमक बिल्कुल नई थी। उनके सोलो वादन के बाद रूसी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी और कई मिनटों तक तालियां बजाई थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड, पोलैंड, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों का व्यापक दौरा किया। यूरोपीय दौरों पर वे अक्सर रागों के समय चक्र और भारतीय तालों की जटिल लयकारी को पश्चिमी दर्शकों को बहुत ही सरल और रोचक अंदाज में समझाते थे।
1: जुलाई 1995 में लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में उनका एक ऐतिहासिक लाइव तबला सोलो आयोजित हुआ, जिसे बाद में एक प्रसिद्ध लाइव एल्बम के रूप में भी जारी किया गया, और उन्होंने वर्ष 2002 में रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में उस्ताद विलायत खान साहब के साथ एक यादगार प्रस्तुति दी थी, जिसका शीर्षक था When Time Stood Still। ये कॉन्सर्ट आज भी शास्त्रीय संगीत के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग में गिना जाता है।
0: दोस्तों, हमारे देश का ऐसा कोई प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन नहीं था जो पंडित किशन महाराज की थाप के बिना पूरा माना जाता हो। हम आपको बता ही चुके हैं कि मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉन्सर्ट में बजाना शुरू कर दिया था। तो हम आपको संक्षिप्त में उनके कुछ महत्वपूर्ण भारतीय कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर के ऐतिहासिक मंच पर किशन जी ने कई बार अपनी कला का जोहर दिखाया। यहाँ संगीत पारखियों के सामने बनारस घराने की कड़क और दमदार बंदिशें पेश करना उनकी खासियत थी।
1: और जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे यहाँ कोलकाता को शास्त्रीय संगीत का मक्का कहा जाता है। डोवर लेन कलकत्ता के मंच पर पंडित किशन महाराज का होना महफिल के सुपरहिट होने की गारंटी माना जाता था। यहाँ उन्होंने पंडित रविशंकर और उस्ताद अमजद अली खान के साथ कई ऐतिहासिक जुगलबंदियां प्रस्तुत की। साथ ही सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे के बेहद अनुशासित और विशाल मंच पर किशन जी का सोलो वादन सुनने के लिए रात रात भर हजारों संगीत प्रेमियों की भीड़ डटी रहती थी।
0: दोस्तों, इसके अलावा नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में उस्ताद अमजद अली खान और पंडित किशन महाराज का एक ऐसा ऐतिहासिक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें राग श्री और राग खमाज पर उनकी संगत इतनी बेजोड़ रही कि रोमांचित होकर श्रोता अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे। किशन महाराज जी केवल हिंदुस्तानी यानी उत्तर भारतीय संगीत तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने भारतीय संगीत के दोनों स्वरूपों उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी प्रयास किया।
1: जी हाँ, पंडित जी का दक्षिण भारत के महान मृदंगम विद्वान पंडित पालघाट आर रघु के साथ किया गया ताल वाद्य कचहरी जुगलबंदी कार्यक्रम संगीत जगत में मील का पत्थर माना जाता है। एक तरफ तबले की बनारसी गूंज और दूसरी तरफ मृदंगम की थाप, इन दोनों का संवाद गणित और कला का ऐसा अद्भुत मिश्रण था जिसकी कोई तुलना नहीं है।
0: श्रोताओं, वैसे तो पंडित जी का मुख्य क्षेत्र शास्त्रीय मंच ही था, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को भी अपनी कला से समृद्ध किया। सन 1955 में आई महान निर्देशक वी शांताराम की कालजयी फिल्म झनक झनक पायल बाजे में शास्त्रीय नृत्य और संगीत को मुख्य आधार बनाया गया था। इसके संगीत में किशन जी के तबले की थाप ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान की। और फिर 1965 में आई नवकेतन फिल्म्स की क्लासिक फिल्म गाइड के गानों और पृष्ठभूमि संगीत में, विशेषकर जहां वहीदा रहमान के नृत्य के दृश्य हैं, किशन जी के तबले का जादू साफ सुना जा सकता है।
1: दोस्तों, किशन जी को मंच पर ड्रामा और भव्यता पसंद थी। वे अपने तबले पर भारी मात्रा में टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करते थे। जब वे बहुत तेजी से और कड़क हाथ से तबले पर प्रहार करते थे तो पाउडर हवा में उड़कर मंच पर एक कृत्रिम धुंध या कोहरे जैसा माहौल बना देता था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था, और इसी समय मंची प्रकाश में उनकी छवि देखती ही बनती थी।
0: भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने किशन जी की महान साधना को समय समय पर सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें वर्ष 2002 में प्रदत्त भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो यह दर्शाता है कि वे भारतीय संस्कृति के कितने बड़े स्तंभ बन चुके थे। इससे पहले उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही देश की सबसे बड़ी कला अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया।
1: श्रोताओं, पंडित किशन महाराज ने अपनी कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गुरु कंठे महाराज से मिली तालीम को अगली पीढ़ी में बहुत ही ईमानदारी से बांटा। उनके प्रमुख शिष्यों की एक लंबी सूची है जो आज पूरी दुनिया में बनारस घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले उनके पुत्र पंडित पूरन महाराज, जिन्होंने पिता की इस कठिन विरासत को संभाला है। और आज के समय के सबसे शक्तिशाली और कुशल तबला वादकों में से एक पंडित कुमार बोस, जिनके वादन में किशन जी की छवि साफ दिखाई देती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वादक पंडित सुखविंदर सिंह पिंकी और पंडित संजू सहाय, जिन्होंने बनारस घराने की परंपरा को, इस शैली को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया।
0: जानते हैं दोस्तों, तबले के महानतम उस्ताद अहमद जान थिरकवा ने एक बार किशन महाराज जी को देखकर कहा था, मियां किशन, इस मुल्क में सिर्फ तुम और मैं तबला बजाते हैं, बाकी सब तो तबली यानी छोटा खिलौना बजाते हैं। यह टिप्पणी दर्शाती है कि देश हो या विदेश, पंडित किशन महाराज का तबला महज एक साज नहीं बल्कि मंच पर गरजने वाला एक सिंह था।
1: दोस्तों, 4 मई 2008 को 84 वर्ष की आयु में वाराणसी के कबीर चौरा के सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही भारतीय तबला वादन के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। काशी के साथ ही पूरे देश के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। गंगा के घाटों पर उनके अंतिम संस्कार के समय हजारों नम आंखें इस महान सपूत को विदा कर रही थीं। आज भले ही किशन जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी दुनिया में कहीं कोई तबला वादक पूरे स्वाभिमान के साथ मंच के केंद्र में बैठकर धा की गूंज पैदा करेगा, जब भी बनारसी उठान की कड़क सुनाई देगी और जब भी गुरु शिष्य के रूहानी संबंधों की बात होगी, पंडित किशन महाराज का नाम अमर रहेगा। वे संगीत के इतिहास के पन्नों पर अपनी थाप से एक ऐसा अमिट हस्ताक्षर कर गए हैं जिसे समय की कोई भी लहर मिटा नहीं सकती।
0: जी हाँ, पंडित किशन महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक घोर तपस्या, स्वाभिमान और ईश्वर से मिलन का मार्ग है। एक अनाथ बालक से लेकर पद्म विभूषण और तबला सम्राट बनने तक का उनका सफर कठोर परिश्रम और गुरु भक्ति की ऐसी सर्वोत्कृष्ट मिसाल है जो मशाल बनकर सदियों तक संगीत साधकों के रास्तों को रोशन करती रहेगी। तो आज कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में बात किसी और मूर्धन्य कला सड़क की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, आलेख संदीप शर्मा, वाचन स्वर विजयकांत नायक और
1: मनीषा चतुर्वेदी,
0: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है 29 मई और ये दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक अपने पूरे तन मन से अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत की सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, हर परिस्थिति हर मौसम का सामना करते हुए। न उन्हें आग उगलती गर्मी से घबराहट है, न -50 डिग्री में खून जमा देने वाली बर्फ की कपकपी से। उनके सीने में हर वक्त धड़कता है तो सिर्फ हिंदुस्तान, और रगों में लहू बनकर दौड़ती है निश्चल राष्ट्रभक्ति। भारत का हर नागरिक इन वीरों के प्रति सदैव से ऋणी था और रहेगा। श्रोताओं, आज का दिन यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो समर्पित है उन वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए, जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में काम करते हैं। चलिए तो आज के दिन को हम मनाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, महत्व क्या है, संदेश क्या है। जानते हैं ये सब कुछ हमारे आज के अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर से, जो हमारे साथ आज की परिचर्चा में उपस्थित हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: सर, पहला प्रश्न आपसे यही करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इस दिन का महत्व क्या है और कैसे हम इसे मनाते हैं?
2: यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स डे आज के दिन 29 मई को
1: जी।
2: जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में के जो मिशंस हैं उसमें जो सर्विंग मिलिट्री, पुलिस और सिटीजन सिविलियन कर्मी जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
2: वो विदेशों में बहुत दूर दूर और संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपनी नौकरी, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
2: इनकी वर्दियों में जो कॉमन चीज है, जिनको इनसे पहचाना जाता है, वो उनकी ब्लू हेलमेट है
1: जी।
2: और ब्लू बेरे है, तो उनका जो प्रोफेशनल स्किल है, उनका डेडिकेशन है, ये दिवस उनको मान्यता देता है। साथ ही जो शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन सैनिकों को कई बार बलिदान करना पड़ता है शांति मेंटेन करने में, तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। अब इस तिथि का महत्व ऐसे है कि 29 मई को 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो पहला, सबसे पहला शांति रक्षा मिशन था, यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन था, उसका जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना हुई थी, UNTCO की। ये था लेबनान और इजराइल के बीच जो संघर्ष था उस समय, उसके बीच उनको वहां पे शांति बहाल करने के लिए था। आज का दिन उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने सेवा करते अपनी जान गंवाई। काफी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के जो सैनिक इसमें जाते हैं, उन्होंने जान भी गंवाई है। विश्व भर में सक्रिय अभियानों में सेवारत हजारों कर्मियों के उनके योगदान को भी उजागर करता है, और ये जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है कि जो नागरिकों की रक्षा करने, स्थिरता को बढ़ावा देने में जो शांति सैनिक लगे हुए हैं, शांति रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है
1: जी।
2: उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है, जोर डालता है और जागरूकता बढ़ाता है। इसको मनाने के लिए इसमें पुष्पांजलि समारोह होते हैं, पदक प्रदान समारोह होते हैं, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में होते हैं और तमाम मिशन हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर भी होते हैं
1: जी जी।
2: पूरे विश्व में इनके आयोजन होते हैं, जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन है, 193 मेंबर नेशंस हैं संयुक्त राष्ट्र के
1: जी जी।
2: तो जहाँ जहाँ पे मिशन हैं वहाँ वहाँ होते हैं। हर एक जगह पर, हर एक वर्ष में एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे हम थीम कहते हैं
1: जी जी।
2: कि इस साल की थीम क्या है
1: जी जी।
2: तो इस साल 2026 की जो थीम है, यह इनकी इन्वेस्ट इन पीस
1: जी जी।
2: और इस तरीके से थीम डिसाइड की जाती है कि उनकी चुनौतियों को उजागर किया जा सके। इन्वेस्ट इन पीस मतलब शांति रक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें इन्वेस्ट करें।
1: सर, दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया शांति सेना, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या है इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी? हम जानना चाहेंगे आपसे सेना के इसके चार्टर, भूमिका, संरचना के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,
1: जी जी,
2: यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा तैनात
1: जी
2: एक बहुपक्षीय, जिसे कहते हैं मल्टी फोर्स, मल्टी कंट्री की जो है मल्टी मेंबर फोर्स है, एक फोर्स खड़ी करते हैं, बल करते हैं
1: जी,
2: जो संघर्ष से शांति की ओर बढ़ाने में सहायता करती है। किन देशों को? जहाँ पे विवाद चल रहे हैं, जहाँ पे संघर्ष है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी चीजों के, तो सदस्य देशों के सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी मिलकर एक कंटिजेंट बनाते हैं और उस जोखिम वाले क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, जैसा उनको मैंडेट किया जाता है। संघर्षग्रस्त क्षेत्र जो है उसमें शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया एक बल, जिसको कह लें अंतर्राष्ट्रीय बल, ये है यूएनपी की पीस कीपिंग फोर्स। ब्लू हेलमेट, जैसे मैं बता चुका हूँ, ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट के नाम से इनको जाना जाता है। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको संचालित करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर नजर रखते हैं और सर्वप्रथम 1948 में इसका गठन, आपको जैसे बताया, विशेष रूप से फिलिस्तीन में इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में और भारत में कश्मीर और कश्मीर के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के, हाँ, उसमें किया गया था। अब इसकी तैनाती के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक आवश्यकता, एक बेसिक चीजें हैं कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होते ये शांति बल वहाँ तैनात नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
2: तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भी सहमति बनी है तभी वहाँ पे ऑब्जर्वर ग्रुप आया, इसराइल फिलिस्तीन के बीच पहले सहमति बनी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ होगा उसके बाद आया। शांति सैनिक निष्पक्ष रहते हैं, निष्पक्ष का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय रहते हैं,
1: जी जी जी,
2: वो दोनों पक्षों से अलग हटके अपने शांति व्यवस्था को, जो उनको मैंडेट दिया हुआ, जो उद्देश्य दिया हुआ, उसकी पूर्ति करते हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते।
1: जी जी।
2: ये नहीं कि किसी ए ने बी के ऊपर हमला कर दिया तो वो बी की तरफ से फायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो दोनों के बीच में एक विवाद को हटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कमजोर का भी साथ दे दें या उस स्थिति में, या उस स्थिति में भारी पड़ले लोगों का साथ दे, नहीं, बीच में जा करके उनको अलग करेंगे। इस तरीके का उनका टैक्टिक्स रहती है, उस तरीके की नीतियां रहती हैं। और तीसरा है कि बल प्रयोग ना करना,
1: जी जी,
2: कि वो बल का प्रयोग आत्मरक्षा में करेंगे या जो उनको मैंडेट दिया हुआ है, जो उनको उद्देश्य दिया हुआ है उसकी रक्षा में करेंगे, अदरवाइज वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते। विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं जिसके लिए उन्हें मैंडेट दिया जाता है पहले से कि हाँ, वो अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वे मतलब आजाद हैं कि हाँ वो फ्री हैं कि बल का प्रयोग, सारे सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर वो बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और जिसके लिए मैंडेट सिक्योरिटी काउंसिल ही देती है।
1: जी जी।
2: इसका जो है चार्टर की जो आप बात कर रही थी, जो भूमिकाएं हैं वो है कि नागरिक आबादी की रक्षा करें, मुख्यतः नागरिक आबादी की रक्षा करने के लिए ही है, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब इसको आप अपने ही देश में ले लें, कश्मीर में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था उसके हिसाब से ले लें। शांति प्रक्रियाओं की निगरानी करना है, शांति समझौतों को लागू करना है, जो समझौते हुए हैं जिसके बाद ऑब्जर्वर ग्रुप या ये मिशन या मिलिट्री ग्रुप्स आए हैं, शांति सेना वहां तैनात की गई है, तो जो समझौते हुए उनको लागू करना है, समझौतों के हिसाब से, समझौतों को ना तोड़े नहीं तो फिर वहां संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। संघर्ष या प्रकोप को बढ़ने से रोकें, मानवाधिकारों की रक्षा करें और लॉ को, लॉ एनफोर्समेंट उसको मजबूत करें, और चूंकि शांति बहाल कर रहे हैं तो जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, डेमोक्रेटाइजेशन है, सरकार का इलेक्शन है उसको करें, और जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प, उसमें आगे बढ़े।
1: सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी उनका उद्देश्य हमें बताया, तो किस तरह का इनका संगठन होता है, इनके ऊपर कमान किसकी रहती है, नियंत्रण ढांचा कैसा रहता है इनका?
2: इनका जो संगठन है, संगठन में कह लीजिए इसमें मिलिट्री पर्सनल होते हैं,
1: जी जी,
2: कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पर्सनल होते हैं और नागरिक कर्मचारी भी होते हैं, सिटीजन्स भी होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो जैसे पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको बहाल करना है, बाढ़ नियंत्रण करना है, बहुत सारे इस तरीके के जो आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो दस्ते वो शामिल होते हैं, है ना। अब इनका नियंत्रण जो, देखिए इसका एक पदानुक्रम जो हायरार्की है वो मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इनकी एजेंसी है, वो इनको अधिकृत करती है, वो इनको मैंडेट देती है, वो इनके उद्देश्य को परिभाषित करती है और बल प्रयोग के लिए नियम जो है वो निर्धारित करती है। और ये कब करती है? अधिकृत कब करती, जब दो पक्ष राजी हो कि हाँ हमें इस समय सुरक्षा सैनिकों की, शांति सुरक्षा सैनिकों की जरूरत है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, फिर आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी शांति रक्षा जितने भी अभियान चल रहे हैं विश्व में, 3 महाद्वीपों में है अभी, 11 मिशन्स हैं, उनके समग्र अभियान, उनका जो समग्र कमान है और नियंत्रण उनके पास होता है, वो उनके पास होते हैं। फिर शांति अभियान विभाग है, डीपीओ, डिपार्टमेंट ऑफ पीस, ये विभाग जो मिशंस हैं उनके पॉलिटिकल और जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं उनको देती है। शांति अभियान के जो अवर सचिव हैं, जिसे कहते हैं महासचिव से जो नीचे का पद है, उसके मिशन के संचालन की देखरेख करते हैं। महासचिव के जो विशेष प्रतिनिधि हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी, उसके मिशन प्रमुख हैं, HOM होता है अपना, हेड ऑफ मिलिट्री, जो हेड ऑफ मिलिट्री है, कमांडर मेजबान देश जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं और जनादेश को वहाँ लागू करते हैं। जो मिशन के सभी घटक हैं जैसे मिलिट्री, पुलिस और जैसे मैंने आपको बताया, उनका निर्देशन करते हैं। फोर्स कमांडर है जो हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट है, वो थे HOM हेड ऑफ मिशन थे, ये थे हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट, इसी तरह हेड ऑफ पुलिस कंपोनेंट हो गए। मिलिट्री कंपोनेंट में ही पुलिस में भी आ जाती कई बार, है ना। फिर एक होते फोर्स कमांडर, जो वहाँ का दल जो एक्टिवली अब जो वहाँ काम कर रहा है उसके एक कमांडर होते हैं, जिनके नीचे तीनों घटक जो काम करते हैं, समन्वय में काम करते हैं, दिशा निर्देश उनको कई जगहों से मिलते हैं, लेकिन वो सामंजस्य बिठा के समन्वय से कार्य करते हैं वहाँ। अब सैन्य घटक जो हैं, ये विभिन्न सदस्य देशों के टुकड़ियां शामिल होती हैं, तब ये बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई बल नहीं है,
1: अच्छा।
2: अपना कोई फोर्स नहीं है, ये जो उनके मेंबर सदस्य देश हैं वो लोग उसमें योगदान देते हैं। जैसे भारत के कुछ सैनिक वहां जाते हैं, कंटिंजेंट जाते हैं, बटालियन जाती हैं, उनको कितने सैनिक चाहिए फिर भारत देता है। कई सदस्य देश हैं जो देते हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, तमाम देश हैं जिनके जाते हैं वहाँ। पुलिस घटक है, पुलिस घटक में क्या क्या जा सकते हैं, कुछ स्टेट पुलिस से भी जाते हैं सिलेक्टेड लोग, अच्छे सिलेक्टेड लोग, CRPF के कंटिंजेंट जाते हैं, इसी तरह CAPF के कई कंटिंजेंट्स में से सिलेक्टेड लोग पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुलिसिंग का काम है वो वहाँ वो करते हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलाह देते हैं कि आप इस तरीके से अब आगे बढ़े तो शांति बहाल होगी। नागरिक घटक इसमें है, पॉलिटिकल्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, लीगल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी हो गए, जो डिसर्मामेंट करेंगे, जो आपको रिलोकेट करेंगे, जो आपको पुनरेकीकरण करेंगे, है ना, इलेक्शन में जैसे सहायता करेंगे, उन कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
1: अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग देश जाते हैं वहाँ पर, तो ये कौन तय करता है कि शांति सेना की आवश्यकता कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर किसी संघर्ष क्षेत्र जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर शांति सेना तैनात कर सकता है, या किस स्थिति में कैसे कब इसे हम तैनात करेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो दुनिया भर के कितने स्थानों पर शांति सेना भी कार्यरत है?
2: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है।
1: जी।
2: किसी जगह की कॉन्फ्लिक्ट इतनी फ्लेयर अप ना हो जाए कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले, या जिसमें कई सारी देश शामिल हो जाए, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं कंटेन करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इनके हाथ भी बंद हैं, वो वहीं जा सकते हैं जहां वो दो लोग, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के दोनों पक्ष राजी हों उस बात को लेकर के, है ना। अपनी तरफ से वो जबरदस्ती बल नहीं भेज सकते, उनके पास है ही नहीं, और ना वो इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे कि दोनों देशों को राजी करें कि वो शांति समझौते पर वार्ता करें और शांति सैनिकों को बुलाएं, तो उनको उनका निमंत्रण दें, उनको बुलाएं, तब ये शांति सैनिक अपने जाते हैं। तो ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस की जो है सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद बोलते हैं, करती है। इसी तरह इनका एक प्राधिकरण है जो एक नए मिशन को आधिकारिक तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत कर देता है, है ना। इसमें उनको मैंडेट, मिशन का साइज, भाई उसमें कितने सैनिक भेजे जाएंगे, और वो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कितनी बड़ी है, क्या है और उसका स्वरूप क्या है, और उसका उद्देश्य निर्धारित करता है। महासभा, जनरल असेंबली

0: शिक्षा परिषद किसी एक मंडेट को ऑथराइज कर देती है कि जिससे कि नागरिकों की रक्षा हो सके। अब हम विश्व में देखते हैं कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जहां हद से ज्यादा नागरिकों को नुकसान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सुरक्षा परिषद ने परिषद हिले ही नहीं। तो कई बार ये विचार आता है कि सुरक्षा परिषद का क्या रोल है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं समझते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या है, वहां पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है, इस तरीके से। इसके लिए एक ये सुरक्षा परिषद ने मिशन की स्थापना के लिए जैसे कहते हैं ना एक पारित करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसे, संकल्प पारित करते हैं, है ना, एक उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि उसको कितना बड़ा मिशन चाहिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके कमांडर कौन होंगे, उसके दल कमांडर तक, मतलब एक पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से उनको अधिकृत कर दिया जाता है कि वो अपना सेवाएं बिना किसी लीगल हैसल के दे सकें। अभी तक जो है 11 सक्रिय शांति रक्षा अभियान तैनात हैं 3 महाद्वीपों पर, अफ्रीका में है मोनुस्को, देश बता देता हूँ ऐसे तो बताना समझना मुश्किल होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, यूनिस्फा, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा, मिडल ईस्ट में है गोलन हाइट्स, लेबनान और जेरूसलम मध्य पूर्व, है ना, और यूरोप एशिया में है कोसोवो, साइप्रस और भारत पाकिस्तान।
1: अच्छा सर, एक और अगला सवाल ये आता है कि क्या हमारा भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अपना योगदान देता है, और देता है तो कैसे देता है, और कहाँ कहाँ भारत ने योगदान दिया है?
0: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े और निरंतर योगदानकर्ताओं में से हमारा देश एक है। आज की तारीख में 5,000 से अधिक कर्मी 9 अभियानों में तैनात हैं, 11 में से 9 अभियानों में हमारे
1: बहुत बड़ा आंकड़ा
0: है, हमारे कर्मी जो है इसमें मिलिट्री, पुलिस और मैंने क्या बताया सिटीजन्स, ये भी इन्वॉल्व है। 1950 से लेकर के अभी तक 50 से अधिक अभियानों में 2,90,000 से अधिक कर्मियों को तैनाती दी गई है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा में, और जो प्रमुख योगदान है आज की तारीख में वो है साउथ सूडान, कांगो, अबई, लेबनान, साइप्रस। और भारत का ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत शीर्ष सैन्य योगदान देने वालों में से एक है। कई सारे देश देते हैं लेकिन भारत जो है 3-4 देश जो ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक भारत ही भेजता है, और जो अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है, और ऐतिहासिक रूप से लैंगिक रूप से संवेदनशील शांति रक्षा में हमारे यहाँ से महिलाएं भी गई हैं।
1: अच्छा,
0: लाइबेरिया में तैनात 2007 में लाइबेरिया में तैनात पूर्णता महिला गठित पुलिस इकाई गई थी।
1: जी जी।
0: और चूंकि आर्मी में भी अब महिलाएं हैं, अधिकारी लेवल पर भी हैं और लोअर लेवल पर भी हैं, तो वो जाती हैं, मेडिकल हमारे दस्ते जाते हैं उसमें, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है उसमें।
1: जी जी।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ये कंटिंजेंट देखते हैं, मिशंस देखते हैं, उसमें भी महिलाओं का काफी योगदान है, उसमें भी महिलाओं की नियुक्तियां होती हैं।
1: जी।
0: भारत ने सेना कमांडर काफी दिए हैं, कई मिशनों में सेना कमांडर, सेना सलाहकार, पुलिस सलाहकार भारत ने दिए हैं, सीनियर पदों पर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह काफी हैं। बलिदान में भी 180 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, ये भी बड़े योगदान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि सैनिक शांति बहाल करिए, स्वयं का बलिदान देखे।
1: सर, आपने यूमनो गिप का जिक्र किया था, तो ये क्या है और इसे कब तैनात किया गया था, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: ये यूमनो गिप है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन है जिसे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांति रक्षा अभियानों में से, आप सोचिए 48 में इसकी स्थापना हुई थी और 48 से तब से चले आ रहा था। एक जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर संघर्ष में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भारत ने किया, साथ ही पाकिस्तान ने भी किया, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत औपचारिक रूप से ये अनुरोध प्रस्तुत किया था। उस स्थिति का ध्यान देने का आग्रह किया था जहां पाकिस्तानी नागरिकों और जनजातियों को आक्रमणकारी माना जाता है।
1: जी जी।
0: वो जनजाति आई थी ना, वहां के ट्राइबल्स आए थे, उन्होंने अटैक किया था, और राज्य के विलय से संबंधित विभाग को हल करने का अनुरोध किया। ये उसी जगह पर हुआ, हर जगह नहीं हुआ कि जम्मू में भी ले लें, तो उसी जगह जहाँ पे ट्राइबल्स आए थे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
1: जी जी।
0: और इस मिशन की सहमति, जैसे 3 कंडीशंस बताई नहीं, सहमति भारत ने भी दी,
1: जी जी।
0: पाकिस्तान ने भी दी, और सुरक्षा परिषद ने 48 में ही कई प्रस्ताव पारित किए और उन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप इस ऑब्जर्वर ग्रुप की स्थापना हुई। और कब पहुंचा, ये पहुंचा 24 जनवरी 1949 को, ये पर्यवेक्षकों का पहला समूह जो है पहुंचा कश्मीर में। और युद्ध के बाद स्थापित युद्ध विराम की जो स्थिति बनी थी, जो सीज फायर एग्रीमेंट था, सीज फायर के बाद ही गए थे ये, तो उसके बाद जो है उसकी निगरानी की जा सके। और इसकी जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट, जो औपचारिक स्थापना हुई थी, 30 मार्च 1951 को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से, पहले ये ऑब्जर्वर ग्रुप गया अनौपचारिक रूप से, और जो औपचारिक स्थापना हुई 1951 में हुई।
1: अच्छा,
0: 1951 में हुई, और युनमो गिप इसको नाम दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर के टाइम पे जो बनी गई थी, उसकी निगरानी के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
1: अच्छा सर, हाल ही के अतीत तक पाकिस्तान के साथ चलते इतने सारे संघर्षों को हम देखते हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो युनमो गिप है, ये हमारी मदद किस प्रकार से करता है? क्या ये मिशन कभी प्रासंगिक रहा है, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ये प्रासंगिक है?
0: देखिए, अतीत की बात करते हैं तो जब ये मिशन स्थापित हुआ था तो युद्ध विराम पे जो नियंत्रण रेखा थी उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया काफी, उस पर काफी नियंत्रण रेखा को पे जो है मिलिट्री कार्रवाई काफी हद तक रोकी गई थी उनके ऑब्जर्वेशन से। बाद के युद्धों में स्पेशली शिमला एग्रीमेंट 1972 का जो हुआ, उसके बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था वो द्विपक्षीय एक समझौता था, तो जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और ये माना कि हम इस स्थिति को अब हम यथास्थिति बना के रखेंगे, नियंत्रण रेखा को ही यथास्थिति बना लेंगे, मान लेंगे एक
1: जी,
0: है ना, और उसको हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। तो जब ये बात मान ली गई तो ये अप्रासंगिक सा ही हो गया। तो ये इनका एक हेडक्वार्टर था जो नवम्बर से अप्रैल तक इस्लामाबाद में रहता था, और अप्रैल से अक्टूबर में ये श्रीनगर हो जाते थे। कर्मचारी दोनों जगह रहते थे लेकिन हेडक्वार्टर के जो घटक थे वो दोनों देशों के बीच में रहा करते थे। फिर इनको विस्थापित करके दिल्ली में भेजा गया और सन 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ कश्मीर को, तो फिर हमारा ही हिस्सा हो गया। फिर वो विवादास्पद स्थिति तो रही नहीं, जब विवादास्पद स्थिति रही नहीं तो भारत ने कहा भाई अब ये हमारा विवाद की हमारी कोई स्थिति है ही नहीं, ये हिस्सा हमारा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो देयर इज नो विवाद ऑन दिस, तो आप कृपया जाएं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी थी कि मिशन को क्लोज कर दिया गया। क्लोज हुआ नहीं। अब इसकी जो स्थिति वो ये है कि भारत कहता है कि ये अब प्रासंगिक है, हमारे बीच में विवाद नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपनी शिकायतें दर्ज कराता रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ये हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप खत्म नहीं होगा जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो ये मामला यहाँ पे ऐसे अटका हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो बड़ा विचित्र सा ये एक अभियान है कि अब ये चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है।
1: हमारे जो शांति सैनिक हैं उनका चयन कैसे होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम आपसे ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे।
0: इनका चयन आजकल जैसे हमारे आर्मी में है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, उनके पुराने ऑपरेशंस के जो अनुभव हैं उनको देखते हुए सेलेक्ट करते हैं, एक कमेटी होती जो सेलेक्ट करती है। इसी तरह जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं, मिलिट्री अधिकारी जाते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है उनके सर्विस कार्ड के ऊपर, उनके अनुभवों के ऊपर, उनके सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक चयन प्रक्रिया होती है जिससे उनको चयनित करके भेजा जाता है। भारत में बहुत सम्मान की बात है, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में किसी भी तरीके से, किसी भी पद पे, नॉट तरीके से, किसी भी पद पे अपनी सेवाएं देना, ऑब्जर्वर ग्रुप हो या कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में, किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देना काफी गर्व का विषय माना जाता है।
1: वास्तव में सर, यहाँ आंकड़े तो बहुत कम हैं और किस्से बहुत ज्यादा हैं। हमारी युवा श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं या यूएन में जाकर शांति के लिए काम करना चाहते हैं?
0: आर्मी में जो भी आते हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, महिलाएं भी हैं जवान या अधिकारी के पद पर, सबका एक ये रहता है, एक मन में रहता है कि हम एक यूनाइटेड नेशंस मिशन में हम अपनी सेवाएं दें। मैंने आपको बताया नहीं, हमारे देश में हमारी सेनाओं में ये बड़े गर्व की बात है, और ये चीज पुलिस में भी है, सिटीजन्स का भी है कि भाई उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर के वहां पे नई तरीके से वहां की अवसंरचना संरचनाओं में विकास दिया, तो ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन की बात रहती है, लोग जाना चाहते हैं। और युवाओं को भी मैं संदेश देता हूँ कि अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, और अगर बाहर से भी एज अ नागरिक सिटीजन की तरह से उनको मौका मिलता है तो उसको भी देखें, अगर वो आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, सिटीजन्स में है और उनकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो मौका देखें, ढूंढें। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी सारे वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी वेबसाइट पर, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से भी नहीं जाते, कई बार तो यूएन डायरेक्टली भी बुलाते हैं, अलग से भी नियुक्तियाँ हो जाती हैं।
1: जी जी सर, शांति सैनिकों का आज जिक्र हो रहा है, क्या संदेश देते हैं ये शांति सैनिक दुनिया को?
0: इन्वेस्ट इन पीस जो थीम है, शांति बनाए रखें, संघर्ष में ना रहें, संघर्ष जो है काफी नकारात्मक लाता है, आपको पीछे ले जाता है, शांति बनने से ही आपकी तरक्की संभव है, आपको उत्थान है, उसी में ही भलाई है,
1: यही संदेश का कल्याण है। बिल्कुल सर, अगले 10 सालों में आप यूएन के मिशन के जो बदलाव है उसे कैसे देखते हैं? अगले 10 सालों में हम क्या कुछ और नया अचीव करने वाले हैं?
0: अगले 10 सालों में यूएन मिशन धीरे धीरे अपनी सार्थकता को बढ़ा रहा है
1: जी।
0: 55 मेंबरों से शुरू हुआ ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आज 193 मेंबर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है
1: जी, जी।
0: सदस्य देशों की संख्या बढ़ रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनका जाने का जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स ये भेजते हैं, जो भी मिलिट्री ग्रुप्स भेजते हैं, वो भी बढ़ रहा है, इनका दायरा भी बढ़ रहा है
1: जी, जी।
0: लेकिन जो जिन जगहों पर ये नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और दोनों दलों में से किसी ने नहीं बुलाया, या किसी एक ने बुलाया दूसरे ने नहीं बुलाया, वहां पर हस्तक्षेप करने की ये अपनी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी, ये शायद बढ़ाएंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे, अपने को मैंडेट इस तरीके से करेंगे कि वहां पर भी हस्तक्षेप कर सकें, क्योंकि कई जगह तो बहुत अन्यायपूर्वक जिसे कहते हैं ना अत्याचार हुए हैं बहुत, जैसे सीरिया में हुए हैं, आईसिस के एक्शंस हुए हैं, याजिदीज का हुआ है, पूरा जेनोसाइड हुए, तो उसमें किसी ने मतलब इनको ना न्योता दिया नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने की ये क्षमता कैसे बढ़ाते हैं, ये भी इनके लिए चुनौती भरा काम है, उसमें भी आगे बढ़ेंगे जहाँ तक है मुझे लगता है
1: जी।
0: बढ़ना चाहिए
1: सर। आम नागरिकों की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आम नागरिक या हमारा समाज इन शांति सैनिकों के सम्मान में क्या कर सकते हैं?
0: बलिदान जिन्होंने दिया हुआ है शांति सैनिकों के बलिदान में, जो नागरिकों का जिन्होंने जिनकी क्षति हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जगह जगह जैसे बताया कि पदक अलंकरण समारोह होते हैं, श्रद्धांजलियां होती हैं, और इसी तरह चर्चाएं हो सकती हैं, इनकी जागरूकता की, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एग्जिस्टेंस, कई लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता कि संयुक्त राष्ट्र बल है क्या, इनके बारे में पता लगे, जागरूकता बढ़ेगी तो युवा भी आगे आएंगे, वो भी इसमें कैसे जाएं वो सब पता लगे, जन जागरण अभियान हो। आज के दिन को जैसे हम अन्य दिवसों को समर्पित करते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको समर्पित किया जाए, और कई सारे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं जहाँ पे इस शांति सुरक्षा बल को और अधिक बल मिले, बढ़ोतरी मिले।
1: तो साथियों, आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। वास्तव में शांति सैनिक बनना आसान नहीं है, जाता भी वही है जिसके पास हिम्मत हो और दिल में दुनिया के लिए दर्द हो। हर किसी का दिल इतना बड़ा तो नहीं होता ना। भारत, हमारा देश भी शांति सैनिक इसीलिए भेजता है ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की उक्ति को चरितार्थ कर सके, दुनिया में युद्ध कम हो, शांति बनी रहे, और इसीलिए भारत का यहाँ 3रा स्थान है। खैर, स्थान से ज्यादा महत्व है योगदान का, और भारत ने यथासंभव सौहार्द, शांति और भाईचारे के लिए हमेशा से ही यथासंभव अपना योगदान दिया है। श्रोताओं, शांति सैनिक भेजने में भारत का दुनिया में भले 3रा स्थान हो, लेकिन बलिदान और अनुभव में पहला स्थान है। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उन तमाम सैनिकों के लिए जो शांति मिशन में डटे हुए हैं। हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, और जो हमारे लिए अभी भी सेवाओं में हैं उनके लिए हम सदैव ये कामना करेंगे कि आप सदा सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज की परिचर्चा में उपस्थित थे हमारे साथ हमारे अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर। सर, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दी और बहुत बड़ा संदेश भी दिया। धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांति सैनिकों के जो बलिदानी है उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी शांति सैनिकों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस शांति के मार्ग में प्रशस्त होते रहे।
1: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

भारत भवन में स्वान लेक के रशियन संगीत पर थम गई दर्शकों की सांसें क्योंकि क्योंकि मूनलाइट लेक पर उतरी ओडेट सीन ग्रीट फ्रीट की अमर प्रेम कहानी। भारत भवन में चल रहे सदा नीरा समागम के पांचवें दिन रविवार को कला प्रेमियों को एक ऐसी जादुई शाम का अनुभव हुआ जो सात समंदर पार से शुरू होकर भारत की जीवनदायिनी नदियों तक आ पहुंची। इस शाम की खास प्रस्तुति थी प्रसिद्ध बैलेट नाट्य स्वान लेक द इम्पीरियल फर्नांडो बैले कंपनी यानी IFBC के कलाकारों ने महान रूसी संगीतकार प्योत्र इलाइची टचेकोवस्की की कालजयी संगीत और क्लासिकल बैले के फ्यूजन ने रसिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बैले के साथ शाम भारत भवन की समृद्ध शास्त्रीय परंपरा का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रख्यात भरतनाट्यम कलाकार वैभव ओरकर ने अपनी एकल प्रस्तुति नर्मदे हर हर से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अपनी शांत गहन और भाव प्रधान शैली के लिए मशहूर आर्यकर ने नर्मदा नदी के आध्यात्मिक स्वरूप उसकी सांस्कृतिक विरासत और जीवनदायिनी महिमा को शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से जीवंत किया।

ताज में ही तो गुलाब खिलते हैं। याद है जून का, जून में जब आप मिले थे, ये पंक्तियाँ लिखी गुलजार साहब ने। ये पंक्तियाँ पढ़ से सुने, ताज में ही तो गुलाब खिले थे, याद है जून में जब आप मिले थे। जो कि जुनून का गुलाबों के साथ स्वागत करती है आरुषि का इस साल का कैलेंडर, स्पेशली एबल्ड और उन बच्चों को डेडिकेटेड है जो अब समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं और कहीं ना कहीं काम कर अपने पैरों पर खड़े हैं। इनमें से एक है आरुषि की रीता सेन। रीता सेन साल की 3 साल की उम्र में आरुषि आ रही हैं और कुछ समय पहले उन्होंने भोपाल के होटल ताज में फ्रंट डेस्क ज्वाइन की है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भोपाल के सप्रे संग्रहालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी द्विशताब्दी महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने 1826 के पहले अखबार उदंत मार्तंड का उदाहरण देते हुए कहा, 9 साल में देश से 60 करोड़ का कपड़ा आयात होने पर उस दौर के पत्रकारों ने आर्थिक दोहन की गणना कर देश को जगाया था। आज हिंदी पत्रकारिता इन आर्थिक और बुनियादी सवालों पर कितनी सजग है, हमें आत्ममंथन करना होगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखी गई लघु नाटिका अहिल्या रूपेण संस्थिता का विमोचन रविवार को विश्व संवाद केंद्र में किया गया। पुस्तक का की लेखिका व निराला सृजन पीठ की निदेशक डॉक्टर साधना बलवटे ने बताया, पुस्तक का शीर्षक अहिल्या रूपेण संस्थिता शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना से जुड़े प्रसिद्ध श्लोक या देवी सर्वभूतेषु से प्रेरित है। वक्ताओं ने कहा, वर्तमान पीढ़ी को अपने वास्तविक राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराने की जरूरत है। जिंदगी में जब मुश्किलें पहाड़ बनकर सामने खड़ी हों और सारे सपने टूटते नजर आए, तब हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन जो शून्य से उठकर दोबारा चलने की हिम्मत रखता है, वही दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर अपना परचम लहराता है। रायसेन के सैमरी गांव की अंजना यादव ने यह कमाल 27 मई की सुबह कर दिखाया, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा लहराकर ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित कर दिया।

शहर की सड़कों पर रात को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। हाथों में चमकते ग्लू बैंड्स, जोश से भरे कदम और नशा मुक्त समाज का संकल्प लेकर बच्चे, युवा और अभिभावक एक साथ दौड़ते नजर आए। अवसर था टीम सुपर रॉक्स बाय सुपर थरी द्वारा आयोजित कम्युनिटी नाइट रन का। सर सपाटा पार्किंग से शुरू होकर वन विहार गेट नंबर 2 तक पहुंचे इस आयोजन में कुल 75 लोगों ने सहभागिता की। इसमें 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 20 बच्चों ने अपने माता पिता के साथ भाग लिया।

शहर की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक रंग को करीब से जानने समझने का उद्देश्य समझने के उद्देश्य से रविवार को पुरातत्व इंडिया और भोपाल के आमरा क्लब द्वारा हेरिटेज वॉक एवं स्ट्रीट फूड वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 80 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हेरिटेज वॉक की शुरुआत कमलापति महल से हुई, जो गौहर महल, इकबाल मैदान, शौकत महल, मोती महल और शीश महल होते हुए मोती मस्जिद पर सम्पन्न हुई।

फिल्म प्रेमियों के लिए 3 जून को विश्व सिनेमा की चर्चित ईरानी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शन शाम 6:30 पर मिनी थिएटर RCVP अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में किया जाएगा। सुप्रसिद्ध ईरानी फिल्मकार माजिदी का के निर्देशन में बनी चिल्ड्रन ऑफ हेवन विश्व सिनेमा की सबसे संवेदनशील और सराही कई फिल्मों में गिनी जाती है। भारत भवन अनहद द्वारा 5-7 जून तक 3 दिवसीय नृत्य समारोह भावना अनुभव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे होगा। 5 जून को करण गंगानी एवं साथी कलाकारों द्वारा वंदे कृष्ण जागरूक प्रस्तुत की जाएगी। 6 जून को नृत्य नरसिंह राणा एवं साथी कलाकारों द्वारा गीत गोविंदम और क्षमा मालवीय द्वारा अष्टपदी और नवरस प्रस्तुत होगा। वहीं 7 जून को मंजरी चतुर्वेदी एवं साथी कलाकारों द्वारा राधा रास की प्रस्तुति होगी। रंगमंच शिखर पुरुष हबीब तन्वी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम थिएटर ग्रुप भोपाल द्वारा 22वां स्मरणन हबीब रंगालाप नाट्य महोत्सव 8-12 जून तक रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 8 जून को हबीब तन्वीर के विश्व प्रसिद्ध नाटक चिन्ह लाहौर नई विख्या वो जमियाई नई के मंचन से होगा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आत्मीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाई। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।

बेरेनिका व रेगिस्तानी एम्पोरियम, जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ। मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में, जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं, कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे, जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी, जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता, चीन से आने वाला चमकता रेशम, उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वविदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था, जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आजादी की प्राप्ति में लगा दिया। वे विस्मय प्रकृति के अद्भुत व्यक्ति थे जिनमें एक विशिष्ट तेज और ओज था। उनकी वाणी इतनी सशक्त और गर्जन भरी थी कि सुनने वालों की नसों में खून खौलने लगता था। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनमें वाइसराय बमकांड मुख्य था। उन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा छापकर आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया था। सन 1912 में उन्होंने लॉर्डिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फेंका और फिर बचकर जापान भाग गए। जापान में रहकर भी उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन का संचालन किया। रास बिहारी बोस से प्रेरणा लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्रांतिकारी रास बिहारी का देहावसान 1945 में जापान में हुआ था।
3: अरे राम राम काका,
4: राम राम,
5: राम राम।
3: लो आज हम फिर सब आ गए आपकी शरण में।
4: क्या बात है, क्या घर के खाने से पेट भर गया जो फिर चले आए हो है?
6: अरे नहीं काका, भला घर के खाने से कभी पेट भरा है? ये तो आपका प्यार है जो हमें खींच लाता है बार बार आपके पास।
4: हमारा प्यार नहीं, हमारा खाना खींच लाया है तुम सबको।
6: काका आप तो बुरा मान गए, सच ये है कि आपका खाना लजीज होता है,
3: पर इसके साथ साथ कुछ और भी बात तो है काका।
4: वो क्या है बताओ? भला बता दोगे तो आज मैं भाजा के साथ तंदूरी रोटी खिलाऊंगा।
6: अरे अरे भाजा के साथ तंदूरी रोटी?
7: मत बताना कुछ मत बताना।
8: अरे कहाँ भाजा और कहाँ तंदूरी रोटी,
7: अरे ये भी कोई मेल है खाने का?
6: लगता है हमारे काका सठिया गए।
7: हाँ, हाँ?
6: तभी तो कहाँ बंगाल के भाजे के साथ पंजाब का मेल कर रहे हैं।
9: हाँ काका, ये क्या बात हुई बोला।
4: हाँ सही कहा तुम लोगों ने, तुम्हारा ये काका सचमुच सठिया गया है। भाजा के साथ तंदूरी के अलावा बाल मिठाई या चॉकलेट मिठाई परोसता तो तुम लोग सचमुच मुझे बेवकूफ समझते।
6: पर काका आपने तो कभी इस तरह की बेमतलब बातें की नहीं, फिर ये अचानक बंगाल पंजाब और कहां उत्तराखंड की बातें करने लगे।
4: अच्छा तुम ही बताओ, एक आदमी भला कितने तरह की जिंदगी एक साथ जी सकता है?
6: लो यहाँ आदमी अपनी तरह की एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता, उस पर आप कहते हैं कि कितने तरह की जिंदगी जी सकता है। क्या काका आज आपको ये क्या हो गया है?
4: आज तुम सब जिस शहीद की कहानी सुनोगे वो एक नहीं कई तरह की जिंदगी जीता था।
9: कई तरह की जिंदगी?
4: उसकी यही विशेषता रही कि अंग्रेज पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अपनी चालाकी से उसने पूरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा छकाया कि लोग हतप्रभ रह गए।
7: ऐसा कौन शहीद होगा जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? बताओ ना काका, बताओ ना
9: काका, बताओ ना।
4: हम नहीं बताएंगे, तुम सबको एक क्लू जरूर दे देंगे, समझदार हो तो बता दोगे। वो भारतीय होने के बाद भी जापान का नागरिक था, उसकी शादी एक जापानी लड़की से हुई थी।
7: कौन था भाई?
9: काका आप हमें उलझा रहे हैं। हाँ।
7: अच्छा
9: आपकी सोबत में इतना तो जान गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
7: हाँ सही कहा।
9: क्यों क्यों है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल।
9: और उसकी शादी भी एक जापानी से ही हुई थी, पर जापानी नागरिक कभी रहे नहीं वो। क्यों भाई ठीक है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल। काका आप तो बता ही दो, अब भाई फिर तो सचमुच भाजा तंदूरी और पहाड़ी बादिये का तो मजा ही आ रहा है।
4: वो शहीद मूल रूप से थे बंगला भाषी, नौकरी की देहरादून में, दिखने में हट्ठे कट्ठे पंजाबी जवानों की तरह। जापानी पत्नी का नाम था तोशी को।
9: काका एक बात तो सही है कि आज हम आपके सामने बिल्कुल ही हार गए।
8: हाँ, ये बात तो सही है
9: भाई, है ना। जो सच है वो तो है।
8: हाँ, बिल्कुल।
9: हम ऐसे किसी शहीद को नहीं जानते जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हों।
4: उस शहीद का नाम था रास बिहारी बोस।
9: रास बिहारी बोस,
8: अरे वाह, क्या बात है काका, रास बिहारी बोस।
6: तो काका, आज हो ही जाए कहानी रास बिहारी बोस की।
8: हाँ काका, हो ही जाए।
9: हाँ काका, आज तो हो ही जाए।
8: हो ही जाए।
4: तो सुनो शहीद रास बिहारी बोस की कहानी।
1: रास बिहारी बोस यानी बंगाल के रहने वाले, देहरादून में नौकरी करने वाले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाने वाले, यारों के यार, बम बनाने में उस्ताद और साथ ही अपनी चलाकी और सूझबूझ से अंग्रेजों के हाथ कभी न आने वाले रास बिहारी बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस सच्चे देशभक्त को लोग रासुदा के नाम से भी जानते थे।
0: रासू, हम तंग आ गए हैं तुम्हारी इस भागने की प्रवृत्ति से। आखिर तुम चाहते क्या हो?
10: मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ पिताजी।
0: किस तरह?
10: ब्रिटिश सेना में शामिल होकर।
0: ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला ब्रिटिश फौज में रहकर देश की सेवा किस तरह से करोगे?
10: पिताजी, आपके इस प्रश्न का उत्तर सही सही दूं या गलत रूप से पेश करूं?
0: देखो, झूठ तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सच कहना ही होगा।
10: तो सुनिए पिताजी, मैं ब्रिटिश फौज में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है। यदि हम नौजवान आधुनिक युद्ध कला सीख जाएं, तो हम भारत माता को आजाद कराने की दिशा में कुछ कर सकते हैं।
0: कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम मुट्ठी भर लोग क्या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकोगे?
10: पिताजी, यदि सभी ऐसा ही सोचने लगे तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? हा? इस तरह से भारत माता तो कभी आजाद हो ही नहीं पाएगी।
0: परिवार को दुख पहुंचाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगे?
10: दुखी भारत को सुखी करने के लिए परिवार का दुख बहुत छोटा है पिताजी। एक के अस्तित्व की सार्थकता अनेक हितों के लिए।
0: ठीक है, तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत ही कठिन है बेटा। एक पिता के नाते मैं तुम्हारे लिए केवल मंगल कामना ही कर सकता।
10: पिताजी, कितने अच्छे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। पिताजी, मेरे पिताजी, भारत माँ का ये सपूत आपको
0: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
1: तो ऐसी थी रासुदा के जीवन की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया। देहरादून में वन विभाग में शोध संस्थान में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि प्रयोगशाला में काम करते समय उन्हें ऐसे रसायन मिल जाएं जिससे बम बनाए जा सके। अब रासुदा का क्रांतिकारी रूप खुलकर सामने आने लगा।
10: दोस्त, मुझे प्रेरणा मिली है कि भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स को किसी तरह से मजा चखाया जाए।
8: दादा, बहुत ही जल्द वो दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं।
10: तो फिर देर किस बात की? मैं योजना बनाता हूँ, पर इसके लिए वसंत कुमार विश्वास की मदद लेनी होगी।
8: वसंत विश्वास? दादा, ये कौन है भला?
10: तुम नहीं जानते, मेरा खाना बनाने वाला मेरा नौकर।
8: ओ,
10: विश्वास वास्तव बम बनाने और उसे चलाने की कला में निपुण है।
8: वाह, क्या बात है रासुदा, इधर रसोईया उधर बंदर माता। वाह। उसके बनाए भोजन की तारीफ तो देहरादून में कई लोग कर चुके हैं।
10: उस पर किसी तरह का शक ना हो
8: जी,
10: इसलिए उसे इस तरह से जानबूझकर पेश किया गया है। मैं उसे लाहौर भेज दूंगा जहाँ से वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर हमले की योजना पर काम करेगा। वहाँ अवध बिहारी, बालमुकुंद और दीनानाथ भी हैं।
8: मगर इसके लिए बम कहाँ से मिलेगा?
10: अभी तो मैं चंद्रनगर जाकर बम की व्यवस्था करता हूँ।
8: जी जी,
10: हमें हमला 23 दिसंबर 1912 को करना है।
8: जी,
10: समय बहुत ही कम है, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ। कोई पूछे
8: जी
10: तो कह देना कि रसोईया भाग गया है, इसलिए उसे खोजने गया हूँ।
8: ठीक है दादा, ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। भारत माता की जय।

0: क्यों दोस्त
1: जी,
0: सारी तैयारियां पूरी हो गई, कोई चूक नहीं होना चाहिए।
1: कोई चूक नहीं होगी दादा, हमारी योजना पूरी तरह से पक्की है। नहीं बचेगा ये लॉर्ड हॉडिंग्स, और इसे बचना भी नहीं चाहिए।
0: वो देखो शाही जुलूस कितना लंबा है, हम उसके चांदनी चौक पहुंचने के इंतजार में।
1: हाथी पर उसकी सवारी कितनी बढ़िया लग रही है। देखो दादा, यहाँ भी पूरी शान और शौकत के साथ है।
0: आज वसंत अपना काम कर दिखाए तो समझो हमने फतह कर ली।
1: पर वो है कहाँ दादा?
0: अगर वो यहाँ होता भी तो आप उसे नहीं पहचान पाते बंधु।
1: अरे ऐसी क्या बात है उसमें?
0: वो देख रहे हो बैंक की इमारत को?
1: जी जी,
0: वही एक महिला के रूप में है वसंत विश्वास। अभी देखना वो अपना काम किस तरह से कर दिखाता है।

0: राजा वसंत, तुमसे चूक कैसे हो गई?
1: पता नहीं राजूदा, दरअसल मैं महिलाओं की पत्ती में पीछे बैठा था, इसलिए सही स्थान पर बम पहुंचने में चूक हो गई। मैंने पूरी तैयारी के साथ बम फेंका था। लगता है लाट की किस्मत अच्छी थी।
0: क्या किस्मत अच्छी थी? तुमने बम सिगरेट के पैकेट में रखा था ना?
1: हाँ राजूदा, पूरा काम योजना के अनुसार हुआ था, बस एक छोटी सी चूक हो गई। अब यही चूक बड़ा पछतावा बन गई है मेरे लिए।
0: नहीं नहीं वसंत भाई, नहीं, हम विफल जरूर हुए हैं, पर इससे हमने अपना इरादा बता दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: राजूदा, आप भी इस सेट के लिबास में ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच कोई मारवाड़ी सेट हो।
0: वो तो ठीक है, अब पूरे देश में खलबली मच जाएगी। चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों को खोजने के लिए जाल बिछाया जाएगा। इसलिए वसंत, बेहतर यही होगा कि मैं देहरादून निकल जाऊं, हाँ तुम लाहौर निकल जाओ, साथियों की पूरी जानकारी देते रहना।
1: जी जी
2: भले ही रासुदा की योजना विफल रही, पर इस बम कांड से अंग्रेज सरकार चिंता में पड़ गई। पूरे देश में तहलका मच गया।
3: देखा, क्रांतिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सरकार बौखला गई है। बम के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, बंगाल और लाहौर के बम एक ही तरह के थे।
4: पुलिस किस नतीजे पर पहुंची?
3: पुलिस का यह मानना है कि क्रांतिकारियों का कोई एक ऐसा गिरोह है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में समान रूप से सक्रिय है।
4: इधर लिबर्टी नाम का एक अखबार धूम मचा रहा है, उसके बारे में क्या जानते हो?
3: वो अखबार नहीं, पूरा आग का गोला है। आग का गोला, आग उगलता है, उसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं।
4: अच्छा, कौन निकालता है ये अखबार, आप जानते हैं उसे?
3: ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं, इनमें से कौन निकालता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि अखबार पूरे देश में मिलता है।
4: हाँ, शायद इसलिए पुलिस का ध्यान अब बम कांड से हटकर इस अखबार पर केंद्रित हो गया है। कई शहरों में इस संबंध में छापे मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: सचमुच में इस विद्रोही साहित्य में जो भी लिख रहा है उसकी कलम में धार है। मैं कायल हो गया हूँ उसकी लेखनी का।
2: लिबर्टी अखबार के माध्यम से पूरे देश में आग फैलाकर रासुदा देहरादून से अपने गृह नगर चंद्रनगर में आ गए। उधर विद्रोही साहित्य और क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश पुलिस ने रासुदा के अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रासुदा के लिए खतरे की घंटी थी। उनके नाम का वारंट निकल गया, इसलिए वे भूमिगत हो गए।
0: भूमिगत रहकर मैंने बगावत की पूरी योजना तैयार कर ली है। ये बिल्कुल 1857 जैसा ही होगा। अच्छा होगा कि बनारस जाकर योजना को और मजबूत बनाया जाए। अरे पुलिस का क्या है, उसका काम है मुझे खोजना, सो वो खोजती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा।
5: वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल।
6: सत श्री अकाल।
5: साथियों, आज है 31 दिसंबर 1914। आज हम सब लोग बगावत की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रासुदा ने बगावत की तारीख 21 फरवरी तय की है। इस बैठक में हमारे नए साथी विष्णु गणेश पिंगले के अलावा करतार सिंह सरावा, पंडित परमानंद, बलवंत सिंह, हरनाम सिंह, निधान सिंह, मूला सिंह जैसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं सबसे पहले करतार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें।
7: मैं चाहता हूं कि इस बगावत का नेतृत्व रासुदा ही करें।
8: इसका नेतृत्व रासुदा ही करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, समय आने पर वे आप सबके बीच ही होंगे और अपनी राय
5: खुद तय कर देंगे। अब मूला सिंह जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
9: मैं तो कहता हूँ जी कि सचिंदर साहब तो यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग रासुदा के पीछे ही क्यों पड़े हैं? वे बनारस में रहकर भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
5: अब परमानंद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
10: हमें सचिंदर साहब से कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी रासुदा तो हमारे बीच आएंगे ही, हमें अपना काम करते हुए उनका इंतजार करना होगा।
8: रासुदा भी बनारस, पंजाब और कई सीमाओं पर बम के कारखाने लगाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना है।
2: आखिर वह घड़ी आ गई, बगावत की पूरी तैयारी हो गई। रासुदा ने यह ऐलान कर दिया कि जैसे ही म्यांमार की छावनी में विद्रोह भड़के, वैसे ही सभी छावनियों में एक साथ बगावत के इस युद्ध में कूद पड़ना है। कहां की पटरियां उखाड़नी है, कहां के टेलीग्राफ के तार कैसे काटे जाएं, पुलों को किस तरह से उखाड़ना है, यह सारे काम रासुदा ने बांट रखे थे। सभी को इंतजार था केवल 21 फरवरी का, किंतु अपनों के बीच से कोई न कोई गद्दार तो निकल ही आता है। इस बार गद्दार के रूप में सामने आया कृपाल सिंह, जिसने पुलिस को खबर दे दी बगावत की योजना विफल हो गई। उधर क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी, इधर रासुदा पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर होने लगे। सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया।

0: लाहौर से बनारस तो पहुंच गया, पर अब क्या दोस्त, पहले यहाँ के साथियों से मुलाकात कर सारी स्थिति की समीक्षा की जाए
1: जी।
0: उसके बाद जो तय होगा वही किया जाएगा।
1: दादा, हमारे साथियों की बैठक कब होनी है?
0: अरे भाई, जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था करें।
1: मैं सारे साथियों को इतला कर देता हूँ, वे सब शाम को उसी गुप्त स्थान पर जमा होंगे।
0: ठीक है, मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूँ।
1: जी जी।
0: साथियों, बगावत की विफलता के बाद हमें किसी नई योजना पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है?
1: अच्छा तो यही होगा रासुदा कि अब आप विदेश चले जाएं और वहां के लोगों को संगठित करें ताकि हमें हथियार मिल सके।
0: इस बारे में हमें हमारे बंगाल के साथियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। मैं बंगाल पहुंचकर आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा।
1: मेरा विश्वास है कि वे लोग आपको देश से बाहर जाने की सलाह देंगे।

0: कलकत्ता तो नहीं पर चंद्रनगर आ गया। अब सारी बातें यही तय हो जाए तो बेहतर होगा। यहां रहना है या सात समंदर पार?
1: ये तो आज की बैठक में तय हो ही जाएगा।
0: देख लेते हैं। तुम शाम को आ रहे हो ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप संभल कर रहेंगे?
0: ये मेरा गृह नगर है, फिर भी यहाँ के रास्तों से गुजरने पर मुझे डर लगता है कब कौन सी गोली सीने को पार कर जाए। बैठक में क्या तय होता है ये देखना।
2: साथियों, आज इस बैठक में हमें यह तय करना है कि रासुदा को भारत में ही रहना है या फिर विदेश जाना है।
3: बगावत की विफलता के बाद हमें फौज से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी।
4: और ये हथियार हमें भारत से नहीं बल्कि विदेशी धरती से मिलेंगे।
2: इसीलिए मेरा सुझाव है कि रासुदा विदेशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करें।
0: आप लोगों का कहना सही है। दुनिया का कोई भी पराधीन देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना स्वतंत्र नहीं हुआ है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
3: सुनिए रासुदा, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ही दिनों में जापान जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
5: अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रासुदा ने धन की व्यवस्था की, फिर कलकत्ता पहुंचकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से जापान का टिकट खरीदा। 13 जून 1943 को रासुदा और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की इंपीरियल होटल में मिले। यह ऐतिहासिक भेंट थी, दोनों पूरे जोश के साथ मिले। यह भेंट 1 घंटे तक रही। इसके बाद 4 जुलाई 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब रासुदा ने सिंगापुर पहुंचकर कहते भवन के एक समारोह में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।
0: आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या उपहार लाया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उपहार में लाया हूं। आज किसी को भी नेताजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देकर नेताजी का नाम आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसके अलावा मैं तो अंतिम समय तक देश की सेवा में लगा रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।
6: लगातार संघर्ष ने रासुदा को कमजोर कर दिया। नवंबर 1944 को नेताजी रासुदा को देखने पहुंचे थे। ये दो महान नेताओं का अंतिम मिलन था। इस बीच रासुदा की पत्नी तोशिको बोस और पुत्र माशोहोदे का निधन हो गया। करीब करीब टूट चुके रासुदा को जनवरी 1945 को टोक्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कार्यों को देखते हुए बीमारी की ही अवस्था में जापानी सम्राट ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। 21 जनवरी को उनका देहांत हो गया। 25 मई 1886 को जो जीवन दीप जला था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। रास बिहारी बोस को शत शत नमन, शत शत नमन।
7: तो समझे बेटा, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस।
1: सचमुच काका, बड़े महान क्रांतिकारी थे वे लोग। ऐसे भारत माँ के सपूतों को शत शत प्रणाम।
8: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आप सभी को गौसिया खान का नमस्कार और स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं
2: संदीप शर्मा। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार वो व्यक्ति जो शब्दों को कला की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है, जो एक युग गढ़ता है। वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
1: कभी शब्दों से चित्र बनाए जाते हैं, कभी चित्रों में शब्दों की आत्मा बसती है, और जब ये दोनों मिल जाएं, तब जन्म होता है एक ऐसे कलाकार का जो समय से परे युगों तक अमर हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शब्द चित्र बनते हैं और चित्र बोल उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महान रचनाकार की जिसने शब्दों और सिनेमा दोनों में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी, और वह है सत्यजीत रे। एक नाम, एक युग और एक प्रेरणा।
2: सत्यजीत रे एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका नाम केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े सेट, चमक दमक और मनोरंजन की कल्पना करते हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दर्पण बना दिया।
1: उन्होंने आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्षों, उसकी भावनाओं और उसके सपनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगी। सत्यजीत रे वास्तव में एक रचनाकार थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची कला वही होती है दोस्तों जो दिल को छू जाए, जो सोचने पर मजबूर कर दे और समाज को एक नई दिशा दे।
2: 2 मई 1921 को कलकत्ता की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी कल्पना में भविष्य की कहानियां सांस ले रही थी, जिसके हाथों में शायद कलम और कैमरा पहले से ही लिखे थे, और वो बालक था सत्यजीत रे। ये कोई साधारण परिवार नहीं था,
1: ये वो घर था जहां शब्दों की खुशबू बसती थी। दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी एक लेखक, प्रकाशक और कलाकार, पिता जिनकी कविताएं और हास्य आज भी बच्चों के दिलों में बसते हैं। शायद यही कारण था कि शब्द, चित्र और संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए।
2: लेकिन किस्मत ने जल्द ही उनके पिता सुकुमार रे को उनसे छीन लिया। रे को अपने पिता को जानने का अवसर ही नहीं मिला। छोटे सत्यजीत ने बचपन में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों को महसूस किया। सत्यजीत रे को अपने पिता की बहुत कम यादें थी। हालांकि एक घटना जो रे को अपने पिता के बारे में स्पष्ट रूप से याद थी, वो तब की थी जब वे अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में स्थित एक छोटे से शहर सोदेपुर गए थे। जिस घर में वे ठहरे थे वो गंगा नदी के किनारे था और उसमें एक छोटा सा आंगन था। एक दिन उनके पिता खिड़की के पास बैठकर चित्र बना रहे थे। सत्यजीत ने उन्हें जोर से कहते सुना, देखो एक जहाज। जब सत्यजीत दौड़कर आंगन में आए तो उन्होंने एक स्टीमर को गुजरते देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने कोई जहाज देखा था।
1: आपको बताते हैं सत्यजीत रे के बचपन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। रे का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन इससे उन्हें संगति की कमी महसूस नहीं हुई। उनके पहले मित्रों में से एक उनकी घरेलू नौकरानी श्यामा का बेटा छेदी था। छेदी उनसे 5 साल बड़ा था और हमेशा उन्हें रे चौधरी कहकर पुकारता था, और वह पतंग उड़ाने में भी माहिर था।
2: श्रोता, विश्वकर्मा पूजा का त्योहार, जब मशीनों की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए पूजा की जाती है, और कलकत्ता में लगभग हर कोई पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, सत्यजीत के लिए वो विशेष रूप से रोमांचक था। पूजा वाले दिन सुबह सुबह छेदी सत्यजीत को साथ लेकर छत पर चढ़ गया और पतंगबाजी की प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया। सत्यजीत ने रील पकड़ी हुई थी और छेदी की पतंग आसमान में उड़ रही थी। हर बार जब छेदी प्रतिद्वंदी की पतंग काटकर उसे पकड़ लेता तो आस पड़ोस के घरों से खुशी की चीखें गूंज उठती, भोगता तुम्हारी पतंग छूट गई।
1: क्या बात है, उनके बचपन का एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपको आइसक्रीम कैसी पसंद है, गर्म या ठंडी? आप सोचेंगे कैसा प्रश्न है। आप शायद तुरंत पूछेंगे आइसक्रीम तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन युवा सत्यजीत रे के अनुसार ऐसा नहीं था दोस्तों। बचपन में सत्यजीत रे को आइसक्रीम का बहुत शौक था। एक दिन बुला काका और उनकी पत्नी उन्हें कलकत्ता बंदरगाह दिखाने ले गए। शिपयार्ड में अलग अलग रंगों और आकारों की नाव और जहाजों को लंगर डाले देखकर बच्चा बहुत उत्साहित हो गया।
2: और लौटते समय वे एक रेस्तरां में रुके। जब आइसक्रीम परोसी गई तो सत्यजीत उसे चखने के लिए बेताब हो गए, लेकिन आइसक्रीम का पहला चम्मच खाते ही उनके दांत में दर्द होने लगा। बच्चा अचानक अपनी सीट से उठा, आइसक्रीम परोसने वाले वेटर के पास दौड़ा और उससे कुछ फुसफुसाया। उसने जो कुछ भी कहा उससे वेटर को हंसी आ गई। फिर वो मेज पर आया और बताया कि बच्चे ने उससे आइसक्रीम गर्म करने का अनुरोध किया था।
1: क्या बात है, आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी व्यक्तित्वों में से एक और कला भवन में रे के शिक्षक नंदलाल बोस ने एक बार रे से कहा था, एक पेड़ बनाओ लेकिन पश्चिमी शैली में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर नहीं बढ़ता। रेखाएं आधार से ऊपर की ओर होनी चाहिए। इससे रे को ये एहसास हुआ होगा कि कला भी जीवन की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होनी चाहिए।
2: अपने तीन मित्रों के साथ उन्होंने भारत के कलात्मक स्थलों का दौरा भी किया। इस दौरे ने उनका ध्यान भारतीय कला में प्रतीकात्मकता की ओर आकर्षित किया, उन छोटे छोटे विवरणों की ओर जो गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुण जो उनकी फिल्मों में बखूबी प्रदर्शित हुआ।
1: सत्यजीत रे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी दृष्टि। बचपन से ही उन्हें कला के प्रति गहरी रुचि थी। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरों की भीड़ दिखती थी, वहीं उन्हें कहानी नजर आती थी।
2: और फिर आया वो समय जब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जहां कला, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेते हैं। यहीं से उनके भीतर का कलाकार पूरी तरह जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो उन्हें ले गया सिनेमा की दुनिया में।
1: वही उन्हें कहानी नजर आती थी।
2: और फिर आया वो समय जब यूर आकर्षित किया, उन छोटे छोटे विवरणों की ओर जो गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुण जो उनकी फिल्मों में बखूबी प्रदर्शित हुआ।
1: सत्यजीत रे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी दृष्टि। बचपन से ही उन्हें कला के प्रति गहरी रुचि थी। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरों की भीड़ दिखती थी, वहीं उन्हें कहानी नजर आती थी।
2: और फिर आया वो समय जब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जहां कला, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेते हैं। यहीं से उनके भीतर का कलाकार पूरी तरह जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो उन्हें ले गया सिनेमा की दुनिया में।
1: ।1943 में रे ने शांति निकेतन छोड़ दिया और कलकत्ता वापस आ गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजे केमर में नौकरी शुरू कर दी। इनके पद का नाम लघु दृष्टा जूनियर विजुअलाइजर था और महीने के केवल 80 रुपए का वेतन मिलता था। हालांकि दृष्टि रचना राय को बहुत पसंद थी और उनके साथ अधिकतर अच्छा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन एजेंसी के ब्रिटिश और भारतीय कर्मियों के बीच कुछ खिंचाव रहता था, क्योंकि ब्रिटिश कर्मियों को ज्यादा वेतन मिलता था।
2: 1943 के लगभग ही ये डीके गुप्ता द्वारा स्थापित सिग्नेट प्रेस के साथ भी काम करने लगे। गुप्ता ने रे को प्रेस में छपने वाली नई किताबों के मुखपृष्ठ रचने को कहा और पूरी कलात्मक मुक्ति दी। रे ने बहुत सी किताबों के मुखपृष्ठ बनाए, जिनमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं के नरभक्षी, और जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। इन्होंने बांग्ला के जाने माने उपन्यास पाथेर पांचाली के बाल संस्करण पर भी काम किया, जिसका नाम था आम की गुठली की सीटी। रे इस रचना से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पहली फिल्म इसी उपन्यास पर बनाई। मुखपृष्ठ की रचना करने के साथ ही उन्होंने इस किताब के अंदर के चित्र भी बनाए। इनमें से बहुत से चित्र उनकी फिल्म के दृश्यों में दृष्टिगोचर होते हैं।
1: रे ने दो नए फॉन्ट भी बनाए, रे रोमन और रे बिजार। रे रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला। कलकत्ता में रे एक कुशल चित्रकार माने जाते थे। रे अपनी पुस्तकों के चित्र और मुख पृष्ठ खुद ही बनाते थे और फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री की रचना भी खुद ही इकट्ठा करते थे। भारत में सत्यजीत रे पर कई वृत्तचित्र फिल्में बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख हैं भगवान दास गर्गा द्वारा निर्देशित क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे 1964 और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित सत्यजीत रे 1982, उत्पलेंदु चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित द म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे 1984 और गौतम घोष द्वारा निर्देशित रे लाइफ एंड वर्क ऑफ सत्यजीत रे 1999। 2016 में फिल्म डबल फेलुदा की शूटिंग के दौरान सत्यजीत के बेटे संदीप ने अपने पिता के पुस्तकालय का वीडियो भी बनाया था।
2: लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का संगम था ये। आर्थिक चुनौतियां सामने थी। उन्होंने विज्ञापन कंपनी में काम किया, डिजाइन बनाए, लेकिन उनका मन कहीं और ही था। उनका मन था सिनेमा में। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों का अध्ययन किया, किताबें पढ़ी और सिनेमा की बारीकियों को समझा। इसी दौरान उन्होंने एक उपन्यास पाथेर पांचाली पढ़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
1: सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाई। ये फिल्म बनाना आसान नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन सीमित थे और कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी दोस्तों, उनका जुनून और उनका विश्वास। इस फिल्म में साधारण गांव के गरीब परिवार की कहानी असाधारण संवेदनाओं के साथ दिखाई गई है। इस फिल्म में समाज की वास्तविकता को दर्शाया गया है।
2: और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और पूरी दुनिया ने भारतीय सिनेमा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इस फिल्म की सादगी और यथार्थता ने हर किसी का दिल जीत लिया और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म केवल फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा का पुनर्जन्म थी।
1: इसके बाद आई अपराजितो और अपूर्व पुरुषसंगसार। इन तीनों फिल्मों को मिलाकर अपूर्व त्रयी कहा जाता है, जो आज भी विश्व सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ये त्रयी एक बच्चे के बचपन को लेकर उसके युवा अवस्था तक की कहानी को दर्शाती है। इसमें जीवन के हर पहलू, खुशी, दुख, संघर्ष और सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई और अपनी रचनात्मकता से नई दिशा प्रदान की।
2: श्रोताओं, फिल्मों के अलावा सत्यजीत रे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। वे शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए कई लोकप्रिय कहानी भी लिखी। सत्यजीत रे ने फेलुदा नाम के एक जासूस की कहानियों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें बादशाही, अंगती, गोलोक धाम रहस्य जैसी प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शोंकू श्रृंखला में एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू और एलियन जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1: फेलुदा नामक जासूसी पात्र और प्रोफेसर शोंकू जैसे वैज्ञानिक चरित्र आज पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके लिखने में रोमांच, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानी हर दिल को छू जाती थी। हर शब्द में एक गहराई और एक कहानी में संदेश छिपा होता था।
2: रे ने कभी भी इस गाथा शैली को नहीं अपनाया। उनकी बाद की फिल्में समय के साथ अधिक केंद्रित होती गईं, जिनमें पारंपरिक कथा के बजाय मनोविज्ञान पर जोर दिया गया। उन्होंने जानबूझकर खुद को दोहराने से भी परहेज किया। परिणाम स्वरूप उनकी फिल्में परिवेश, काल और शैली की एक असाधारण रूप से विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए हैं, जिनमें हास्य, त्रासदी, प्रेम कहानियां, संगीत और जासूसी कहानियां शामिल हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक बंगाली समाज के सभी वर्गों को दर्शाती हैं। हालांकि रे के अधिकांश पात्र औसत दर्जे की क्षमता और प्रतिभा वाले हैं, उनकी वृत्तचित्र फिल्मों के विषयों के विपरीत, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर 1961 और दी रनर आई 1972 शामिल हैं। रे को अंतरात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार ने आकर्षित किया। उनकी फिल्में मुख्य रूप से क्रिया और कथानक के बजाय विचार और भावना से संबंधित हैं। रे की कुछ बेहतरीन फिल्में उपन्यासों या अन्य रचनाओं पर आधारित थीं। रवींद्रनाथ टैगोर, जो निर्देशक पर प्रमुख रचनात्मक प्रभाव थे, उनकी रचनाओं में चारुलता 1964 शामिल है। द लोनली वाइफ, जो 1889 में एक धनी पश्चिमी प्रभाव वाले बंगाली परिवार में घटित एक दुखद प्रेम त्रिकोण की कहानी है, शायद रे की सबसे उत्कृष्ट फिल्म है। तीन कन्या महिलाओं के बारे में लघु फिल्मों की एक विविधतापूर्ण त्रयी है। जबकि घरे बाइरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1907-8 में स्थापित बंगाल के पहले क्रांतिकारी आंदोलन का एक गंभीर अध्ययन है।
1: रे की हिंदू रूढ़िवादिता और सामंती मूल्यों पर आधारित प्रमुख फिल्मों में जलसाघर 1958 शामिल है, जो संगीत के प्रति एक व्यक्ति के जुनून का भावपूर्ण चित्रण है। देवी 1960, जिसमें जुनून एक लड़की के दिव्य अवतार के प्रति है। सदगति 1981, जो जाति व्यवस्था पर एक सशक्त प्रहार। और कंचनजंगा 1962, रे की पहली मौलिक पटकथा और पहली रंगीन फिल्म, जो धनी पश्चिमीकृत बंगाली लोगों के बीच निर्धारित विवाह का सूक्ष्म अन्वेषण है। शतरंज के खिलाड़ी 1977, रे की हिंदी भाषा में बनी पहली फिल्म, जो अपेक्षाकृत बड़े बजट से बनाई गई थी, भारत पर पश्चिम के प्रभाव की और भी सूक्ष्म पड़ताल करती है। सन 1856 में भारतीय विद्रोह से ठीक पहले लखनऊ में घटित ये कहानी शासक वाजिद अली के अंग्रेजों के हाथों पतन को उत्कृष्ट व्यंग और करुणा के साथ दर्शाती है।
2: श्रोताओं, रे की बाकी प्रमुख रचनाएं 1943 से 44 के बंगाल अकाल की उनकी मार्मिक कहानी एहसानी संकेत, 1973 दूर की गड़गड़ाहट को छोड़कर मुख्य रूप से कलकत्ता और आधुनिक कलकत्ता वासियों से संबंधित हैं, अरण्येर दिन रात्रि, जो कि 1970 में प्रदर्शित हुई थी, इसमें चार युवकों के शहरी रीति रिवाजों से बचने के प्रयास में ग्रामीण यात्रा पर जाने और असफल होने का वर्णन है। 1963 में आई महानगर और 1970 के दशक में बनी फिल्मों की त्रयी प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य, क्रांतिकारी माओवादी हिंसा, सरकारी दमन और कपटपूर्ण भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग के रोजगार के संघर्ष की पड़ताल करती हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद जिसमें रे ने पी को 1980 में बनाई और फिर हृदय रोग से बीमार पड़ गए, वे समाज में भ्रष्टाचार के विषय पर लौट आए। हेनरिक इब्सन के नाटक का भारतीय रूपांतरण गणशत्रु 1989, शाखा प्रशाखा 1990 और उत्कृष्ट आगंतुक 1991 अपने सशक्त पुरुष केंद्रीय पात्रों के साथ रे के स्वयं के व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके प्रिय बंगाल के बौद्धिक और नैतिक पतन के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करते हैं।
1: रे ने 1982 में आत्मकथा लिखी जखन छोटो छिलम, जब मैं छोटा था, उनके बचपन की यादों, अनुभवों और शुरुआती जीवन का एक संस्मरण। ये पुस्तक उनके शुरुआती जीवन, पारिवारिक माहौल और उन घटनाओं का वर्णन करती है जिन्होंने उन्हें एक महान फिल्म निर्माता के रूप में ढाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों के विषय पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। 1976 में प्रकाशित इस पुस्तक में रे की लिखी आलोचनाओं का संकलन है। इसके पहले भाग में भारतीय सिनेमा का विवरण और दूसरा भाग हॉलीवुड पर केंद्रित है।
2: श्रोताओं, सत्यजीत रे ने बांग्ला भाषा में लिखा, जो उनकी मातृभाषा थी। सत्यजीत रे को बांग्ला साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाएं न केवल बांग्ला पाठकों में बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी शैली सरल, स्पष्ट और आकर्षित थी, जो पाठकों को आसानी से अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी रचनाओं में विज्ञान, रहस्य और रोमांच का अद्भुत मिश्रण था।
1: दोस्तों, सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ वे एक लेखक, संगीतकार और चित्रकार भी थे। फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही किया करते थे, जैसे पटकथा लिखना, अभिनेता ढूंढना, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे।
2: उन्होंने अपनी फिल्मों का संगीत भी स्वयं तैयार किया। ये बहुत दुर्लभ बात है कि एक व्यक्ति इतनी सारी विधाओं में निपुण हो। उनकी फिल्मों में आम आदमी के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी भावनाओं को बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे को पहेलियों और बहुअर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम था, इसे इनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है।
1: सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। उनकी फिल्मों में शोर नहीं था लेकिन गहराई थी, उनकी कहानियों में दिखावा नहीं था लेकिन सच्चाई ये थी कि वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी को इतनी सादगी और गहराई से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक खुद को उसमें देख पाता है।
2: दोस्तों, सत्यजीत रे ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी फिल्मों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया।
1: सत्यजीत रे केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक युग और एक प्रेरणा थे। उनकी कला आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची रचनात्मकता सीमाओं से परे होती है।
2: श्रोताओं, उनकी पहली ही फिल्म को तकरीबन एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे चार्ली चैपलिन के बाद सिनेमा से जुड़े अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1987 में फ्रांस के लेंजो द ओनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने उनकी विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया।
1: सन 1992 में एकेडमी ऑनररी अवार्ड ऑस्कर भी प्रदान किया गया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। ये सम्मान उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है, लेकिन असली सम्मान तो वह है दोस्तों जो लोगों के दिलों में बसता है, और सत्यजीत रे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं।
2: अपने पूरे करियर में बनाई गई कुल 3 दर्जन फिल्मों के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये मुख्तसर सा बायोडेटा दुनिया के चलचित्र पर भारतीय फिल्मों को स्थापित करने वाले उस फिल्मकार का है जिन्हें करीब से जानने वाले माणिक दा के नाम से और दुनिया सत्यजीत रे के नाम से पहचानती है।
1: आखिर ऐसा क्या था सत्यजीत रे के काम में जिसे पूरी दुनिया ने जाना और सराहा, जिसके लिए महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा यहाँ तक कह बैठे कि रे की फिल्मों को देखे बिना रहना चांद और सूरज को देखे बिना रहने जैसा है।
2: वाह दोस्तों, सत्यजीत रे के जीवन से जुड़ी खास बात यह भी है कि वे सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करते थे। जब वे किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो वो अपने साहित्य कार्यों, चित्रकला, पटकथा लेखन और संगीत में व्यस्त रहते थे। वे जानते थे कि खुद को कैसे व्यस्त रखना है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रचनात्मक कार्यों का एक विशाल भंडार छोड़ा है जिसका वे भरपूर आनंद उठा सकेंगे। शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक हो जिसने इतने विविध विषयों पर इतनी उच्च कोटि की रचनाएं की हों। रे का लेखन समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। रे को समझने के लिए उनकी लेखन क्षमता, उनके संगीत और चित्रकार रे को समझना आवश्यक है।
1: उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं जिन्हें हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक किस्सा हम आपको बताते हैं। ये उनकी मृत्यु से महज 3-4 साल पहले की बात है। एक बार एक इंडोर सेट पर वे 2 मशहूर अभिनेताओं को निर्देशित कर रहे थे। कमरे में मची अफरा तफरी के बीच भी वे पूरी तरह शांत थे, चुपचाप कैमरे वालों को ध्यान से देख रहे थे और सेट में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कह रहे थे।
2: उनके आसपास के लोग उनसे काफी छोटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बीच मौजूद उस महान व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शायद ही कभी बोलते या दखल देते थे, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय नजदीक आता वे कमान संभाल लेते और सटीक निर्देश देते। अचानक पूरा मंच जीवंत हो उठता, सब लोग सजग हो जाते। वे धीरे धीरे अभिनेताओं की गतिविधियों को निर्देशित करते, संवाद बोले जाते, शॉट लिए जाते और बस कोई दोहराव नहीं। अभिनेताओं को रे के निर्देश इतने कोमल, इतने सच्चे थे कि आप दंग रह जाते हैं।
1: उन्हें सेट पर निर्देशन करते देखना रे के बारे में कई निबंधों से कहीं अधिक जानकारी देता है। वे सेट पर किसी भी तरह की लापरवाही के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बार उत्तम कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे सबसे शांत और गंभीर अभिनेताओं में से एक थे जो उनकी ही तरह अभिनय से पहले पूरी तरह मौन रहते थे।
2: सत्यजीत रे का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि यदि हमारे अंदर जुनून, मेहनत और सच्चाई है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने काम के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची कला वही है जो दिल को छू जाए और समाज को एक नई दिशा दे। आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो हमें केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन भी दिखाई देता है। वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी कला हमेशा अमर रहेगी।
1: सिनेमा केवल चित्रों का खेल नहीं है, भावनाओं की भाषा है, और इस भाषा के महान शिल्पकार थे सत्यजीत रे। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है।
2: सत्यजीत रे का अध्ययन बेहद ज्ञानवर्धक हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन अगले ही पल इस कठोर वास्तविकता का दुखद एहसास हो जाता है।
1: उनकी फिल्में, उनकी कहानी, उनका संगीत आज भी हमें प्रेरित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। सत्यजीत रे का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों कि सच्ची सफलता वही है जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में कुछ नया और बेहतर दे सके।
2: उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। हमें सत्यजीत रे जैसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में मेहनत, लगन और रचनात्मकता को अपनाना चाहिए। वे केवल लेखक नहीं थे, वे केवल निर्देशक नहीं थे, वो थे शब्दों के शिल्पकार। तो श्रोताओं, आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में बात यहीं तक। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी की जिंदगी के डायरी के पन्ने पलटेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का।

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूर मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी, साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य! नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया।

0: इसी वर्ष स्वामी जी की इच्छा हुई मठ में दुर्गा पूजा करने की। स्वामी जी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि उनके गुरु भाई तथा अन्य शिष्यगण बड़े उत्साह पूर्वक पूजा का सामान जुटाने लगे। किसी प्रकार की पूजा अथवा धार्मिक कृत्य को संकल्प पूर्वक करने का अधिकार सन्यासी का नहीं होता, इसलिए स्वामी जी ने शारदा माता जी की अनुमति मांगी। माता जी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माताजी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड़ बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनोती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार कालीघाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

0: बेलूर मठ और उसके आसपास के स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रिय थे। मठ में गंगा के किनारे अथवा बेलूर ग्राम में वे प्राय ही टहलते। मठ के प्रांगण में स्थित आम के पेड़ के नीचे उनके बैठने का प्रमुख स्थान था। वहां खाट पर बैठ वे वार्तालाप करते, पुस्तकें पढ़ते अथवा पत्र, निबंध आदि लिखते। उनके वर्तमान समाधि मंदिर के कोने में स्थित बेल के पेड़ के नीचे उनका एक अन्य प्रिय स्थान था। उनका शयन कक्ष पुराने मठ भवन के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थीं, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई हैं। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे ये एक बार उन्होंने ही कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे, विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना। तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है, तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम, बाप रे कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है, थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं, पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनमें से किसी के भी उद्यान में घुसते ही ब्रह्मानंद शिकायत करते और स्वामी जी पशुओं का पक्ष लेकर प्रमाणित करने लगते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मठ में उन्होंने कुछ गायें, बत्तख, कुत्ते, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। एक बकरी का नाम उन्होंने हंसी रखा था और उसी के दूध से उनकी सवेरे की चाय बनती थी। एक बकरी के बच्चे को वो प्रेम पूर्वक मटरू कहकर पुकारते थे और उसके गले में उन्होंने घुंघरू पहना दिए थे। मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
0: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पांव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने तो कभी केवल कौपीन पहने वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती। कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद हैं।
3: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेत पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
3: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे।

0: अष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
1: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूं। मेरा विशाल काय सारस तथा बतखें सब बड़े आनंद में हैं। मेरा पाला हुआ काला हिरन मठ से भाग गया था। उसे ढूंढ निकालने में कई दिनों तक हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरी एक बतख कल दुर्भाग्यवश मर गई। उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
2: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
0: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर से मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहाँ पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
2: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर ये भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: उन दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्राह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: नहीं नहीं अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
1: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे तब तो खाएगा ना।
2: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
0: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई, हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
3: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
1: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
2: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
1: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है, ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
2: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
1: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे, नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ। पर हिताय सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं। हाय।
3: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
1: देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता है रे। जो लोग राष्ट्र के मेरुदंड हैं, जिनके परिश्रम से अन्न उपजता है, जिन लोगों के एक दिन काम बंद कर देने से नगर में हाहाकार मच जाता है, हाय, उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, उनके दुख शोक में सांत्वना देने वाला देश में कोई नहीं है रे। देखना, हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई, केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो। दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते। अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना, इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन सुनंदा शर्मा का, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सितार वादन की अलीफ लैला द्वारा। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं गायन सुनंदा शर्मा का।
2: थोड़ी सी दो तीन लाइंस में ये बताना चाहूंगी, बचपन हिमाचल में था, पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा। कुछ बंदिशें थी जो मैंने बचपन से उनसे सीखी थी। जब मैं बनारस में अप्पा जी के पास, श्रीमती गिरजा देवी की जी के पास गई, तो वो जब शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने बोला, बेटा एक बंदिश है, उसके बोल थोड़े पंजाबी के हैं लेकिन अपभ्रंश हो गया है। तो उन्होंने वो बंदिश मुझे सिखानी शुरू की। मैंने कहा, अप्पा जी ये तो मैंने बचपन में सीखी है, तो कैसे बंदिशें ट्रैवल करती हैं? वो पंजाब की बंदिश थी और बनारस में गाई जाती थी। उन्होंने बोला, हमारे गुरुजी बहुत पुराने टाइम में कहीं से सीखे थे। तो क्यों अप्पा जी के पास बहुत रेयर चीज़ें थीं जिसमें ख्याल और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, जिसमें ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, गुल, बैंत, नक्श, रुबाई, कॉल, कलवाना, ये सब कितनी रेयर चीज़ें, जो एक एक एक एक गीत धरु, एक एक एक एक चीज़ें थीं जो अप्पा जी के पास थीं। और प्रसाद स्वरूप मुझे उनसे मिली हैं। तो मैं वो बंदिश से शुरू करूँगी जो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि कहाँ मैं पंजाब में ये सीख रही थी और फिर मैं इसको गा भी नहीं रही थी। फिर अप्पा जी के पास ये थोड़ा सीखा जाकर, तो फिर अप्पा जी ने बोला, अच्छा अच्छा, तो इसके बोल ये हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, कुछ भी शब्द होते थे, अरे पंजाबी है तो इसका सही क्या होगा, तो पूछती थी सबसे। तो इतना गुरु होने के बावजूद भी कई बार बोलती थी, जाओ अपने नाना जी से पंजाबी के पुराने शब्द पूछ के लाओ या पंजाब के लोगों से। तो ये खोजी प्रकृति उनकी थी। तो मैं उसी एक बंदिश से शुरू करूँगी और उसके बोल भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक बार फिर, तबले पर जो मेरे साथ संगत करेंगे वो वैसे तो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, पंजाब घराने के बहुत गुणी कलाकार, डॉक्टर जयशंकर, एक बार स्वागत करें। और भोपाल के ही हमारे माजिद भाई मेरे साथ संगत करेंगे, माजिद खान साहब, हारमोनियम पर। भोपाल की ही दो बच्चियां मेरे साथ तानपुरे पे संगत करेंगी, अंतरा, तो मेरे साथ पहले भी बैठी हैं अंतरा, और आप अश्लेषा। और मैं सुनंदा शर्मा, आपका बड़ों का आशीष और छोटों से स्नेह चाहते हुए मैं इस सफ़र को शुरू करती हूँ। इसमें मैंने पहला राग जो चुना है, जो मैंने कहा ना मेरे अचरज का विषय था, राग भीम पलासी की ये बंदिश, जिसके बोल हैं, साडे मन भाव दियाँ दिलबर यार सज्जन दियाँ रमज़ां। हमारे दिल को मेरा दिलबर और जो यार है, मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा मुर्शिद, उसकी हर बात मेरे दिल को अच्छी लगती है। त्रिंजन एक फेस्टिवल होता है नॉर्थ में, त्रिंजना दे विच नचन सहेलियाँ, एक रोवण एक गाव दियाँ। त्रिंजनों में सहेलियाँ नाच रही हैं, कोई कढ़ाई कर रही है, कोई गा रही है, और कोई नाचते हुए, कोई रोते हुए उसको याद कर रही है। तो सब लोग अपने पिया को याद करते, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। साडे मन भाव दियाँ, हमारे दिल को बहुत भाता है ये, उस दिल भर यार की सारी बातें। और उसी में इसी कड़ी में मैं फिर बनारस घराने की एक बहुत ही पुरानी बंदिश जो मैंने कभी नहीं गाई, बोलन लागी कोयलिया अमुआ की डारी, बहुत ही रेयर कंपोजिशन है, आपको सुन के मालूम पड़ेगा। तो मैं इसी राग में दो बंदिशें पहले आपको सुनाती हूँ, राग भीम पलासी में थोड़ा सा आलाप और ये बंदिशें। थैंक यू।

तो पहले मैं ठुमरी सुनाती हूँ। राग मिश्र खमाज की ये ठुमरी बहुत पुरानी ठुमरी है बनारस की। राग मिश्र खमाज।

गगरिया में घरे धरे आऊं, गगरी में धरे आऊं, चुनरी पहरी आऊं, कर आऊं सोला श्रृंगार, ठाड़े रहो बांके शाम। राधा जी कह रही हैं, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं घर आके श्रृंगार करके आती हूँ, तब मैं आपके साथ चलूंगी।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन सुनंदा शर्मा का और सितार वादन का आनंद लिया, जिसकी प्रस्तुति दी अलीफ लैला ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। संदेश

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे, हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में धूम थी, रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता, और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किन्तु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष दो बल्कि कभी कभी तीन वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जाति सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गई, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वहां से आ गया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया था, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से आया। धीरे धीरे यही कोई 20,000 का अब मामला हो चुका था। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे, समझते थे कि उनके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है,
जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-4 साल बीत गए, सेठ जी के तकाजों की अपेक्षा मिस्टर राम रक्षा की मांग बढ़ गई तो गिरधारी लाल को भी संदेह हो गया। वो एक दिन राम रक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब मुझे एक हुंडी का रुपया देना है, यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो अच्छा होगा। ये कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र उन्होंने दिखा दिए। मिस्टर राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसों को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव, वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर ना हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था रुपये चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्थी को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय मैं आपका हिसाब नहीं कर।

0: रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई, सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा, मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा, शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है, मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई, ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यही इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानिए, मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे? बेटा ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया। पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है। यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा, इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो, तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उसने कहा, माताजी, मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये आते हैं, वो कैसे मिलेंगे? तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अतः प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माताजी, ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो, राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधु की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल। श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
1: हाँ श्रोताओ, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
1: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
1: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
1: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कालीकता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कालीकता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
1: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चार नाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहां अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहां अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चार नौक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
1: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहां भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहां फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
1: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
1: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
1: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
1: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकाता सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकाता इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गईं और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
1: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
1: हाँ शोला, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहां सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
1: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो, दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
1: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे 2 बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
1: जी हाँ।
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
1: श्रोताओं, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
1: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है। लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है, वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
1: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती है। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
1: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे, और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं, दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
1: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
1: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
1: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
1: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहाँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
1: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है, और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
1: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कलकत्ता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है। कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव

0: ही नहीं रहता।
1: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तहरेपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय

0: ये दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। मोगली नाम का एक मशहूर करेक्टर है जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है
1: किपलिंग एक जगह लिखते हैं अरे लंदन यहाँ कैसे इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।

0: पहचान है। मेरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद ...1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
1: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया, मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती। वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
0: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन

ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल

0: बिल्कुल बंधी हुई होती हैं और इस तरह के बीज ज्यादातर पहाड़ी है।
1: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है।

0: जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
1: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन।
6: बसंत के ऋतु के ऊपर कुछ गीत सुनाते हैं। पहला गीत है छाई छाई बसंत बयार, कुहक उठी कोयलिया।

अक्सर आपने देखे होंगे, देखा होगा कि बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत पंचमी में हमारे तरफ यहाँ भी होता होगा कि मेले लगते होंगे, मकर संक्रांति का मेला, बसंत पंचमी का मेला, और अभी शिवरात्रि है, शिवरात्रि के भी मेले लगेंगे। मेलों की अपनी अलग परंपरा रही है, 9 दिन चैत्र में और 9 दिन कुमार में भी मेले लगते हैं। मेले में अक्सर आपने देखा होगा कि वो 4 मच्छियाँ छोटी छोटी रहती हैं, उनके वो झूले जो ऊपर से नीचे घूमते हैं, पुराने ज़माने में लकड़ी के वो आते थे, उनको रहट या यहाँ जो भी बोलते हों, लहचुआ है ना, यहाँ लहचुआ बोलते हैं और रहट बोलते हैं, उसका एक गीत सुनिएगा, उस को कहते हैं हिंडोला। और हमारे बघेले में वो हिंडोला आते आते उसका जो गायन परंपरा थी वो हिंडुली हुई, और आजकल उसे हिंदुली कहते हैं। सुनिए हिंदुली।

लीजिए, एक शंकर जी का भी गीत होना चाहिए और शिवरात्रि की परंपरा के अनुसार है। का दई के शिव का मनाई रे, मतलब हम क्या दें कि शिव मान जाएं, शिव मानत नहीं। सुनिए गीत।

एक सुनिए होरी, सिर बांधे मुकुट खेले होरी। इसमें सतयुग से शंकर भगवान पार्वती के साथ, फिर त्रेता में भगवान श्री राम सीता जी के साथ, और द्वापर में कृष्ण भगवान राधा के साथ होली खेल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया चित्रण है।

तो श्रोताओं, संतोष तिवारी और साथी कलाकारों द्वारा बघेली लोक गायन अभी आपने सुना। इसके बाद सुनिए जुगलबंदी सरोद और सितार वादन की, जिसमें कलाकार हैं पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी।

तो श्रोताओं, पंडित तेजेंद्र नारायण और पंडित पूर्वायन चटर्जी की सरोद सितार जुगलबंदी को सुनने के बाद आज का कार्यक्रम भारत भारती संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र, छंद है अत्यष्टि और त्रिष्टुप।
4: इंद्र याह्युपनः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्त्वं राजेव सत्पतिः हवामहे त्वा वयम् प्रयस्वन्तः सुते सचा पुत्रासो न पितरं वाजसातये महिष्ठं वाजसातये। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, यज्ञों में अग्नि की तरह आप दूर से भी पहुँचें, क्षेत्रपालक राजा की तरह आएं। जैसे पुत्र पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम हव्ययुक्त याजक अन्न प्राप्ति के लिए आपका सोम यज्ञ में आवाहन करते हैं। पिबा सोममिंद्र सुवान मद्रिभिः कोशेन सिक्तमवतम न वंशगस्ता तृषाणु न वंशगः मदाय हरियताय ते तुविष्टमाय धायसे आत्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम्। हे इंद्रदेव, आप जल द्वारा सींचे गए और पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषुत हुए सोमरस का वैसे ही पान करें जिस प्रकार तीव्र प्यास से युक्त वृषभ जलाशय में जाकर जल पीते हैं। अभीष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए आपके अश्व वैसे ही आपको यज्ञ स्थल में लेकर आए जैसे किरण रूपी अश्व सूर्य देव को अभीष्ट की ओर प्रेरित करते हैं। अविंद दिवो निहितम गुहा निधिम वेर्ण गर्भम परिवीत मश्मन्यन्ते अंतरश्मनि व्रजम वज्री गवामिव सिशा सन्नंगिरस्तमः अपावृणो दिश इंद्रः परिवृता द्वार इशः परिवृताः। जिस प्रकार गौओं के गोष्ठ अथवा जंगल में छिपाकर रखे गए पक्षियों के बच्चों को कोई मांसभक्षी खोज निकालता है, वैसे ही अंगिराओं में उत्तम तेजस्वी वज्रधारी इंद्रदेव ने असीमित बादलों में छिपे हुए जल के भंडार को खोज निकाला और जल वृष्टि द्वारा मानो इंद्रदेव ने मनुष्यों के लिए धन धान्य रूपी वैभव के द्वारों को ही खोल दिया हो। दाद्रिहाणो वज्रमिंद्रो गभस्त्योह क्षद्मेव तिग्ममसनाय सम श्यद हिहत्याय सम श्यत संविव्यान ओजसा शवोभिरिंद्र मज्मना तष्टेव वृक्षम वनिनोनी वृश्चसि परश्वेव निवृश्चसि। इंद्रदेव अपने हाथों में तेजधार वाले वज्र को शत्रु पर प्रहार हेतु सुदृढ़ता से धारण करते हैं। वे जल की तीव्र धारा के समान ही असुरता के संहार के लिए शस्त्र की धार में अति पैनापन लाते हैं। हे इंद्रदेव, आप अपनी सामर्थ्य से उसी प्रकार परशु शस्त्र द्वारा शत्रुओं का संहार कर देते हैं, जैसे तेज कुल्हाड़े से बढ़ई जंगल के वृक्षों को काट डालते हैं। त्वं वृथा नद्य इंद्र सर्तवेच्छा समुद्र मसृजो रथाम इव वाजयथो रथाम इव इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थ मक्षितम् धेनुरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः। हे इंद्रदेव, आपने नदियों के जल प्रवाह को समुद्र की ओर सतत प्रवाहित होने के लिए उसी प्रकार प्रेरित किया है जैसे शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि के लिए राजा रथों से युक्त सेना को प्रेरित करते हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ के समान ही नदियों के जल प्रवाह विचारशील मनुष्यों के लिए अक्षुण्य धन संपदा को प्रदान करने वाले हैं। इमाम ते वाचम वसुयंत आयवो रथम न धीरह स्वपा अतक्षिशुः सुम्नाय त्वामतक्षिशुः शुंभन्तो जेन्यम यथा वाजेषु विप्रवाजिनम अत्यमिव शवसे सातये धना विश्वा धनानि सातये। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार निपुण कारीगर धन की कामना से प्रेरित होकर श्रेष्ठ रथों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार स्तोतागण आपके लिए प्रशंसक स्तोत्रों का गान करते हैं। हे ज्ञान संपन्न इंद्रदेव, जिस प्रकार सारथी शक्तिशाली घोड़ों को विजय लाभ के लिए अति शक्तिशाली बनाते हैं, वैसे ही स्तोतागण धन बल और सुखों के लाभ के लिए स्तुतियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। भिनत पुरो नवति मिंद्र पूरवे दिवो दासाय महि दाशुसे नृतो वज्रेण दाशुसे नृतो अतिथिग्वाय शंबरम गिरे रुग्रो अवाभरत महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा। हे आनंदप्रद इंद्रदेव, आपने महान दानदाता पुरु और दिवोदास के लिए शत्रुओं की 90 नगरियों का वज्र द्वारा विध्वंस कर डाला। हे पराक्रमी वीर इंद्रदेव, आपने अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रचुर धन संपदा अतिथिग्व के लिए प्रदान की तथा शंबर को पर्वत से गिराकर समाप्त कर दिया। इंद्रः समत्सु यजमानमार्यं प्राविद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीडहेश्वाजिषु मनवे शासदद्व्रतात्वचं कृष्णामरन्धयत् दक्षन्न विश्वं ततृषाणामोषति निर्षसान मोशति। परस्पर संगठित होकर किए जाने वाले युद्धों में सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त इंद्रदेव श्रेष्ठ मनुष्यों का संरक्षण करते हैं। मननशील मनुष्यों को पीड़ित करने वाले दुष्टों को दंडित करके नियंत्रित करते हैं तथा कलुषित कर्मों में संलिप्त दुष्टों का संहार करते हैं। इंद्रदेव उपद्रवियों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि पदार्थों को जला डालती है। निश्चित ही वे हिंसकों को भस्म कर देते हैं। सूरश्चक्रम प्रवृहज्जात ओजसा प्रपित्वे वाच मरुणो मुषायति शान आमुषायति उशना यत् परावतो जगन्नूतये कवि सुम्नानि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणिहि। तेजस्वी और सबके प्रेरक इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्य रूपी चक्र को लेकर शत्रुओं के पास पहुंचते ही उन्हें शांत कर देते हैं। मानो अधीश्वर इंद्रदेव ने उनकी वाणी का ही हरण कर लिया हो। हे क्रांतदर्शी इंद्रदेव, आप जिस प्रकार उशना ऋषि के संरक्षणार्थ अति दूर से ही उनके समीप आते हैं, वैसे ही मनुष्यों के लिए भी सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन दान में व्यतीत करता है, हमारे लिए आप वैसे ही दाता बने। स नो नव्येभिर् वृषकर मुन्नक्थैः पुराम् दर्तः पायुभिः पाहि शग्मैः दिवो दासेभिरिन्द्र स्तवानो वावृधीथा अहो भिरिवद्यौः। शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य संपन्न हे इंद्रदेव, आप नवरचित स्तोत्रों से संतुष्ट होकर सुखप्रद साधनों और हमारे अनुष्ठित कर्मों का संरक्षण करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता को द्युलोक में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे स्तोत्र आपकी शक्ति को बढ़ाएं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

ना है जो जीवन की हर उलझन को सरलता में बदल देती है। तो आइए आज की इस शुभ संध्या का शुभारंभ करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

जैसे पहिया घूमता है वैसे ही कर्म भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप दूसरों के साथ जो करेंगे वो लौट कर हमारे पास जरूर आता है। ये कुदरत का अटल नियम है।

और इसी के साथ हमारा आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है केशव बलिराम हेडगेवार पर।

आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंककर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ गाने

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांग कर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया, उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है, मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कप्तान साहब।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। सुनो कहानी कार्यक्रम में जीवन की सच्चाइयों को दर्शाती हम कुछ कहानियां आपको सुनाते हैं और आज हमने कार्यक्रम में लिया है प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कप्तान साहब।

जगत सिंह को स्कूल जाना बिल्कुल कुनैन खाने जैसा था, या कहिए मछली का तेल पीने जैसा था। वो सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियां भी बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार देहातों में दूर निकल जाता। गालियां खाने में जैसे उसे मजा आता था। गालियां खाने का कोई भी अवसर वो अपने हाथ से नहीं जाने देता था। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्को को पीछे से पकड़कर खींचना, बुजुर्गों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता है, पर हाँ, दुर्व्यसनों का दास होता है, और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को भी जब भी अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा लेता था। नगद ना मिले तो बर्तन और कपड़े ले जाता था। उसे कोई संकोच नहीं होता था। घर में शीशियां और बोतलें थीं, वो सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार में बेच दी थी। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में थी, उसके मारे तो एक नहीं बची। और इस कला में वो ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कानीसों के सहारे अपने दो मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया था वो, और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी सी थाली लेकर उतर आया था और घर वालों को आहट तक नहीं मिली थी। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का यह डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा सपना नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। देहातों में जो भाजी, साग, उपले, ईंधन मुफ्त मिल जाते थे वो यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। और इस कठिन समय में जगत सिंह की हाथ लपकियां बहुत अखरती थीं। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा था। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से पिता की मार खा लिया करता था। अगर वो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता तो ना हिल नहीं पाते वो, पर जगत सिंह इतना सीना जोर नहीं था। हाँ, मारपीट, घुड़की, धमकी किसी का असर नहीं होता था उस पर। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ दूर दूर से दौड़ती, बहने गालियां देती, मानो घर में कोई छुट्टा सांड घुसाया हो। बेचारा उल्टे पांव भागता था। कभी कभी तो दो दो तीन तीन दिन तक वो भूखा रहता था। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वो निर्द्वंद हो गया था। जहां नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो मिल जाता वो खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता वो उससे चौकन्ने हो गए। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर उसकी दाल नहीं गली। नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो धार चढ़ गए। गांजे वालों ने धुआंधार तकादे शुरू कर दिए। हलवाई कड़कती आवाज में बात करने लगा। अब बेचारा जगत जहां से निकलता वहीं से उसको सुनना पड़ता। रात दिन ताक झांक में रहता, पर उसकी घात नहीं मिल रही थी। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागों छीका टूट ही गया। भक्त सिंह दोपहर

होंट निकल पड़े तो वो बड़े संकट में पड़ गया। फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कार रहा था। उसकी दशा तो बिल्कुल उस शिकारी की तरह हो गई थी जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति नहीं थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंख में एक नींद नहीं थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी, इसमें तो संदेह नहीं था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं था, 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम भी नहीं चलेगा, बस्ती में वो कई दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई ना कोई जरूर ही उसका पता बता देगा और वो पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए तो कुछ ना कुछ खर्च भी तो पास होना चाहिए ना। यही सब उसके मन में चल रहा था, तो दूसरी तरफ मन ने कहा कि क्यों ना वो लिफाफे में से एक नोट निकाल ले, ये तो मालूम हो ही जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है, और दादा के पास रुपए तो हैं, दे देंगे। यही सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके कान में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हो गया कि क्यों ना ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो, अरे वाह, बड़ा मजा आ जाए। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सारा रुपया जमा करके घर आ जाएगा और लोग चकित हो जाएंगे। बस उसने मन की मान ली, लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपए के नोट थे। 200 रुपए में तो दूध की दुकान खूब चलेगी। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ा और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और है क्या। लेकिन देखो तो कितने ठाट है, रुपयों की चरस उड़ाता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए रखता है। नफा ना होता तो ये ठाट कहां से निभाता। इस आनंद कल्पना में वो इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाए और वो लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वो मुंबई चल दिया और दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। मुंबई शहर, मुंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था। राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना का नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना और बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो। साहब, फौज में भर्ती कर लीजिए। सैनिक ने कहा, मरने से तो नहीं डरते। जगत सिंह ने भी तुरंत जवाब दे दिया, बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसमें भी डर नहीं, अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। जगत ने भी जवाब दिया। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब है, मन चला हिम्मत का धनी जवान है ये, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हो गया। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वो जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वो भूमि जल में विलीन हो गई तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढाक कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई थी। वो हमारा छोटा सा अपना कस्बा, गांजे की दुकान, सैर सपाटे, सुहृदय मित्रों का जमघट आंखों में फिरने लगा था। कौन जाने फिर कभी भेंट होगी या नहीं। एक बार तो वो इतना बेचैन हो गया कि जी में आया कि पानी में कूद जाए। जगत सिंह को अदन में रहते अब 3 महीने गुजर गए थे। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिनों तक उसे मुग्ध रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत हो गए। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वो दिन याद आया जब एक बार बीमार पड़ गया था।
उसके बचने की आशा नहीं थी, पर ना तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी ना बहनों को, केवल माँ थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी थी, अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीरव रात्रि में रोते देखा था। वो स्वयं रोगों से जीर्ण हो गई थी, लेकिन उसकी सेवा सुश्रुवा में वो अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं था। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वो इसी शोभ और नैराश्य में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखता रहता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वो टाल रहा था। आखिरकार एक दिन उससे नहीं रहा गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा था। अंत में उसने शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया, माताजी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गई थीं। मैं इन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच ना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। बस ये पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ दिया। उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। महीना गुजर गया, जवाब नहीं आया। अब जगत का जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आया? कहीं माताजी बीमार तो नहीं? हो सकता है शायद दादा ने क्रोधवश जवाब ना लिखा हो। हे भगवान, कोई और विपत्ति तो नहीं? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख ली। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाते। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाता। आज वो पागलों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वो इसी ध्यान अवस्था में बैठा ही था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ये दफ्तर का चपरासी था, उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था उसमें, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 साल की सजा हो गई है। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन्न है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, समझे तुम? जगत ने भी कहा, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, कप्तान ने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी एक क्षण भी नहीं रह सकता, मुझे जाना है। जगत ने अपना फैसला सुनाया तो कप्तान ने भी अपना फैसला। रहना तो पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लाम पर जाना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई है। जगत के मन में प्रश्न आ गए, लड़ाई छिड़ गई? अब मैं घर नहीं जाऊंगा? हम लोग कब तक यहां से जाएंगे? कप्तान ने बस जवाब दिया, बहुत जल्द, 2 ही 4 दिनों में। 4 वर्ष बीत चुके थे। कैप्टन जगत सिंह का सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं था। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती थी, उसे अपने सिर करना उसी का काम था। हल्ले और धावे में वो सदैव सबसे आगे रहता। उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। इसके साथ ही वो इतना विनम्र, इतना गंभीर और इतना प्रसन्नचित रहता कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते। उसका पुनर्जीवन हो गया था। उस पर अफसरों का इतना विश्वास था कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते थे। जिससे पूछे वही वीर जगत सिंह की विरुदावली सुना देता था। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाल लाया, कि कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर वो निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं, मानो वो काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जगत सिंह को अवकाश मिलता, वो अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद करता था और 2-4 आंसू बहा लेता था।

वो प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता था और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि जब वो अपनी माता को पत्र ना लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की थी, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे थे। वो कौन दिन होगा जबकि वो उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करेगा और उसके सिर पर हाथ रखकर पिता आशीर्वाद देंगे। 4.25 साल बीत गए। संध्या का समय, नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है और उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हैं, किंतु बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास सा बैठा है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है, देह अस्थिपंजर। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर जैसे रख दी हो। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया है। आए भी कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से नहीं आया? भक्त सिंह ने कंपित स्वर में कहा, घर में है ही कौन, तो घर नहीं चलोगे? अब मेरा घर कहाँ? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। यही जवाब थे बूढ़े भक्त सिंह का। आज 4 साल के बाद भक्त सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का तो सर्वनाश हो गया था, आबरू मिट गई थी, घर बर्बाद हो गया था और उसकी स्मृति भी उन्हें असहनीय थी। किंतु आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्हें अपने उसी तिनके का सहारा था। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, पानी तो देगा। मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया, जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार रहता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सारत्न पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया, ये उसी का दंड है। जहां प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहां परिवार की रक्षा कैसे हो सकती? यही सब कुछ भक्त सिंह के मन में चल रहा था। सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियां कितनी कोमल और मधुर थी, वायु कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे और पक्षियों का कलरव कितना मीठा।

सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी थी, पर भक्त सिंह के चारों ओर घोर अंधकार था और अंधकार। जेल का अफसर आया, कैदी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित हो गए। जिसका नाम आता वो खुश होकर अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था तो कोई मिठाइयां बांट रहा था। कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम भी दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वो सिर झुकाए धीरे धीरे जेलर के पास गया और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर बढ़ चला, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वो जमीन पर बैठ गया। वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन अचानक उसने देखा एक सैनिक अफसर घोड़े पर सवार जेल की ओर आ रहा है। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारजोबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम ठोक दिया। भक्त सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वो है जिसके लिए देखो फिटन आ रही है और एक अभागा मैं हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं। फौजी अफसर अब पास आ गया था। उसने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह तो पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो चौंक कर बोल उठे, अरे बेटा जगत सिंह। और जगत सिंह रोता हुआ अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की जादू बिखेरती कहानी कप्तान साहब। अब दीजिए भारती को अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलनी। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है पंडित किशन महाराज पर।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: श्रोताओं, आज कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में हम बात करेंगे बनारस घराने के गौरव कहे जाने वाले पंडित किशन महाराज की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र चमके हैं जिनकी आभा सदियों तक कला के मार्ग को आलोकित करती रहती है। लय, ताल और छंद की इस त्रिवेणी में जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व की खोज करते हैं जिसने साधना से ऐसी सिद्धि हासिल की कि न केवल वो स्वयं कालजयी कहे जाते हैं बल्कि उन्होंने अपने साज को भी परम ऊंचाई प्रदान की।
1: जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज जो धमक है वो साज की है जो किसी भी महफिल की जान होता है। आज बात उस उस्ताद की, उस महान संगीतिक पंडित की जिसकी उंगलियों में गंगा की लहरों का वेग और माथे पर महादेव का तिलक रहता था। आज हम बात करेंगे तबला सम्राट ताल शिरोमणि पंडित किशन महाराज जी की। एक ऐसा फकीर और शेर कलाकार जिसने तबले को संगतकार के पीछे के अंधेरे से निकालकर मंच के ठीक बीचों बीच उजाले में ला खड़ा किया।
0: बनारस घराने के गौरव, तबले के अप्रतिम सम्राट और भारतीय संस्कृति के प्रखर ध्वजवाहक पंडित किशन महाराज केवल एक तबला वादक ही नहीं थे, वे मंच पर संगीत के एक ऐसे महानायक थे जिनकी उंगलियों में गंगा का प्रवाह था, जिनकी थाप में बिजली की कड़क थी और जिनके व्यक्तित्व में एक शेर जैसी दहाड़ और गरिमा थी। उन्होंने तबले को महज एक संगत के वाद्य से ऊपर उठाकर स्वतंत्र वादन के शिखर पर प्रतिष्ठित किया।
1: श्रोताओं, किशन महाराज सिर्फ अपने तबले के लिए नहीं बल्कि अपने कड़क और शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। मंच पर जब वे बैठते थे तो उनका रौब देखने लायक होता था। रेशमी कुर्ता, गले में सोने की कंठी, उंगलियों में अंगूठियां, माथे पर बड़ा सा लाल तिलक और मूछों पर ताव, वे किसी राजा से कम नहीं लगते थे। वे अक्सर कहते थे, हम बनारस के हैं, किसी से दबकर नहीं बजाते। उन्होंने ये साबित किया कि तबला वादक मुख्य कलाकार से छोटा नहीं होता, वो महफिल का बराबरी का हिस्सेदार होता है।
0: जी हाँ, लेकिन ये बराबरी का दर्जा और ये ठसक यूं ही नहीं आई, इसके लिए पंडित जी ने बरसों कठिन साधना की। दोस्तों, विश्व के प्राचीन और आध्यात्मिक शहर वाराणसी में एक मोहल्ला है कबीर चौरा। यह केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक पवित्र गर्भगृह है। इसी कबीर चौरा की गलियों में बड़े बड़े उस्तादों, पंडितों और कथक नृत्यांगनाओं का बचपन बीता है और इसी मिट्टी में 3 सितंबर 1923 को पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ।
1: और जिस दिन किशन जी का जन्म हुआ वो कोई साधारण दिन नहीं था, वो कृष्ण जन्माष्टमी की पावन रात थी। पूरा देश जब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के आनंद में डूबा था, तब कबीर चौरा के इस संगीतकार परिवार में एक बालक की किलकारी गूंजी। कृष्ण जन्म के इस अद्भुत संयोग के कारण ही बालक का नाम किशन रखा गया। उनके परिवार की कई पीढ़ियां संगीत की सेवा में लीन थीं, इसलिए संगीत सीखने के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत तो थी नहीं किशन जी के पिता पंडित हरि महाराज अपने समय के बेहद प्रतिष्ठित और कुशल तबला वादक थे। बालक किशन ने होश संभालते ही घर में 2400 घंटे तबले की थाप, डग्गे की गूंज और शिष्यों का जमावड़ा देखा। उनके पिता ने किशन के भीतर छिपी लयबद्धता को बहुत जल्दी पहचान लिया था और उन्होंने खेल खेल में बालक को तबले के मूल अक्षरों जैसे ता, धिन, धा का ज्ञान देना शुरू कर दिया था।
0: लेकिन श्रोताओं, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब किशन महाराज एक अबोध बालक थे तभी पंडित हरि महाराज का अचानक निधन हो गया। पिता के साये के उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बालक किशन के सामने केवल पिता की कमी नहीं थी बल्कि उस महान संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने की चुनौती भी थी जो उनके पूर्वजों ने शुरू की थी। और इसी संकट के समय उनके जीवन में एक मसीहा, एक गुरु और एक पिता के रूप में प्रवेश हुआ, पंडित कंठे महाराज का। पंडित कंठे महाराज किशन जी के सगे चाचा थे और उस समय बनारस घराने के सबसे प्रखर और सम्मानित तबला आचार्यों में से एक थे। वे न केवल अपने अद्वितीय वादन के लिए जाने जाते थे बल्कि संगीत के प्रति उनकी अदम्य अनुशासन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए भी वे प्रसिद्ध थे। भाई के निधन के बाद उन्होंने बालक किशन को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने न केवल किशन के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई बल्कि यह संकल्प भी लिया कि वे किशन को बनारस घराने का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनाएंगे जिसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी।
1: श्रोताओं, हम अपने कार्यक्रम में जब भी किसी महान कलाकार की जिंदगी की डायरी के पन्ने खोलते हैं तो उनमें सबसे अहम इबारत वो होती है जिसमें उनके द्वारा की गई साधना का जिक्र होता है। यही वो समय होता है जब प्रतिभा तप कर कुंदन बनती है और फिर सालों साल की गई मेहनत की सुगंध से पूरी दुनिया सुवासित होती है। संगीत के क्षेत्र में आप नवांकुर हों या युवा साधक, निश्चित ही रेडियो आजाद हिंद के जरिए आप तक पहुंचने वाली इस जानकारी से प्रेरणा लेकर आप भी कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर जगा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं पंडित किशन महाराज के उस सघन साधना काल के बारे में।
0: जी हाँ, पंडित जी के गुरु कंठे महाराज जी की तालीम कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। वह एक कठिन तपस्या थी जहां शरीर को गलाना और आत्मा को सुरों में ढालना पड़ता था। किशन जी के सीखने के दिनों की दिनचर्या आधुनिक सोच को लगभग झकझोर देने वाली है। बालक किशन को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, कड़ाके की ठंड में भी उठा दिया जाता था। उस पर भी गुरु का आदेश था कि रियाज पर बैठने के पहले शरीर और मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। किशन जी गंगा नदी के घाट पर जाकर स्नान करते और सूर्योदय से पहले गुरु के सामने उपस्थित हो जाते।
1: और पंडित जी के तबले की तालीम की शुरुआत किसी पेचीदा टुकड़े या तिहाई से नहीं हुई। कंठे महाराज ने किशन जी को लगातार 6 महीने तक केवल एक ही अक्षर बजाने का आदेश दिया था और वो था धा। गुरु का कहना था कि जब तक तुम्हारे हाथ से निकलने वाले धा में गंगा के पानी जैसी पवित्रता और गूंज ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, बनारस घराने की वादन शैली को खुले हाथ का वादन कहा जाता है। इसमें उंगलियों के साथ साथ पूरी हथेली और कलाई की ताकत का इस्तेमाल होता है। इस शैली को साधने के लिए हाथों में असीम शक्ति की आवश्यकता होती है
0: और इसीलिए घंटों लगातार भारी तबले पर चोट करने के कारण बालक किशन की उंगलियों की त्वचा फट जाती थी और कई बार उनसे खून निकलने लगता था। जब वे दर्द से कराहते तो कंठे महाराज उन पर तरस खाने के बजाय उन जख्मों पर गर्म सरसों का तेल और कत्था लगा देते थे और कहते थे, बेटा, यह दर्द ही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, बजाते रहो। और उस पर रियाज से बालक का मन न भटके, इसलिए कभी कभी उन्हें एक शांत कमरे में घंटों बंद कर दिया जाता था। उनके पास केवल उनका तबला, पानी का एक घड़ा और गुरु जी की आज्ञा होती थी। दिन में 12 से 16 घंटे का यह अनवरत रियाज किशन जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था।
1: श्रोताओं, पंडित कंठे महाराज केवल बंद कमरों के गुरु नहीं थे, वे किशन जी को बनारस के घाटों पर ले जाते थे। वे कहते थे कि किशन, उस धोबी को देखो जो कपड़े धो रहा है, उसकी थाप में एक लय है। उस नाव चलाने वाले को देखो जो चप्पू चला रहा है, उसकी गति में एक छंद है। मंदिर के घंटों की गूंज सुनो, उसमें एक नाद है। जब तक तुम प्रकृति की इस सहज लय को अपने भीतर नहीं उतारोगे, तुम्हारा तबला केवल शोर मचाएगा, संगीत नहीं पैदा करेगा।
0: पंडित किशन महाराज और पंडित कंठे महाराज का संबंध भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह रिश्ता केवल एक शिक्षक और छात्र का नहीं था। कंठे महाराज के अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे किशन जी को अपनी संतान से भी बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन उनका यह प्यार कभी किशन की तालीम में ढीलापन नहीं लाया। जितने बड़े दयालु पिता थे, उतने ही क्रूर उस्ताद भी थे।
1: जी हाँ, वो सीख भी देते तो उसमें भी काफी कठोरता होती। कुछ ऐसा ही किशन महाराज जी के जीवन का एक बेहद प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद किस्सा है। जब किशन जी लगभग 18-19 वर्ष के थे, तब उनकी कला में काफी निपुणता आ चुकी थी। बनारस की एक स्थानीय महफिल में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। श्रोताओं ने उन्हें पैसों और तारीफों से लाद दिया। किशन जी जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक गर्व और अहंकार का भाव था। वे गुरु के सामने थोड़े अभिमान से बैठ गए।
0: अब उस्ताद तो उस्ताद थे, पंडित कंठे महाराज ने बालक की आंखों में वह अहंकार देख लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे किशन जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। किशन जी दंग रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए पूछा, गुरु जी मेरा अपराध क्या है? आज तो सबने मेरी इतनी तारीफ की है। कंठे महाराज ने बहुत ही गंभीर और वात्सल्य भरे स्वर में कहा, बेटा थप्पड़ तुम्हारी कला को नहीं, तुम्हारी आंखों में आए उस घमंड को मारा है। जिस दिन एक कलाकार यह सोच लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है और वह सर्वश्रेष्ठ हो गया है, उसी दिन उसकी कला का अंत हो जाता है। तारीफें जहर की तरह होती हैं, इन्हें कान से सुनो लेकिन दिल में मत उतरने दो।
1: और फिर श्रोताओं, किशन जी ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और अंतिम सांस तक वे खुद को एक अदना छात्र ही मानते रहे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीता, किशन महाराज की ख्याति फैलने लगी। कई बार ऐसा होता था कि मंच पर पंडित कंठे महाराज मुख्य कलाकार के साथ बैठे होते थे और किशन महाराज उनके पीछे तानपुरा या छोटे तबले पर संगत कर रहे होते थे। कंठे महाराज अपनी वृद्धावस्था में जब कभी थक जाते तो वे बीच महफिल में गर्व से मुड़कर देखते और कहते, अब आगे का समा मेरा किशन बांधेगा। जब किशन जी अपनी कड़क बनारसी उठान और रेला शुरू करते तो कंठे महाराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते थे। वे मंच पर ही चिल्ला उठते थे, जियो मेरे शेर, तुमने आज अपने बाप का नाम रोशन कर दिया।
0: श्रोताओं, इन दोनों का संबंध इस कदर आध्यात्मिक था कि वे एक दूसरे के मन की बात बिना बोले समझ जाते थे। जब पंडित कंठे महाराज का अंतिम समय निकट आया तो वे अस्वस्थ थे। किशन जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनके पैर दबाते थे और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते थे। कहा जाता है कि कंठे महाराज ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले किशन जी का हाथ अपने हाथ में लिया, उनकी उंगलियों को चूमा और कहा, किशन मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें बहुत मारा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी उंगलियों में वो वज्र देखना चाहता था जो काल को भी मात दे दे। आज मैं चैन से मर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद बनारस घराने की मशाल बुझेगी नहीं बल्कि और तेज चमकेगी।
1: और दोस्तों, अब बात करते हैं बनारस घराने की वादन शैली और किशन जी के योगदान की। तबले के मुख्य रूप से 6 घराने माने जाते हैं, दिल्ली, लखनऊ, फरुखाबाद, अजराड़ा, पंजाब और बनारस। इन सब में बनारस घराने की शैली अपनी कुछ खासियतों के कारण सबसे अलग और निडर मानी जाती है। जहाँ दिल्ली घराने में उंगलियों के पोरों का महीन काम होता है, वहीं बनारस घराने में हथेलियों के भारी प्रहारों का प्रयोग होता है। पंडित किशन महाराज इस शैली के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। इसके साथ ही किशन जी के वादन में रेला यानी तीव्र गति का जो वादन होता था, उसकी तुलना गंगा की तेज लहरों से की जाती थी। उनके हाथ की थाप इतनी साफ होती थी कि बहुत तेज गति में भी तबले का एक एक अक्षर यानी बोल श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई देते थे।
0: जी हाँ, और इसके साथ ही किशन महाराज जी का तबले के लिए महत्वपूर्ण योगदान ये है कि किशन महाराज जी से पहले अधिकांश तबला वादकों को मुख्य रूप से एक संगतकार माना जाता था जो मुख्य गायक, सितार वादक या नर्तक के पीछे बैठकर केवल ताल देने का काम करते थे। उन्हें वह सम्मान और स्थान नहीं मिलता था जो मुख्य कलाकार को मिलता था। लेकिन किशन जी ने इस रूढ़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने यह मांग की और साबित किया कि तबला अपने आप में एक संपूर्ण वाद्य है। जब वे मंच पर सोलो परफॉर्मेंस के लिए बैठते थे तो हजारों की भीड़ केवल उनका तबला सुनने के लिए आती थी। उन्होंने तबले को मंच के पीछे से उठाकर सेंटर स्टेज में ला खड़ा किया।
1: दोस्तों, अपने गुरु के स्वर्ग से धारने के बाद भी पंडित जी ने कभी अपने संगीत से कोई समझौता नहीं किया। एक बार की बात है, किसी रियासत के नवाब ने किशन जी को अपने महल में बजाने के लिए आमंत्रित किया। नवाब साहब महफिल के बीच में ही आपस में बातचीत करने लगे और उनका ध्यान संगीत पर नहीं था। किशन जी ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत तबला बजाना बंद कर दिया। नवाब ने हैरान होकर पूछा, महाराज आप रुक क्यों गए? किशन जी ने गरजते हुए कहा, नवाब साहब मैं बनारस का ब्राह्मण हूँ और ये तबला मेरी इबादत है। मैं यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आया हूँ। अगर आपको सुनना है तो अदब से बैठिए, वरना मैं अपना साज उठा रहा हूँ। नवाब साहब को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी।
0: उनकी बनारसी ठसक के इसी तरह के एक संस्मरण का जिक्र पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने एक बार याद करते हुए बताया था कि एक बार वे और किशन जी एक ग्रामीण इलाके में खुले मेले में परफॉर्म करने गए थे। वहां दर्शकों की भीड़ बहुत शोर मचा रही थी। लोग गाय, ऊंटों और अपने मवेशियों की बात कर रहे थे। किशन जी ने माहौल देखा तो वे अपनी बंदूक, जो वे अक्सर अपने साथ शौकिया तौर पर रखते थे, मंच पर लेकर आ गए। उन्होंने मंच पर बैठकर शांति से बंदूक साफ करने का नाटक किया। हवा में दो हवाई फायर किए और बंदूक को जनता की तरफ घुमा दिया। इसके बाद तो पूरे मेले में सन्नाटा छा गया और दोनों कलाकारों ने शांति से अपना कार्यक्रम पूरा किया।
1: दोस्तों, पंडित किशन महाराज ने अपने दौर में लगभग हर बड़े कलाकार के साथ मंच साझा किया और उनकी जुगलबंदियां आज भी संगीत के इतिहास की धरोहर हैं, जैसे पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान। ये दोनों दिग्गज सुरों का जाल बुनते थे तो किशन जी का तबला उन सुरों को एक ऐसी लयबद्ध गति देता था कि पूरी महफिल झूम उठती थी। इसके साथ ही पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी के कथक नृत्यों के साथ किशन जी की संगत अद्भुत होती थी। बिरजू महाराज जब पैरों से घुंघरुओं की तान छेड़ते थे तो किशन जी तबले पर उसका ऐसा सटीक जवाब देते थे कि दोनों के बीच का संवाद देखने लायक होता था। पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी के साथ उनके कॉन्सर्ट्स केवल संगीत के नहीं बल्कि थिएट्रिकल रूप से भव्य होते थे। बिरजू महाराज के पैरों की घुंघरू की गति पर किशन जी जब तबले से हूबहू वही ध्वनि निकालते थे तो वो मंच का सबसे रोमांचक क्षण होता था। लोग इन कार्यक्रमों को देखने के लिए महीनों पहले से टिकटें बुक कर लिया करते थे।
0: वैसे दोस्तों, पंडित किशन महाराज का संगीतमय सफर केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी गूंजती हुई थाप और अद्वितीय लयकारी से देश विदेश के हर बड़े कॉन्सर्ट हॉल को मंत्रमुग्ध किया। मंच पर उनका ऐसा दबदबा था कि विदेशी श्रोता, जो भारतीय ताल व्यवस्था से पूरी तरह परिचित नहीं थे, वे भी उनकी गणितीय शुद्धता और प्रस्तुतिकरण के दीवाने हो जाते थे। आइए अब आपको बताते हैं उनके कुछ ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के बारे में। पंडित किशन महाराज ने 1960 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वैश्विक स्तर पर तबले को एक सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।
1: उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी दौरा ब्रिटेन दौरा और एडिनबर्ग फेस्टिवल माना जाता है। 1965 में उन्होंने यूके के विश्व प्रसिद्ध एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल और कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल में भाग लिया। इन समारोह में पश्चिमी देशों के महान संगीतकारों और समीक्षकों के सामने उन्होंने बनारस घराने के खुले हाथ के वादन का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश प्रेस ने उनकी जटिल तिहाई और चक्करदार टुकड़ों की गणितीय सटीकता को मैजिक करार दिया था।
0: श्रोताओं, इसके साथ ही शीत युद्ध के दौर में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत किशन जी ने सोवियत संघ के कई शहरों जैसे मॉस्को, लेनिनग्राद की यात्रा की। वहां के श्रोताओं के लिए तबले की यह गति और धमक बिल्कुल नई थी। उनके सोलो वादन के बाद रूसी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी और कई मिनटों तक तालियां बजाई थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड, पोलैंड, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों का व्यापक दौरा किया। यूरोपीय दौरों पर वे अक्सर रागों के समय चक्र और भारतीय तालों की जटिल लयकारी को पश्चिमी दर्शकों को बहुत ही सरल और रोचक अंदाज में समझाते थे।
1: जुलाई 1995 में लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में उनका एक ऐतिहासिक लाइव तबला सोलो आयोजित हुआ, जिसे बाद में एक प्रसिद्ध लाइव एल्बम के रूप में भी जारी किया गया, और उन्होंने वर्ष 2002 में रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में उस्ताद विलायत खान साहब के साथ एक यादगार प्रस्तुति दी थी, जिसका शीर्षक था When Time Stood Still। ये कॉन्सर्ट आज भी शास्त्रीय संगीत के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग में गिना जाता है।
0: दोस्तों, हमारे देश का ऐसा कोई प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन नहीं था जो पंडित किशन महाराज की थाप के बिना पूरा माना जाता हो। हम आपको बता ही चुके हैं कि मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉन्सर्ट में बजाना शुरू कर दिया था। तो हम आपको संक्षिप्त में उनके कुछ महत्वपूर्ण भारतीय कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर के ऐतिहासिक मंच पर किशन जी ने कई बार अपनी कला का जौहर दिखाया। यहाँ संगीत पारखियों के सामने बनारस घराने की कड़क और दमदार बंदिशें पेश करना उनकी खासियत थी।
1: और जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारे यहाँ कोलकाता को शास्त्रीय संगीत का मक्का कहा जाता है। डोवर लेन कलकत्ता के मंच पर पंडित किशन महाराज का होना महफिल के सुपरहिट होने की गारंटी माना जाता था। यहाँ उन्होंने पंडित रविशंकर और उस्ताद अमजद अली खान के साथ कई ऐतिहासिक जुगलबंदियां प्रस्तुत की। साथ ही सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे के बेहद अनुशासित और विशाल मंच पर किशन जी का सोलो वादन सुनने के लिए रात रात भर हजारों संगीत प्रेमियों की भीड़ डटी रहती थी।
0: दोस्तों, इसके अलावा नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में उस्ताद अमजद अली खान और पंडित किशन महाराज का एक ऐसा ऐतिहासिक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें राग श्री और राग खमाज पर उनकी संगत इतनी बेजोड़ रही कि रोमांचित होकर श्रोता अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे। किशन महाराज जी केवल हिंदुस्तानी यानी उत्तर भारतीय संगीत तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने भारतीय संगीत के दोनों स्वरूपों उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी प्रयास किया।
1: जी हाँ, पंडित जी का दक्षिण भारत के महान मृदंगम विद्वान पंडित पालघाट आर रघु के साथ किया गया ताल वाद्य कचहरी जुगलबंदी कार्यक्रम संगीत जगत में मील का पत्थर माना जाता है। एक तरफ तबले की बनारसी गूंज और दूसरी तरफ मृदंगम की थाप, इन दोनों का संवाद गणित और कला का ऐसा अद्भुत मिश्रण था जिसकी कोई तुलना नहीं है।
0: श्रोताओं, वैसे तो पंडित जी का मुख्य क्षेत्र शास्त्रीय मंच ही था, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को भी अपनी कला से समृद्ध किया। सन 1955 में आई महान निर्देशक वी शांताराम की कालजयी फिल्म झनक झनक पायल बाजे में शास्त्रीय नृत्य और संगीत को मुख्य आधार बनाया गया था। इसके संगीत में किशन जी के तबले की थाप ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान की। और फिर 1965 में आई नवकेतन फिल्म्स की क्लासिक फिल्म गाइड के गानों और पृष्ठभूमि संगीत में, विशेषकर जहां वहीदा रहमान के नृत्य के दृश्य हैं, किशन जी के तबले का जादू साफ सुना जा सकता है।
1: दोस्तों, किशन जी को मंच पर ड्रामा और भव्यता पसंद थी। वे अपने तबले पर भारी मात्रा में टेलकम पाउडर का इस्तेमाल करते थे। जब वे बहुत तेजी से और कड़क हाथ से तबले पर प्रहार करते थे तो पाउडर हवा में उड़कर मंच पर एक कृत्रिम धुंध या कोहरे जैसा माहौल बना देता था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था, और इसी समय मंची प्रकाश में उनकी छवि देखती ही बनती थी।
0: भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने किशन जी की महान साधना को समय समय पर सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें वर्ष 2002 में प्रदत्त भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो यह दर्शाता है कि वे भारतीय संस्कृति के कितने बड़े स्तंभ बन चुके थे। इससे पहले उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही देश की सबसे बड़ी कला अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया।
1: श्रोताओं, पंडित किशन महाराज ने अपनी कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गुरु कंठे महाराज से मिली तालीम को अगली पीढ़ी में बहुत ही ईमानदारी से बांटा। उनके प्रमुख शिष्यों की एक लंबी सूची है जो आज पूरी दुनिया में बनारस घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले उनके पुत्र पंडित पूरन महाराज, जिन्होंने पिता की इस कठिन विरासत को संभाला है। और आज के समय के सबसे शक्तिशाली और कुशल तबला वादकों में से एक पंडित कुमार बोस, जिनके वादन में किशन जी की छवि साफ दिखाई देती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वादक पंडित सुखविंदर सिंह, पिंकी और पंडित संजू सहाय, जिन्होंने बनारस घराने की परंपरा को, इस शैली को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया।
0: जानते हैं दोस्तों, तबले के महानतम उस्ताद अहमद जान थिरकवा ने एक बार किशन महाराज जी को देखकर कहा था, मियां किशन, इस मुल्क में सिर्फ तुम और मैं तबला बजाते हैं, बाकी सब तो तबली यानी छोटा खिलौना बजाते हैं। यह टिप्पणी दर्शाती है कि देश हो या विदेश, पंडित किशन महाराज का तबला महज एक साज नहीं बल्कि मंच पर गरजने वाला एक सिंह था।
1: दोस्तों, 4 मई 2008 को 84 वर्ष की आयु में वाराणसी के कबीर चौरा के सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही भारतीय तबला वादन के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। काशी के साथ ही पूरे देश के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। गंगा के घाटों पर उनके अंतिम संस्कार के समय हजारों नम आंखें इस महान सपूत को विदा कर रही थीं। आज भले ही किशन जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी दुनिया में कहीं कोई तबला वादक पूरे स्वाभिमान के साथ मंच के केंद्र में बैठकर धा की गूंज पैदा करेगा, जब भी बनारसी उठान की कड़क सुनाई देगी और जब भी गुरु शिष्य के रूहानी संबंधों की बात होगी, पंडित किशन महाराज का नाम अमर रहेगा। वे संगीत के इतिहास के पन्नों पर अपनी थाप से एक ऐसा अमिट हस्ताक्षर कर गए हैं जिसे समय की कोई भी लहर मिटा नहीं सकती।
0: जी हाँ, पंडित किशन महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक घोर तपस्या, स्वाभिमान और ईश्वर से मिलन का मार्ग है। एक अनाथ बालक से लेकर पद्म विभूषण और तबला सम्राट बनने तक का उनका सफर कठोर परिश्रम और गुरु भक्ति की ऐसी सर्वोत्कृष्ट मिसाल है जो मशाल बनकर सदियों तक संगीत साधकों के रास्तों को रोशन करती रहेगी। तो आज कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में बात किसी और मूर्धन्य कला सड़क की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख संदीप शर्मा, वाचन स्वर विजयकांत नायक और
1: मनीषा चतुर्वेदी,
0: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: देश का चैनल, देश के लिए। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है 29 मई और ये दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के सैनिक अपने पूरे तन मन से अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत की सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। हर परिस्थिति, हर मौसम का सामना करते हुए न उन्हें आग उगलती गर्मी से घबराहट है, न -50 डिग्री में खून जमा देने वाली बर्फ की कपकपी से। उनके सीने में हर वक्त धड़कता है तो सिर्फ हिंदुस्तान, और रगों में लहू बनकर दौड़ती है निश्चल राष्ट्रभक्ति। भारत का हर नागरिक इन वीरों के प्रति सदैव से ऋणी था और रहेगा। श्रोताओं, आज का दिन यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो समर्पित है उन वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए, जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में काम करते हैं। चलिए तो आज के दिन को हम मनाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, महत्व क्या है, संदेश क्या है, जानते हैं ये सब कुछ हमारे आज के अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता सर से, जो हमारे साथ आज की परिचर्चा में उपस्थित हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन।
3: धन्यवाद।
1: सर, पहला प्रश्न आपसे यही करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इस दिन का महत्व क्या है और कैसे हम इसे मनाते हैं?
3: यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स डे आज के दिन 29 मई को
1: जी।
3: जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में के जो मिशंस हैं उसमें जो सर्विंग मिलिट्री, पुलिस और सिटीजन सिविलियन कर्मी जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
3: वो विदेशों में बहुत दूर दूर और संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपनी नौकरी, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं तो उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है
1: जी।
3: इनकी वर्दियों में जो कॉमन चीज है, जिनको इनसे पहचाना जाता है, वो उनकी ब्लू हेलमेट है
1: जी।
3: और ब्लू बेरे है, तो उनका जो प्रोफेशनल स्किल है, उनका डेडिकेशन है, ये दिवस उनको मान्यता देता है। साथ ही जो शांति की खोज में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन सैनिकों को कई बार बलिदान करना पड़ता है शांति मेंटेन करने में, तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है। अब इस तिथि का महत्व ऐसे है कि 29 मई को 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के जो पहला, सबसे पहला शांति रक्षा मिशन था, यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन था, उसका जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना हुई थी, UNTCO की। ये था लेबनान और इजराइल के बीच जो संघर्ष था उस समय, उसके बीच उनको वहां पे शांति बहाल करने के लिए था। आज का दिन उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने सेवा करते अपनी जान गंवाई। काफी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के जो सैनिक इसमें जाते हैं उन्होंने जान भी गंवाई है। विश्व भर में सक्रिय अभियानों में सेवारत हजारों कर्मियों के उनके योगदान को भी उजागर करता है और ये जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है कि जो नागरिकों की रक्षा करने, स्थिरता को बढ़ावा देने में जो शांति सैनिक लगे हुए हैं, शांति रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है
1: जी।
3: उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है, जोर डालता है और जागरूकता बढ़ाता है। इसको मनाने के लिए इसमें पुष्पांजलि समारोह होते हैं, पदक प्रदान समारोह होते हैं, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में होते हैं और तमाम मिशन हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर भी होते हैं
1: जी।
3: पूरे विश्व में इनके आयोजन होते हैं, जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्र मिशन है, 193 मेंबर नेशंस हैं संयुक्त राष्ट्र के
1: जी।
3: तो जहाँ जहाँ पे मिशन हैं वहाँ वहाँ होते हैं। हर एक जगह पर, हर एक वर्ष में एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे हम थीम कहते हैं
1: जी।
3: इस साल की थीम क्या है
1: जी जी।
3: तो इस साल 2026 की जो थीम है ये इनकी इन्वेस्ट इन पीस
1: जी जी।
3: और इस तरीके से थीम डिसाइड की जाती है कि उनकी चुनौतियों को उजागर किया जा सके। इन्वेस्ट इन पीस मतलब शांति रक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें इन्वेस्ट करें।
1: सर, दूसरा सवाल ये बनता है कि जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया शांति सेना, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या है, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी? हम जानना चाहेंगे आपसे सेना के इसके चार्टर, भूमिका, संरचना के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,
1: जी जी,
3: यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा तैनात
1: जी
3: एक बहुपक्षीय, जिसे कहते हैं मल्टी फोर्स, मल्टी कंट्री की जो है मल्टी मेंबर फोर्स है, एक फोर्स खड़ी करते हैं, बल करते हैं
1: जी,
3: जो संघर्ष से शांति की ओर बढ़ाने में सहायता करती है। किन देशों को? जहाँ पे विवाद चल रहे हैं, जहाँ पे संघर्ष है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी चीजों के, तो सदस्य देशों के सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी मिलकर एक कंटिजेंट बनाते हैं और उस जोखिम वाले क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, जैसा उनको मैंडेट किया जाता है। संघर्ष ग्रस्त क्षेत्र जो है उसमें शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया एक बल, जिसको कह लें अंतर्राष्ट्रीय बल, ये है यूएनपी की पीस कीपिंग फोर्स। ब्लू हेलमेट, जैसे मैं बता चुका हूँ, ब्लू हेलमेट और ब्लू बेरेट के नाम से इनको जाना जाता है। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनको संचालित करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर

0: रिकॉर्ड साइन हुआ होगा उसके बाद आया
1: जी।
0: शांति सैनिक निष्पक्ष रहते हैं, निष्पक्ष का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय रहते हैं
1: जी जी जी,
0: वो दोनों पक्षों से अलग हटके अपने शांति व्यवस्था को जो उनको मैंडेट दिया हुआ, जो उद्देश्य दिया हुआ उसकी पूर्ति करते, किसी एक का पक्ष नहीं लेते
1: जी जी।
0: ये नहीं कि किसी ए ने बी के ऊपर हमला कर दिया तो वो बी की तरफ से फायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो दोनों के बीच में एक विवाद को हटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कमजोर का भी साथ दे दें या उस स्थिति में, या उस स्थिति में भारी पड़े लोगों का साथ दे, नहीं, बीच में जा करके उनको अलग करेंगे। इस तरीके का उनका टैक्टिक्स रहती है, उस तरीके की नीतियां रहती हैं। और तीसरा है कि बल प्रयोग ना करना
1: जी जी,
0: कि वो बल का प्रयोग आत्मरक्षा में करेंगे या जो उनको मैंडेट दिया हुआ है, जो उनको उद्देश्य दिया हुआ है उसकी रक्षा में करेंगे, अदरवाइज वो बल का प्रयोग नहीं कर सकते। विशिष्ट परिस्थितियों में करते हैं जिसके लिए उन्हें मैंडेट दिया जाता है पहले से कि हाँ वो अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वे मतलब आजाद हैं कि हाँ वो फ्री हैं कि बल का प्रयोग सारे सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर वो बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और जिसके लिए मैंडेट सिक्योरिटी काउंसिल ही देती है
1: जी जी।
0: इसका जो है चार्टर की जो आप बात कर रही थी, जो भूमिकाएं हैं वो यह है कि नागरिक आबादी की रक्षा करें, मुख्यतः नागरिक आबादी की रक्षा करने के लिए ही है जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब इसको आप अपने ही देश में ले लें, कश्मीर में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था उसके हिसाब से ले लें। शांति प्रक्रियाओं की निगरानी करना है, शांति समझौतों को लागू करना है, जो समझौते हुए हैं जिसके बाद ऑब्जर्वर ग्रुप या ये मिशन या मिलिट्री ग्रुप्स आए हैं, शांति सेना वहां तैनात की गई है, तो जो समझौते हुए उनको लागू करना है, समझौतों के हिसाब से समझौतों को ना तोड़ें, नहीं तो फिर वहां संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। संघर्ष या प्रकोप को बढ़ने से रोकें
1: जी जी।
0: मानवाधिकारों की रक्षा करें और लॉ को, लॉ एनफोर्समेंट उसको मजबूत करें। और चूंकि शांति बहाल कर रहे हैं तो जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, डेमोक्रेटाइजेशन है, सरकार का इलेक्शन है उसको करें, और जो ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प, उसमें आगे बढ़े।
1: सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी उनका उद्देश्य हमें बताया, तो किस तरह का इनका संगठन होता है, इनके ऊपर कमान किसकी रहती है, नियंत्रण ढांचा कैसा रहता है इनका?
0: इनका जो संगठन है, संगठन में कह लीजिए इसमें मिलिट्री पर्सनल होते हैं
1: जी जी,
0: कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पर्सनल होते हैं और नागरिक कर्मचारी भी होते हैं, सिटीजन्स भी होते हैं जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो जैसे पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको बहाल करना है, बाढ़ नियंत्रण करना है, बहुत सारे इस तरीके के जो आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो दस्ते वो शामिल होते हैं, है ना। अब इनका नियंत्रण जो देखिए, इसका एक पदानुक्रम जो हायरार्की है वो मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक इनकी एजेंसी है, वो इनको अधिकृत करती है
1: जी जी।
0: वो इनको मैंडेट देती है, वो इनके उद्देश्य को परिभाषित करती है और बल प्रयोग के लिए नियम जो है वो निर्धारित करती है। और ये कब करती है, अधिकृत कब करती है, जब दो पक्ष राजी हों कि हाँ हमें इस सुरक्षा सैनिकों की, शांति सुरक्षा सैनिकों की जरूरत है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, फिर आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी शांति रक्षा जितने भी अभियान चल रहे हैं विश्व में, 3 महाद्वीपों में हैं अभी, 11 मिशन्स हैं, उनके समग्र अभियान, उनका जो समग्र कमान है और नियंत्रण उनके पास होता है, वो उनके पास होते हैं। फिर शांति अभियान विभाग है, डीपीओ, डिपार्टमेंट ऑफ पीस, ये विभाग जो मिशंस हैं उनके पॉलिटिकल और जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं उनको देती है। शांति अभियान के जो अवर सचिव हैं, जिसे कहते हैं महासचिव से जो नीचे का पद है, उसके मिशन के संचालन की देखरेख करते हैं। महासचिव के जो विशेष प्रतिनिधि हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी, उसके मिशन प्रमुख हैं, HOM होता है अपना हेड ऑफ मिलिट्री, जो हेड ऑफ मिलिट्री है, कमांडर मेजबान देश जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं और जनादेश को वहाँ लागू करते हैं। जो मिशन के सभी घटक हैं जैसे मिलिट्री, पुलिस और जैसे मैंने आपको बताया जी, उनका जी, निर्देशन करते हैं। फोर्स कमांडर है जो हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट है
1: जी,
0: वो थे HOM हेड ऑफ मिशन थे, ये थे हेड ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट, इसी तरह हेड ऑफ पुलिस कंपोनेंट हो गए, मिलिट्री कंपोनेंट में ही पुलिस में भी आ जाती कई बार, है ना। फिर एक होते फोर्स कमांडर, जो वहाँ का दल जो एक्टिवली अब जो वहाँ काम कर रहा है उसके एक कमांडर होते हैं, जिनके नीचे तीनों घटक जो काम करते हैं, समन्वय में काम करते हैं, दिशा निर्देश उनको कई जगहों से मिलते हैं लेकिन वो सामंजस्य बिठा के समन्वय से कार्य करते हैं वहाँ। अब सैन्य घटक जो हैं, ये विभिन्न सदस्य देशों के टुकड़ियां शामिल होती हैं तब ये बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई बल नहीं है,
1: अच्छा।
0: अपना कोई फोर्स नहीं है, ये जो उनके मेंबर सदस्य देश हैं वो लोग उसमें योगदान देते हैं, जैसे भारत के कुछ सैनिक वहां जाते हैं, कंटिंजेंट जाते हैं, बटालियन जाती हैं, उनको कितने सैनिक चाहिए फिर भारत देता है।

0: जी
1: कई सदस्य देश हैं जो देते हैं, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, तमाम देश हैं जिनके जाते हैं वहाँ। पुलिस घटक है, पुलिस घटक में क्या क्या जा सकते हैं, कुछ स्टेट पुलिस से भी जाते हैं सिलेक्टेड लोग, अच्छे सिलेक्टेड लोग, सीआरपीएफ के कंटिजेंट जाते हैं, इसी तरह सीएपीएफ के कई कंटिजेंट्स में से सिलेक्टेड लोग पुलिसकर्मी भेजे जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुलिसिंग का काम है
0: जी जी।
1: वो वहाँ वो करते हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलाह देते हैं कि आप इस तरीके से अब आगे बढ़े तो शांति बहाल होगी। नागरिक घटक इसमें है, पॉलिटिकल्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, लीगल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी हो गए, जो डिसर्मामेंट करेंगे, जो आपको रिलोकेट करेंगे, जो आपको पुनरेकीकरण करेंगे, है ना, इलेक्शन में जैसे सहायता करेंगे, उन कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
0: अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग देश जाते हैं वहाँ पर, तो ये कौन तय करता है कि शांति सेना की आवश्यकता कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर किसी संघर्ष क्षेत्र जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर शांति सेना तैनात कर सकता है, या किस स्थिति में कैसे कब इसे हम तैनात करेंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो दुनिया भर के कितने स्थानों पर शांति सेना भी कार्यरत है?
1: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो प्राथमिक जिम्मेदारी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है
0: जी।
1: किसी जगह की कॉन्फ्लिक्ट इतनी फ्लेयर अप ना हो जाए कि वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले, या जिसमें कई सारी देश शामिल हो जाए, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं कंटेन करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इनके हाथ भी बंधे हैं, वो वहीं जा सकते हैं जहाँ वो दो लोग जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ के दोनों पक्ष राजी हों उस बात को लेकर के, है ना। अपनी तरफ से वो जबरदस्ती बल नहीं भेज सकते, उनके पास है ही नहीं, और ना वो इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे कि दोनों देशों को राजी करें कि वो शांति समझौते पर वार्ता करें और शांति सैनिकों को बुलाएं, तो उनको उनका निमंत्रण दें, उनको बुलाएं, तब ये शांति सैनिक अपने जाते हैं। तो ये कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस की जो है सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद बोलते हैं, करती है। इसी तरह इनका एक प्राधिकरण है जो एक नए मिशन को आधिकारिक तौर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत कर देता है, है ना। इसमें उनको मैंडेट, मिशन का साइज, भाई उसमें कितने सैनिक भेजे जाएंगे, और वो क्या डिसाइड करता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट कितनी बड़ी है, क्या है और उसका स्वरूप क्या है, और उसका उद्देश्य निर्धारित करता है। महासभा, जनरल असेंबली जो है उसके बजट को अधिकृत करती है कि ये बजट क्या है, और जो मेंबर देश है के योगदान जो जा रहा है, जो उनका कंटिंजेंट जा रहा है, जो उनका इक्विपमेंट जा रहा है, जो भी उसकी परिपूर्ति वो करती है। तो तनख्वाहें और जो उनका खर्चा है वो सदस्य देश देते हैं, परिपूर्ति में वो लोग भी देते हैं, है ना। अब आपने पूछा था संयुक्त राष्ट्र अपनी पहल पर क्या पीकेएफ तैनात कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि नहीं, वो नहीं कर सकते। आक्रमणकारी सेना की तरह किसी भी संघर्ष क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते, वो सहमति की आवश्यकता है, ये एक कंडीशन है, केवल आत्मरक्षा के लिए भी है। अब इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कुछ अस्थिर परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद किसी एक मैंडेट को ऑथराइज कर देती है कि जिससे कि नागरिकों की रक्षा हो सके। अब हम विश्व में देखते हैं कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जहाँ हद से ज्यादा नागरिकों को नुकसान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन सुरक्षा परिषद ने परिषद हिले ही नहीं। तो कई बार ये विचार आता है कि सुरक्षा परिषद का क्या रोल है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है कि वो क्या है, वहां पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है, इस तरीके से। इसके लिए एक ये सुरक्षा परिषद ने मिशन की स्थापना के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक पारित करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, उसे संकल्प पारित करते हैं, है ना, एक उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि उसको कितना बड़ा मिशन चाहिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसके कमांडर कौन होंगे, उसके दल कमांडर तक, मतलब एक पूरा एक सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से उनको अधिकृत कर दिया जाता है कि वो अपना सेवाएं बिना किसी लीगल हैसल के दे सकें। अभी तक जो है 11 सक्रिय शांति रक्षा अभियान तैनात हैं 3 महाद्वीपों पर, अफ्रीका में है मोनुस्को, देश बता देता हूँ, ऐसे तो बताना समझना मुश्किल होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, यूनिस्फा, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा। मिडल ईस्ट में है गोलन हाइट्स, लेबनान और जेरूसलम मध्य पूर्व, है ना, और यूरोप एशिया में है कोसोवो, साइप्रस और भारत पाकिस्तान।
0: अच्छा सर, एक और अगला सवाल ये आता है कि क्या हमारा भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अपना योगदान देता है, और देता है तो कैसे देता है, और कहाँ कहाँ भारत ने योगदान दिया है?
1: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े और निरंतर योगदानकर्ताओं में से हमारा देश एक है।
0: जी जी।
1: आज की तारीख में 5,000 से अधिक कर्मी नौ अभियानों में तैनात हैं, 11 में से 9 अभियानों में हमारे
0: बहुत बड़ा आंकड़ा है, हाँ,
1: हमारे कर्मी जो हैं इसमें मिलिट्री पुलिस और मैंने क्या बताया सिटीजन्स ये भी इन्वॉल्व हैं। 1950 से लेकर के अभी तक 50 से अधिक अभियानों में 2,90,000 से अधिक कर्मियों को तैनाती दी गई है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा में, और जो प्रमुख योगदान है आज की तारीख में वो है साउथ सूडान, कॉन्गो, अबई, लेबनान, साइप्रस। और भारत का ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत शीर्ष सैन्य योगदान देने वालों में से एक है
0: जी।
1: कई सारे देश देते हैं लेकिन भारत जो है 3-4 देश जो ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक भारत ही भेजता है, और जो अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है, और ऐतिहासिक रूप से लैंगिक रूप से संवेदनशील शांति रक्षा में हमारे यहाँ से महिलाएं भी गई हैं।
0: अच्छा,
1: लाइबेरिया में तैनात 2007 में लाइबेरिया में तैनात पूर्णता महिला गठित पुलिस इकाई गई थी
0: जी जी।
1: और चूंकि आर्मी में भी अब महिलाएं हैं, अधिकारी लेवल पर भी हैं और लोअर लेवल पर भी हैं, तो वो जाती हैं। मेडिकल हमारे दस्ते जाते हैं उसमें डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं, महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है उसमें
0: जी जी।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कंटिजेंट देखते हैं, मिशंस देखते हैं, उसमें भी महिलाओं का काफी योगदान है, उसमें भी महिलाओं की नियुक्तियां होती हैं
0: जी।
1: भारत ने सेना कमांडर काफी दिए हैं, कई मिशनों में सेना कमांडर, सेना सलाहकार, पुलिस सलाहकार भारत ने दिए हैं, सीनियर पदों पर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह काफी हैं। बलिदान में भी 180 भारतीय शांति सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, ये भी बड़ी योगदान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि सैनिक शांति बहाल करिए स्वयं का बलिदान देखे।
0: सर आपने यूमनो गिप का जिक्र किया था, तो ये क्या है और इसे कब तैनात किया गया था, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
1: ये यूमनो गिप है, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान
0: जी जी।
1: ये एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन है जिसे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा की निगरानी का कार्य सौंपा गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांति रक्षा अभियानों में से, आप सोचिए 48 में इसकी स्थापना हुई थी और 48 से तब से चले आ रहा था
0: जी जी।
1: 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर संघर्ष में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भारत ने किया
0: जी जी।
1: साथ ही पाकिस्तान ने भी किया, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 35 के तहत औपचारिक रूप से ये अनुरोध प्रस्तुत किया था। उस स्थिति का ध्यान देने का आग्रह किया था जहां पाकिस्तानी नागरिकों और जनजातियों को आक्रमणकारी माना जाता है
0: जी जी।
1: वो जनजाति आई थी ना, वहां के ट्राइबल्स आए थे, उन्होंने अटैक किया था, और राज्य के विलय से संबंधित विभाग को हल करने का अनुरोध किया। ये उसी जगह पर हुआ, हर जगह नहीं हुआ कि जम्मू में भी ले लें, तो उसी जगह जहाँ पे ट्राइबल्स आए थे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ
0: जी जी।
1: और इस मिशन की सहमति, जैसे तीन कंडीशंस बताई नहीं, सहमति भारत ने भी दी
0: जी जी।
1: पाकिस्तान ने भी दी, और सुरक्षा परिषद ने 48 में ही कई प्रस्ताव पारित किए, और उन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप इस ऑब्जर्वर ग्रुप की स्थापना हुई। और कब पहुंचा, ये पहुंचा 24 जनवरी 1949 को, ये पर्यवेक्षकों का पहला समूह जो है पहुंचा कश्मीर में, और युद्ध के बाद स्थापित युद्ध विराम की जो स्थिति बनी थी, जो सीज फायर एग्रीमेंट था, सीज फायर के बाद ही गए थे ये
0: जी जी।
1: तो उसके बाद जो है उसकी निगरानी की जा सके, और इसकी जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट, जो औपचारिक स्थापना हुई थी, 30 मार्च 1951 को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से पहले ही ऑब्जर्वर ग्रुप गया अनौपचारिक रूप से, और जो औपचारिक स्थापना हुई 1951 में हो गई।
0: अच्छा,
1: 1951 में हुई, और यूमनो गिप इसको नाम दिया गया
0: जी।
1: तो जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा
0: जी जी,
1: जो युद्ध विराम रेखा सीज फायर के टाइम पे जो बनी गई थी, उसकी निगरानी के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
0: अच्छा सर, हाल ही के अतीत तक पाकिस्तान के साथ चलते इतने सारे संघर्षों को हम देखते हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो यूमनो गिप है, ये हमारी मदद किस प्रकार से करता है? क्या ये मिशन कभी प्रासंगिक रहा है, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ये प्रासंगिक है?
1: देखिए, अतीत की बात करते हैं तो जब ये मिशन स्थापित हुआ था तो युद्ध विराम पे जो नियंत्रण रेखा थी उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया काफी, उस पर काफी नियंत्रण रेखा को पे जो है मिलिट्री कार्रवाई काफी हद तक रोकी गई थी उनके ऑब्जर्वेशन से। बाद के युद्धों में स्पेशली शिमला एग्रीमेंट 1972 का जो हुआ, उसके बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शिमला समझौता जो हुआ था वो द्विपक्षीय एक समझौता था, तो जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और ये माना कि हम इस स्थिति को अब हम यथास्थिति बना के रखेंगे, नियंत्रण रेखा को ही यथास्थिति बना लेंगे, मान लेंगे एक, है ना, और उसको हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। तो जब ये बात मान ली गई तो ये अप्रासंगिक सा ही हो गया। तो ये इनका एक हेडक्वार्टर था जो नवंबर से अप्रैल तक इस्लामाबाद में रहता था और अप्रैल से अक्टूबर में ये श्रीनगर हो जाते थे। कर्मचारी दोनों जगह रहते थे लेकिन हेडक्वार्टर के जो घटक थे वो दोनों देशों के बीच में रहा करते थे। फिर इनको विस्थापित करके दिल्ली में भेजा गया और सन 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ
0: जी।
1: कश्मीर को तो फिर हमारा ही हिस्सा हो गया, फिर वो विवादास्पद स्थिति तो रही नहीं। जब विवादास्पद स्थिति रही नहीं तो भारत ने कहा भाई अब ये हमारा विवाद की हमारी कोई स्थिति है ही नहीं, ये हिस्सा हमारा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो देयर इज नो विवाद ऑन दिस, तो आप कृपया जाएं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी थी कि मिशन को क्लोज कर दिया गया। क्लोज हुआ नहीं। अब इसकी जो स्थिति वो ये है कि भारत कहता है कि ये अब प्रासंगिक है, हमारे बीच में विवाद नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपनी शिकायतें दर्ज कराता रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि ये हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप खत्म नहीं होगा जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास नहीं होगा।
0: जी जी।
1: तो ये मामला यहाँ पे ऐसे अटका हुआ है।
0: अच्छा।
1: बड़ा विचित्र सा ये एक अभियान है कि अब ये चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है।
0: हमारे जो शांति सैनिक हैं उनका चयन कैसे होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, हम आपसे ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे।
1: इनका चयन आजकल जैसे हमारे आर्मी में है सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ मेरिट के हिसाब से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं उनके पुराने ऑपरेशंस के जो अनुभव हैं उनको देखते हुए सेलेक्ट करते, एक कमेटी होती जो सेलेक्ट करती है। इसी तरह जो ऑब्जर्वर्स जाते हैं, मिलिट्री अधिकारी जाते हैं, पुलिस अधिकारी जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, उनकी सर्विस पार्ट के ऊपर, उनके अनुभवों के ऊपर, उनके सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर, और एक चयन प्रक्रिया होती है जिससे उनको चयनित करके भेजा जाता है। भारत में बहुत सम्मान की बात है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में किसी भी तरीके से, किसी भी पद पे, नॉट तरीके से, किसी भी पद पे अपनी सेवाएं देना, ऑब्जर्वर ग्रुप हो या कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देना काफी गर्व का विषय माना जाता है।
0: वास्तव में सर यहाँ आंकड़े तो बहुत कम हैं और किस्से बहुत ज्यादा हैं। हमारे युवा श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं या यूएन में जाकर शांति के लिए काम करना चाहते हैं?
1: आर्मी में जो भी आते हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, महिलाएं भी हैं जवान या अधिकारी के पद पर, सबका एक ये रहता है, एक मन में रहता है कि हम एक यूनाइटेड नेशंस मिशंस में हम अपनी सेवाएं दें। मैंने आपको बताया नहीं, हमारे देश में हमारी सेनाओं में ये बड़े गर्व की बात है और ये चीज पुलिस में भी है, सिटीजन्स का भी है कि भाई उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर के वहां पे नई तरीके से वहां की अवसंरचना दो संरचनाओं में विकास दिया, तो ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन की बात रहती है, लोग जाना चाहते हैं। और युवाओं को भी मैं संदेश देता हूँ कि अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, और अगर बाहर से भी एज अ नागरिक सिटीजन की तरह से उनको मौका मिलता है तो उसको भी देखें, अगर वो आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, सिटीजन्स में है और उनकी अपनी एक अलग प्रतिभा है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो मौका देखें, ढूंढें। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी सारे वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी वेबसाइट पर, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से भी नहीं जाते, कई बार तो यूएन डायरेक्टली भी बुलाते हैं, अलग से भी नियुक्तियाँ हो जाती हैं।
0: जी जी सर, शांति सैनिकों का आज जिक्र हो रहा है, क्या संदेश देते हैं ये शांति सैनिक दुनिया को?
1: इन्वेस्ट इन पीस जो थीम है, शांति बनाए रखें, संघर्ष में ना रहें, संघर्ष जो है काफी नकारात्मक लाता है, आपको पीछे ले जाता है, शांति बनने से ही आपकी तरक्की संभव है, आपको उत्थान है, उसी में ही भलाई है,
0: यही संदेश देते हैं। बिल्कुल सर, अगले 10 सालों में आप यूएन के मिशन के जो बदलाव है उसे कैसे देखते हैं? अगले 10 सालों में हम क्या कुछ और नया अचीव करने वाले हैं?
1: अगले 10 सालों में यूएन मिशन धीरे धीरे अपनी सार्थकता को बढ़ा रहा है। 55 मेंबरों से शुरू हुआ ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आज 193 मेंबर हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
0: जी जी।
1: सदस्य देशों की संख्या बढ़ रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनका जाने का जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स ये भेजते हैं, जो भी मिलिट्री ग्रुप्स भेजते हैं, वो भी बढ़ रहा है, इनका दायरा भी बढ़ रहा है।
0: जी जी।
1: लेकिन जो जिन जगहों पर ये नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और दोनों दलों में से किसी ने नहीं बुलाया या किसी एक ने बुलाया दूसरे ने नहीं बुलाया, वहाँ पर हस्तक्षेप करने की ये अपनी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी, ये शायद बढ़ाएंगे, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे, अपने को मैंडेट इस तरीके से करेंगे कि वहां पर भी हस्तक्षेप कर सकें, क्योंकि कई जगह तो बहुत अन्यायपूर्वक जिसे कहते हैं ना अत्याचार हुए हैं बहुत, जैसे सीरिया में हुए हैं, आईसिस के एक्शंस हुए हैं, याजिदीज का हुआ है, पूरा जेनोसाइड हुए, तो उसमें किसी ने मतलब इनको ना न्योता दिया नहीं गए, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने की ये क्षमता कैसे बढ़ाते हैं ये भी इनके लिए चुनौती भरा काम है, उसमें भी आगे बढ़ेंगे जहाँ तक है मुझे लगता है
0: जी।
1: बढ़ना चाहिए।
0: सर, आम नागरिकों की अगर हम बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आम नागरिक या हमारा समाज इन शांति सैनिकों के सम्मान में क्या कर सकते हैं?
1: बलिदान जिन्होंने दिया हुआ है शांति सैनिकों के बलिदान में, जो नागरिकों का जिन्होंने जिनकी क्षति हुई है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जगह जगह जैसे बताया कि पदक अलंकरण समारोह होते हैं, श्रद्धांजलियां होती हैं, और इसी तरह चर्चाएं हो सकती हैं इनकी जागरूकता की, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एग्जिस्टेंस, कई लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता कि संयुक्त राष्ट्र बल है क्या, इनके बारे में पता लगे, जागरूकता बढ़ेगी तो युवा भी आगे आएंगे, वो भी इसमें कैसे जाएं वो सब पता लगे, जन जागरण अभियान हो। आज के दिन को जैसे हम अन्य दिवसों को समर्पित करते हैं राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको समर्पित किया जाए और कई सारे इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं जहाँ पे इस शांति सुरक्षा बल को और अधिक बल मिले, बढ़ोतरी मिले।
0: तो साथियों, आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। वास्तव में शांति सैनिक बनना आसान नहीं है, जाता भी वही है जिसके पास हिम्मत हो और दिल में दुनिया के लिए दर्द हो। हर किसी का दिल इतना बड़ा तो नहीं होता ना। भारत, हमारा देश भी शांति सैनिक इसीलिए भेजता है ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की उक्ति को चरितार्थ कर सके, दुनिया में युद्ध कम हो, शांति बनी रहे, और इसीलिए भारत का यहाँ तीसरा स्थान है। खैर, स्थान से ज्यादा महत्व है योगदान का, और भारत ने यथासंभव सौहार्द, शांति और भाईचारे के लिए हमेशा से ही यथासंभव अपना योगदान दिया है। श्रोताओं, शांति सैनिक भेजने में भारत का दुनिया में भले तीसरा स्थान हो, लेकिन बलिदान और अनुभव में पहला स्थान है। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उन तमाम सैनिकों के लिए जो शांति मिशन में डटे हुए हैं। हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, और जो हमारे लिए अभी भी सेवाओं में हैं उनके लिए हम सदैव ये कामना करेंगे कि आप सदा सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज की परिचर्चा में उपस्थित थे हमारे साथ हमारे अतिथि महोदय कर्नल अनुराग गुप्ता। सर आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी दी और बहुत बड़ा संदेश भी दिया। धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांति सैनिकों के जो बलिदानी है उनको श्रद्धांजलि देते हुए सभी शांति सैनिकों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इस शांति के मार्ग में प्रशस्त होते रहे।
0: धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं पूनम 42 पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के मानव संग्रहालय में, जहां शनिवार को पूनम 42 के तहत प्रस्तुति हुई। संतूर वादन की कलाकार थे पंडित राहुल शिवकुमार शर्मा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। इसके अंतर्गत आज सुनिए रास बिहारी बोस के बारे में।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आजादी की प्राप्ति में लगा दिया। वे विस्मय प्रकृति के अद्भुत व्यक्ति थे जिनमें एक विशिष्ट तेज और ओज था। उनकी वाणी इतनी सशक्त और गर्जन भरी थी कि सुनने वालों की नसों में खून खौलने लगता था। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनमें वाइसराय बमकांड मुख्य था। उन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा छापकर आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया था। सन 1912 में उन्होंने लॉर्डिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फेंका और फिर बचकर जापान भाग गए। जापान में रहकर भी उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन का संचालन किया। रास बिहारी बोस से प्रेरणा लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्रांतिकारी रास बिहारी का देहावसान 1945 में जापान में हुआ था।
3: अरे राम राम काका,
4: राम राम,
5: राम राम।
3: लो आज हम फिर सब आ गए आपकी शरण में।
4: क्या बात है, क्या घर के खाने से पेट भर गया जो फिर चले आए हो हैं?
6: अरे नहीं काका, भला घर के खाने से कभी पेट भरा है? ये तो आपका प्यार है जो हमें खींच लाता है बार बार आपके पास।
4: हमारा प्यार नहीं, हमारा खाना खींच लाया है तुम सबको।
6: काका आप तो बुरा मान गए, सच ये है कि आपका खाना लजीज होता है,
3: पर इसके साथ साथ कुछ और भी बात तो है काका।
4: वो क्या है बताओ? भला बता दोगे तो आज मैं भाजा के साथ तंदूरी रोटी खिलाऊंगा।
6: अरे अरे भाजा के साथ तंदूरी रोटी?
7: मत बताना कुछ मत बताना।
8: अरे कहाँ भाजा और कहाँ तंदूरी रोटी,
7: अरे ये भी कोई मेल है खाने का?
4: लगता है हमारे काका सठिया गए।
7: हाँ, हाँ?
4: तभी तो कहाँ बंगाल के भाजे के साथ पंजाब का मेल कर रहे हैं।
6: हाँ काका, ये क्या बात हुई बोला।
4: हाँ सही कहा तुम लोगों ने, तुम्हारा ये काका सचमुच सठिया गया है। भाजा के साथ तंदूरी के अलावा बाल मिठाई या चॉकलेट मिठाई परोसता तो तुम लोग सचमुच मुझे बेवकूफ समझते।
7: पर काका आपने तो कभी इस तरह की बेमतलब बातें की नहीं, फिर ये अचानक बंगाल पंजाब और कहां उत्तराखंड की बातें करने लगे।
4: अच्छा तुम ही बताओ, एक आदमी भला कितने तरह की जिंदगी एक साथ जी सकता है?
7: लो यहाँ आदमी अपनी तरह की एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता, उस पर आप कहते हैं कि कितने तरह की जिंदगी जी सकता है। क्या काका आज आपको क्या हो गया है?
4: आज तुम सब जिस शहीद की कहानी सुनोगे वो एक नहीं कई तरह की जिंदगी जीता था।
6: कई तरह की जिंदगी?
4: उसकी यही विशेषता रही कि अंग्रेज पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अपनी चालाकी से उसने पूरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा छकाया कि लोग हतप्रभ रह गए।
7: ऐसा कौन शहीद होगा जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? बताओ ना काका, बताओ ना
6: काका, बताओ ना।
4: हम नहीं बताएंगे, तुम सबको एक क्लू जरूर दे देंगे, समझदार हो तो बता दोगे। वो भारतीय होने के बाद भी जापान का नागरिक था, उसकी शादी एक जापानी लड़की से हुई थी।
7: कौन था भाई?
6: काका आप हमें उलझा रहे हैं। हाँ
7: अच्छा,
6: आपकी सोबत में इतना तो जान गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
7: हाँ सही कहा।
6: क्यों क्यों है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल।
6: और उसकी शादी भी एक जापानी से ही हुई थी, पर जापानी नागरिक कभी रहे नहीं वो। क्यों भाई ठीक है ना?
7: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काका आप तो बता ही दो, अब भाई फिर तो सचमुच भाजा तंदूरी और पहाड़ी बादिये का तो मजा ही आ रहा है।
4: वो शहीद मूल रूप से थे बंगला भाषी, नौकरी की देहरादून में, दिखने में हट्ठे कट्ठे पंजाबी जवानों की तरह। जापानी पत्नी का नाम था तोशी को।

0: रास बिहारी बोस यानी बंगाल के रहने वाले, देहरादून में नौकरी करने वाले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाने वाले, यारों के यार, बम बनाने में उस्ताद और साथ ही अपनी चलाकी और सूझबूझ से अंग्रेजों के हाथ कभी न आने वाले रास बिहारी बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस सच्चे देशभक्त को लोग रासुदा के नाम से भी जानते थे।
1: रासू, हम तंग आ गए हैं तुम्हारी इस भागने की प्रवृत्ति से। आखिर तुम चाहते क्या हो?
2: मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ पिताजी।
1: किस तरह?
2: ब्रिटिश सेना में शामिल होकर।
1: ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला ब्रिटिश फौज में रहकर देश की सेवा किस तरह से करोगे?
2: पिताजी, आपके इस प्रश्न का उत्तर सही सही दूं या गलत रूप से पेश करूं?
1: देखो, झूठ तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सच कहना ही होगा।
2: तो सुनिए पिताजी, मैं ब्रिटिश फौज में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है। यदि हम नौजवान आधुनिक युद्ध कला सीख जाएं, तो हम भारत माता को आजाद कराने की दिशा में कुछ कर सकते हैं।
1: कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम मुट्ठी भर लोग क्या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकोगे?
2: पिताजी, यदि सभी ऐसा ही सोचने लगे तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? हा? इस तरह से भारत माता तो कभी आजाद हो ही नहीं पाएगी।
1: परिवार को दुख पहुंचाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगे?
2: दुखी भारत को सुखी करने के लिए परिवार का दुख बहुत छोटा है पिताजी। एक के अस्तित्व की सार्थकता अनेक हितों के लिए।
1: ठीक है, तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत ही कठिन है बेटा। एक पिता के नाते मैं तुम्हारे लिए केवल मंगल कामना ही कर सकता।
2: पिताजी, अच्छे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया पिताजी, मेरे पिताजी, भारत माँ का ये सपूत आपको
1: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
0: तो ऐसी थी रासुदा के जीवन की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया। देहरादून में वन विभाग में शोध संस्थान में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि प्रयोगशाला में काम करते समय उन्हें ऐसे रसायन मिल जाएं जिससे बम बनाए जा सके। अब रासुदा का क्रांतिकारी रूप खुलकर सामने आने लगा।
2: दोस्त, मुझे प्रेरणा मिली है कि भारत के वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग्स को किसी तरह से मजा चखाया जाए।
3: दादा, बहुत ही जल्द वो दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं।
2: तो फिर देर किस बात की? मैं योजना बनाता हूँ, पर इसके लिए वसंत कुमार विश्वास की मदद लेनी होगी।
3: वसंत विश्वास? दादा, ये कौन है भला?
2: तुम नहीं जानते, मेरा खाना बनाने वाला मेरा नौकर वो विश्वास वास्तव में बम बनाने और उसे चलाने की कला में निपुण है।
3: वाह, क्या बात है रासुदा, इधर रसोईया उधर बम निर्माता, वाह। उसके बनाए भोजन की तारीफ तो देहरादून में कई लोग कर चुके हैं।
2: उस पर किसी तरह का शक ना हो
3: जी,
2: इसलिए उसे इस तरह से जानबूझकर पेश किया गया है। मैं उसे लाहौर भेज दूंगा, जहाँ से वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर हमले की योजना पर काम करेगा। वहाँ अवध बिहारी, बालमुकुंद और दीनानाथ भी हैं।
3: मगर इसके लिए बम कहाँ से मिलेगा?
2: अभी तो मैं चंद्रनगर जाकर बम की व्यवस्था करता हूँ।
3: जी जी,
2: हमें हमला 23 दिसंबर 1912 को करना है।
3: जी,
2: समय बहुत ही कम है, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ। कोई पूछे
3: जी
2: तो कह देना कि रसोईया भाग गया है, इसलिए उसे खोजने गया हूँ।
3: ठीक है दादा, ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। भारत माता की जय।
2: भारत माता की जय।

0: क्यों दोस्त
1: जी?
0: सारी तैयारियां पूरी हो गई, कोई चूक नहीं होना चाहिए।
1: कोई चूक नहीं होगी दादा, हमारी योजना पूरी तरह से पक्की है। नहीं बचेगा ये लॉर्ड हॉडिंग्स, और इसे बचना भी नहीं चाहिए।
0: वो देखो शाही जुलूस कितना लंबा है, हम उसके चांदनी चौक पहुंचने के इंतजार में।
1: हाथी पर उसकी सवारी कितनी बढ़िया लग रही है। देखो दादा, यहाँ भी पूरी शान शौकत के साथ है।
0: आज वसंत अपना काम कर दिखाए तो समझो हमने फतह कर ली।
1: पर वो है कहाँ दादा?
0: अगर वो यहाँ होता भी तो आप उसे नहीं पहचान पाते बंधु।
1: अरे ऐसी क्या बात है उसमें?
0: वो देख रहे हो बैंक की इमारत को?
1: जी जी,
0: वहीं एक महिला के रूप में है वसंत विश्वास। अभी देखना वो अपना काम किस तरह से कर दिखाता है।
2: देखा क्रांतिकारियों का हौसला, अच्छा इस्तकबाल किया लॉर्ड का।
3: क्या हुआ कप्तान साहब? आप तो पुलिस वाले हैं, हमें बताएंगे कि हमारे साहब को क्या हुआ?
2: अरे लॉर्ड साहब को कुछ नहीं हुआ, बम उनके सामने बैठे जमादार पर गिरा है, वो तो मर गया। हमारे लॉर्ड साहब जख्मी हुए हैं भाई।
4: शुक्र है खुदा का, हमारे लॉर्ड साहब बच गए। सचमुच क्रांतिकारियों की तो जात ही नहीं होती, वे सभी को मार डालते हैं।
3: लॉर्ड साहब बेहोश हो गए हैं, वे घायल हैं। अरे बाकी सब लोगों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है।

0: क्या क्या हुआ ऐसा बसंत, तुमसे चूक कैसे हो गई?
1: पता नहीं रासुदा, दरअसल मैं महिलाओं की पत्ती में पीछे बैठा था, इसलिए सही स्थान पर बम पहुंचने में चूक हो गई। मैंने पूरी तैयारी के साथ बम फेंका था। लगता है नाग की किस्मत अच्छी थी।
0: क्या किस्मत अच्छी थी? तुमने बम सिगरेट के पैकेट में रखा था ना?
1: हाँ रासुदा, पूरा काम योजना के अनुसार हुआ था, बस एक छोटी सी चूक हो गई। अब यही चूक बड़ा पछतावा बन गई है मेरे लिए।
0: नहीं नहीं वसंत भाई, नहीं, हम विफल जरूर हुए हैं, पर इससे हमने अपना इरादा बता दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: रासुदा, आप भी इस सेट के लिबास में ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच कोई मारवाड़ी सेट हो।
0: वो तो ठीक है, अब पूरे देश में खलबली मच जाएगी। चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों को खोजने के लिए जाल बिछाया जाएगा। इसलिए वसंत, बेहतर यही होगा कि मैं देहरादून निकल जाऊं, तुम लाहौर निकल जाओ, साथियों की पूरी जानकारी देते रहना।
1: जी जी जी, ठीक है।
2: भले ही रासुदा की योजना विफल रही, पर इस बम कांड से अंग्रेज सरकार चिंता में पड़ गई। पूरे देश में तहलका मच गया।
3: देखा, क्रांतिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सरकार बौखला गई है। बम के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, बंगाल और लाहौर के बम एक ही तरह के थे।
4: पुलिस किस नतीजे पर पहुंची?
3: पुलिस का यह मानना है कि क्रांतिकारियों का कोई एक ऐसा गिरोह है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में समान रूप से सक्रिय है।
4: इधर लिबर्टी नाम का एक अखबार धूम मचा रहा है, उसके बारे में क्या जानते हो?
3: वो अखबार नहीं, पूरा आग का गोला है। आग का गोला, आग उगलता है, उसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं।
4: अच्छा, कौन निकालता है ये अखबार, आप जानते हैं उसे?
3: ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं, इनमें से कौन निकालता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि अखबार पूरे देश में मिलता है।
4: हाँ, शायद इसलिए पुलिस का ध्यान अब बम कांड से हटकर इस अखबार पर केंद्रित हो गया है। कई शहरों में इस संबंध में छापे मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: सचमुच में इस विद्रोही साहित्य में जो भी लिख रहा है उसकी कलम में धार है। मैं कायल हो गया हूं उसकी लेखनी का।
2: लिबर्टी अखबार के माध्यम से पूरे देश में आग फैलाकर रासुदा देहरादून से अपने गृह नगर चंद्रनगर में आ गए। उधर विद्रोही साहित्य और क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश पुलिस ने रासुदा के अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रासुदा के लिए खतरे की घंटी थी। उनके नाम का वारंट निकल गया, इसलिए वे भूमिगत हो गए।
0: भूमिगत रहकर मैंने बगावत की पूरी योजना तैयार कर ली है। ये बिल्कुल 1857 जैसा ही होगा। अच्छा होगा कि बनारस जाकर योजना को और मजबूत बनाया जाए। अरे पुलिस का क्या है, उसका काम है मुझे खोजना, सो वो खोजती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा।
5: वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल। साथियों, आज है 31 दिसंबर 1914। आज हम सब लोग बगावत की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रासुदा ने बगावत की तारीख 21 फरवरी तय की है। इस बैठक में हमारे नए साथी विष्णु गणेश पिंगले के अलावा करतार सिंह सरावा, पंडित परमानंद, बलवंत सिंह, हरनाम सिंह, निधान सिंह, मूला सिंह जैसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं सबसे पहले करतार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें।
6: मैं चाहता हूं कि इस बगावत का नेतृत्व रासुदा ही करें।
7: इसका नेतृत्व रासुदा ही करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, समय आने पर वे आप सबके बीच ही होंगे और अपनी राय खुद तय कर देंगे।
5: अब मूला सिंह जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
8: मैं तो कहता हूं जी कि सचिंदर साहब तो यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग रासुदा के पीछे ही क्यों पड़े हैं? वे बनारस में रहकर भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
5: अब परमानंद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
9: हमें सचिंदर साहब से कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी रासुदा तो हमारे बीच आएंगे ही, हमें अपना काम करते हुए उनका इंतजार करना होगा।
7: रासुदा भी बनारस, पंजाब और कई सीमाओं पर बम के कारखाने लगाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना है।
2: आखिर वह घड़ी आ गई, बगावत की पूरी तैयारी हो गई। रासुदा ने यह ऐलान कर दिया कि जैसे ही म्यांमार की छावनी में विद्रोह भड़के, वैसे ही सभी छावनियों में एक साथ बगावत के इस युद्ध में कूद पड़ना है। कहां की पटरियां उखाड़नी है, कहां के टेलीग्राफ के तार कैसे काटे जाए, पुलों को किस तरह से उखाड़ना है, यह सारे काम रासुदा ने बांट रखे थे। सभी को इंतजार था केवल 21 फरवरी का, किंतु अपनों के बीच से कोई न कोई गद्दार तो निकल ही आता है। इस बार गद्दार के रूप में सामने आया कृपाल सिंह, जिसने पुलिस को खबर दे दी बगावत की योजना विफल हो गई। उधर क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी, इधर रासुदा पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर होने लगे। सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया।

0: लाहौर से बनारस तो पहुंच गया, पर अब क्या दोस्त, पहले यहाँ के साथियों से मुलाकात कर सारी स्थिति की समीक्षा की जाए
1: जी।
0: उसके बाद जो तय होगा वही किया जाएगा।
1: दादा, हमारे साथियों की बैठक कब होनी है?
0: अरे भाई, जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था करें।
1: मैं सारे साथियों को इतला कर देता हूँ, वे सब शाम को उसी गुप्त स्थान पर जमा होंगे।
0: ठीक है, मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूँ।
1: जी जी।
0: साथियों, बगावत की विफलता के बाद हमें किसी नई योजना पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है?
1: अच्छा तो यही होगा रासुदा कि अब आप विदेश चले जाएं और वहां के लोगों को संगठित करें ताकि हमें हथियार मिल सके।
0: इस बारे में हमें हमारे बंगाल के साथियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। मैं बंगाल पहुंचकर आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा।
1: मेरा विश्वास है कि वे लोग आपको देश से बाहर जाने की सलाह देंगे।

0: कलकत्ता तो नहीं पर चंद्रनगर आ गया। अब सारी बातें यही तय हो जाए तो बेहतर होगा। यहां रहना है या सात समंदर पार?
1: ये तो आज की बैठक में तय हो ही जाएगा।
0: देख लेते हैं। तुम शाम को आ रहे हो ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप संभल कर रहेंगे?
0: ये मेरा गृह नगर है, फिर भी यहाँ के रास्तों से गुजरने पर मुझे डर लगता है कब कौन सी गोली सीने को पार कर जाए। बैठक में क्या तय होता है ये देखना है।
2: साथियों, आज इस बैठक में हमें यह तय करना है कि रासुदा को भारत में ही रहना है या फिर विदेश जाना है।
3: बगावत की विफलता के बाद हमें फौज से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी।
4: और ये हथियार हमें भारत से नहीं बल्कि विदेशी धरती से मिलेंगे।
2: इसीलिए मेरा सुझाव है कि रासुदा विदेशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करें।
0: आप लोगों का कहना सही है। दुनिया का कोई भी पराधीन देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना स्वतंत्र नहीं हुआ है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
3: सुनिए रासुदा, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ही दिनों में जापान जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
5: अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रासुदा ने धन की व्यवस्था की, फिर कलकत्ता पहुंचकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से जापान का टिकट खरीदा। 13 जून 1943 को रासुदा और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की इंपीरियल होटल में मिले। यह ऐतिहासिक भेंट थी, दोनों पूरे जोश के साथ मिले। यह भेंट 1 घंटे तक रही। इसके बाद 4 जुलाई 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब रासुदा ने सिंगापुर पहुंचकर कहते भवन के एक समारोह में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।
0: आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या उपहार लाया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उपहार में लाया हूं। आज किसी को भी नेताजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देकर नेताजी का नाम आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसके अलावा मैं तो अंतिम समय तक देश की सेवा में लगा रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।
6: लगातार संघर्ष ने रासुदा को कमजोर कर दिया। नवंबर 1944 को नेताजी रासुदा को देखने पहुंचे थे। ये दो महान नेताओं का अंतिम मिलन था। इस बीच रासुदा की पत्नी तोशिको बोस और पुत्र माशोहोदे का निधन हो गया। करीब करीब टूट चुके रासुदा को जनवरी 1945 को टोक्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कार्यों को देखते हुए बीमारी की ही अवस्था में जापानी सम्राट ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। 21 जनवरी को उनका देहांत हो गया। 25 मई 1886 को जो जीवन दीप जला था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। रास बिहारी बोस को शत शत नमन, शत शत नमन।
7: तो समझे बेटा, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी, राज बिहारी बोस।
1: सचमुच काका, बड़े महान क्रांतिकारी थे वे लोग। ऐसे भारत माँ के सपूतों को शत शत प्रणाम।
8: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यजीत रे के बारे में।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आप सभी को गौसिया खान का नमस्कार और स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं
3: संदीप शर्मा। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार वो व्यक्ति जो शब्दों को कला की तरह गढ़ता है, उन्हें इस तरह सजाता और संवारता है कि वे सीधे दिल और मन पर प्रभाव डालें। जब दुनिया शब्दों में खुद को ढूंढती है, जब कहानी इंसान की आत्मा को छूती है, तब कहीं जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो शब्दों को केवल लिखता नहीं, जो शब्दों को जीवंत कर देता है, जो एक युग गढ़ता है, वही सच्चा शब्दों का शिल्पकार होता है।
1: कभी शब्दों से चित्र बनाए जाते हैं, कभी चित्रों में शब्दों की आत्मा बसती है, और जब ये दोनों मिल जाएं तब जन्म होता है एक ऐसे कलाकार का जो समय से परे युगों तक अमर हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शब्द चित्र बनते हैं और चित्र बोल उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महान रचनाकार की जिसने शब्दों और सिनेमा दोनों में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी, और वह है सत्यजीत रे। एक नाम, एक युग और एक प्रेरणा।
3: सत्यजीत रे एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका नाम केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े सेट, चमक दमक और मनोरंजन की कल्पना करते हैं, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दर्पण बना दिया।
1: उन्होंने आम आदमी की जिंदगी, उसके संघर्षों, उसकी भावनाओं और उसके सपनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करने लगी। सत्यजीत रे वास्तव में एक रचनाकार थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची कला वही होती है दोस्तों जो दिल को छू जाए, जो सोचने पर मजबूर कर दे और समाज को एक नई दिशा दे।
3: 2 मई 1921 को कलकत्ता की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी कल्पना में भविष्य की कहानियां सांस ले रही थी, जिसके हाथों में शायद कलम और कैमरा पहले से ही लिखे थे, और वो बालक था सत्यजीत रे। ये कोई साधारण परिवार नहीं था,
1: ये वो घर था जहां शब्दों की खुशबू बसती थी। दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी एक लेखक, प्रकाशक और कलाकार, पिता जिनकी कविताएं और हास्य आज भी बच्चों के दिलों में बसते हैं। शायद यही कारण था कि शब्द, चित्र और संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए।
3: लेकिन किस्मत ने जल्द ही उनके पिता सुकुमार रे को उनसे छीन लिया। रे को अपने पिता को जानने का अवसर ही नहीं मिला। छोटे सत्यजीत ने बचपन में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों को महसूस किया। सत्यजीत रे को अपने पिता की बहुत कम यादें थी। हालांकि एक घटना जो रे को अपने पिता के बारे में स्पष्ट रूप से याद थी वो तब की थी जब वे अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कलकत्ता के उत्तरी उपनगर में स्थित एक छोटे से शहर सोदेपुर गए थे। जिस घर में वे ठहरे थे वो गंगा नदी के किनारे था और उसमें एक छोटा सा आंगन था। एक दिन उनके पिता खिड़की के पास बैठकर चित्र बना रहे थे। सत्यजीत ने उन्हें जोर से कहते सुना, देखो एक जहाज। जब सत्यजीत दौड़कर आंगन में आए तो उन्होंने एक स्टीमर को गुजरते देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने कोई जहाज देखा था।
1: आपको बताते हैं सत्यजीत रे के बचपन से जुड़ा एक रोचक किस्सा। रे का कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन इससे उन्हें संगति की कमी महसूस नहीं हुई। उनके पहले मित्रों में से एक उनकी घरेलू नौकरानी श्यामा का बेटा छेदी था। छेदी उनसे 5 साल बड़ा था और हमेशा उन्हें रे चौधरी कहकर पुकारता था, और वे पतंग उड़ाने में भी माहिर था।
3: श्रोताओं, विश्वकर्मा पूजा का त्योहार, जब मशीनों की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए पूजा की जाती है, और कलकत्ता में लगभग हर कोई पतंगबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। सत्यजीत के लिए वो विशेष रूप से रोमांचक था। पूजा वाले दिन सुबह सुबह छेदी सत्यजीत को साथ लेकर छत पर चढ़ गया और पतंगबाजी की प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया। सत्यजीत ने रील पकड़ी हुई थी और छेदी की पतंग आसमान में उड़ रही थी। हर बार जब छेदी प्रतिद्वंदी की पतंग काटकर उसे पकड़ लेता तो आस पड़ोस के घरों से खुशी की चीखें गूंज उठती। भोक्ता, तुम्हारी पतंग छूट गई।
1: क्या बात है, उनके बचपन का एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपको आइसक्रीम कैसी पसंद है, गर्म या ठंडी? आप सोचेंगे कैसा प्रश्न है। आप शायद तुरंत पूछेंगे आइसक्रीम तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन युवा सत्यजीत रे के अनुसार ऐसा नहीं था दोस्तों। बचपन में सत्यजीत रे को आइसक्रीम का बहुत शौक था। एक दिन बुला काका और उनकी पत्नी उन्हें कलकत्ता बंदरगाह दिखाने ले गए। शिपयार्ड में अलग अलग रंगों और आकारों की नावों और जहाजों को लंगर डाले देखकर बच्चा बहुत उत्साहित हो गया।
3: और लौटते समय वे एक रेस्तरां में रुके। जब आइसक्रीम परोसी गई तो सत्यजीत उसे चखने के लिए बेताब हो गए, लेकिन आइसक्रीम का पहला चम्मच खाते ही उनके दांत में दर्द होने लगा। बच्चा अचानक अपनी सीट से उठा, आइसक्रीम परोसने वाले वेटर के पास दौड़ा और उससे कुछ फुसफुसाया। उसने जो कुछ भी कहा उससे वेटर को हंसी आ गई। फिर वो मेज पर आया और बताया कि बच्चे ने उससे आइसक्रीम गर्म करने का अनुरोध किया था।
1: क्या बात है, आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी व्यक्तित्वों में से एक और कला भवन में रे के शिक्षक नंदलाल बोस ने एक बार रे से कहा था, एक पेड़ बनाओ लेकिन पश्चिमी शैली में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर नहीं बढ़ता। रेखाएं आधार से ऊपर की ओर होनी चाहिए। इससे रे को यह एहसास हुआ होगा कि कला भी जीवन की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होनी चाहिए।
3: अपने तीन मित्रों के साथ उन्होंने भारत के कलात्मक स्थलों का दौरा भी किया। इस दौरे ने उनका ध्यान भारतीय कला में प्रतीकात्मकता की ओर आकर्षित किया, उन छोटे छोटे विवरणों की ओर जो गहरे अर्थ को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुण जो उनकी फिल्मों में बखूबी प्रदर्शित हुआ।
1: सत्यजीत रे बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी दृष्टि। बचपन से ही उन्हें कला के प्रति गहरी रुचि थी। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जहां दूसरों की भीड़ दिखती थी, वहीं उन्हें कहानी नजर आती थी।
3: और फिर आया वो समय जब उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जहां कला, संगीत और साहित्य एक साथ सांस लेते हैं। यहीं से उनके भीतर का कलाकार पूरी तरह जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो उन्हें ले गया सिनेमा की दुनिया में।
1: ४९४३ में रे ने शांति निकेतन छोड़ दिया और कलकत्ता वापस आ गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजे केमर में नौकरी शुरू कर दी। इनके पद का नाम लघु दृष्टा जूनियर विजुअलाइजर था और महीने के केवल ₹80 का वेतन मिलता था। हालांकि दृष्टि रचना राय को बहुत पसंद थी और उनके साथ अधिकतर अच्छा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन एजेंसी के ब्रिटिश और भारतीय कर्मियों के बीच कुछ खिंचाव रहता था, क्योंकि ब्रिटिश कर्मियों को ज्यादा वेतन मिलता था।
3: 1943 के लगभग ही ये डीके गुप्ता द्वारा स्थापित सिग्नेट प्रेस के साथ भी काम करने लगे। गुप्ता ने रे को प्रेस में छपने वाली नई किताबों के मुखपृष्ठ रचने को कहा और पूरी कलात्मक मुक्ति दी। रे ने बहुत सी किताबों के मुखपृष्ठ बनाए, जिनमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, यानी कुमाऊं के नरभक्षी, और जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। इन्होंने बांग्ला के जाने माने उपन्यास पाथेर पांचाली के बाल संस्करण पर भी काम किया, जिसका नाम था आम की गुठली की सीटी। रे इस रचना से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पहली फिल्म इसी उपन्यास पर बनाई। मुखपृष्ठ की रचना करने के साथ ही उन्होंने इस किताब के अंदर के चित्र भी बनाए। इनमें से बहुत से चित्र उनकी फिल्म के दृश्यों में दृष्टिगोचर होते हैं।
1: रे ने दो नए फॉन्ट भी बनाए, रे रोमन और रे बिजार। रे रोमन को 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला। कलकत्ता में रे एक कुशल चित्रकार माने जाते थे। रे अपनी पुस्तकों के चित्र और मुखपृष्ठ खुद ही बनाते थे और फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री की रचना भी खुद ही इकट्ठा करते थे। भारत में सत्यजीत रे पर कई वृत्तचित्र फिल्में बनाई गई हैं। इनमें प्रमुख हैं भगवान दास गर्गा द्वारा निर्देशित क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे 1964 और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित सत्यजीत रे 1982, उत्पलेंदु चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित द म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे 1984 और गौतम घोष द्वारा निर्देशित रे लाइफ एंड वर्क ऑफ सत्यजीत रे 1999, 2016 में फिल्म डबल फेलुदा की शूटिंग के दौरान सत्यजीत के बेटे संदीप ने अपने पिता के पुस्तकालय का वीडियो भी बनाया था।
3: लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का संगम था ये। आर्थिक चुनौतियां सामने थी, उन्होंने विज्ञापन कंपनी में काम किया, डिजाइन बनाए, लेकिन उनका मन कहीं और ही था, उनका मन था सिनेमा में। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों का अध्ययन किया, किताबें पढ़ी और सिनेमा की बारीकियों को समझा। इसी दौरान उन्होंने एक उपन्यास पाथेर पांचाली पढ़ा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
1: सन 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाई। ये फिल्म बनाना आसान नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन सीमित थे और कोई बड़ा स्टार भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी दोस्तों, उनका जुनून और उनका विश्वास। इस फिल्म में साधारण गांव के गरीब परिवार की कहानी असाधारण संवेदनाओं के साथ दिखाई गई है। इस फिल्म में समाज की वास्तविकता को दर्शाया गया है।
3: और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और पूरी दुनिया ने भारतीय सिनेमा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। इस फिल्म की सादगी और यथार्थता ने हर किसी का दिल जीत लिया और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म केवल फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा का पुनर्जन्म थी।
1: इसके बाद आई अपराजितो और अपूर्व पुरुषसंगसार। इन तीनों फिल्मों को मिलाकर अपूर्व त्रयी कहा जाता है, जो आज भी विश्व सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ये त्रयी एक बच्चे के बचपन को लेकर उसके युवा अवस्था तक की कहानी को दर्शाती है। इसमें जीवन के हर पहलू, खुशी, दुख, संघर्ष और सपनों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई और अपनी रचनात्मकता से नई दिशा प्रदान की।
3: श्रोताओं, फिल्मों के अलावा सत्यजीत रे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे, वे शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए कई लोकप्रिय कहानी भी लिखी। सत्यजीत रे ने फेलुदा नाम के एक जासूस की कहानियों की एक श्रृंखला लिखी, जिसमें बादशाही, अंगती, गोलोक धाम रहस्य जैसी प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शोंकु श्रृंखला में एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकु और एलियन जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1: फेलुदा नामक जासूसी पात्र और प्रोफेसर शोंकु जैसे वैज्ञानिक चरित्र आज पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके लिखने में रोमांच, ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानी हर दिल को छू जाती थी, हर शब्द में एक गहराई और एक कहानी में संदेश छिपा होता था।
3: रे ने कभी भी इस गाथा शैली को नहीं अपनाया। उनकी बाद की फिल्में समय के साथ अधिक केंद्रित होती गईं, जिनमें पारंपरिक कथा के बजाय मनोविज्ञान पर जोर दिया गया। उन्होंने जानबूझकर खुद को दोहराने से भी परहेज किया। परिणाम स्वरूप उनकी फिल्में परिवेश, काल और शैली की एक असाधारण रूप से विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए हैं, जिनमें हास्य, त्रासदी, प्रेम कहानियां, संगीत और जासूसी कहानियां शामिल हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक बंगाली समाज के सभी वर्गों को दर्शाती हैं। हालांकि रे के अधिकांश पात्र औसत दर्जे की क्षमता और प्रतिभा वाले हैं, उनकी वृत्तचित्र फिल्मों के विषयों के विपरीत, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर 1961 और दी रनर आई 1972 शामिल हैं। रे को अंतरात्मा से ग्रस्त व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार ने आकर्षित किया। उनकी फिल्में मुख्य रूप से क्रिया और कथानक के बजाय विचार और भावना से संबंधित हैं। रे की कुछ बेहतरीन फिल्में उपन्यासों या अन्य रचनाओं पर आधारित थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो निर्देशक पर प्रमुख रचनात्मक प्रभाव थे, उनकी रचनाओं में चारुलता 1964 शामिल है, द लोनली वाइफ जो 1879 में एक धनी पश्चिमी प्रभाव वाले बंगाली परिवार में घटित एक दुखद प्रेम त्रिकोण की कहानी है। शायद रे की सबसे उत्कृष्ट फिल्म है। तीन कन्या महिलाओं के बारे में लघु फिल्मों की एक विविधतापूर्ण त्रयी है। जबकि घरे बाइरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1907-8 में स्थापित बंगाल के पहले क्रांतिकारी आंदोलन का एक गंभीर अध्ययन है।
1: रे की हिंदू रूढ़िवादिता और सामंती मूल्यों पर आधारित प्रमुख फिल्मों में जलसाघर 1958 शामिल है, जो संगीत के प्रति एक व्यक्ति के जुनून का भावपूर्ण चित्रण है। देवी 1960, जिसमें जुनून एक लड़की के दिव्य अवतार के प्रति है। सदगति 1981, जो जातीय व्यवस्था पर एक सशक्त प्रहार। और कंचनजंगा 1962, रे की पहली मौलिक पटकथा और पहली रंगीन फिल्म, जो धनी पश्चिमीकृत बंगाली लोगों के बीच निर्धारित विवाह का सूक्ष्म अन्वेषण है। शतरंज के खिलाड़ी 1977, रे की हिंदी भाषा में बनी पहली फिल्म, जो अपेक्षाकृत बड़े बजट से बनाई गई थी, भारत पर पश्चिम के प्रभाव की और भी सूक्ष्म पड़ताल करती है। सन 1856 में भारतीय विद्रोह से ठीक पहले लखनऊ में घटित ये कहानी शासक वाजिद अली के अंग्रेजों के हाथों पतन को उत्कृष्ट व्यंग और करुणा के साथ दर्शाती है।
3: श्रोताओं, रे की बाकी प्रमुख रचनाएं 1943 से 44 के बंगाल अकाल की उनकी मार्मिक कहानी एहसानी संकेत, 1973 दूर की गड़गड़ाहट को छोड़कर मुख्य रूप से कलकत्ता और आधुनिक कलकत्ता वासियों से संबंधित हैं, अरण्येर दिन रात्रि जो कि 1970 में प्रदर्शित हुई थी, इसमें चार युवकों के शहरी रीति रिवाजों से बचने के प्रयास में ग्रामीण यात्रा पर जाने और असफल होने का वर्णन है। 1963 में आई महानगर और 1970 के दशक में बनी फिल्मों की त्रयी प्रतिद्वंदी, सीमाबद्ध और जन अरण्य, क्रांतिकारी माओवादी हिंसा, सरकारी दमन और कपटपूर्ण भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में मध्यम वर्ग के रोजगार के संघर्ष की पड़ताल करती हैं। कुछ समय के अंतराल के बाद जिसमें रे ने पी को 1980 में बनाई और फिर हृदय रोग से बीमार पड़ गए, वे समाज में भ्रष्टाचार के विषय पर लौट आए। हेनरिक इब्सन के नाटक का भारतीय रूपांतरण गणशत्रु 1989, शाखा प्रशाखा 1990 और उत्कृष्ट आगंतुक 1991 अपने सशक्त पुरुष केंद्रीय पात्रों के साथ रे के स्वयं के व्यक्तित्व के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके प्रिय बंगाल के बौद्धिक और नैतिक पतन के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करते हैं।
1: रे ने 1982 में आत्मकथा लिखी जखन छोटो छिलम, जब मैं छोटा था, उनके बचपन की यादों, अनुभवों और शुरुआती जीवन का एक संस्मरण। ये पुस्तक उनके शुरुआती जीवन, पारिवारिक माहौल और उन घटनाओं का वर्णन करती है जिन्होंने उन्हें एक महान फिल्म निर्माता के रूप में ढाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों के विषय पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। 1976 में प्रकाशित इस पुस्तक में रे की लिखी आलोचनाओं का संकलन है। इसके पहले भाग में भारतीय सिनेमा का विवरण और दूसरा भाग हॉलीवुड पर केंद्रित है।
3: श्रोताओं, सत्यजीत रे ने बांग्ला भाषा में लिखा, जो उनकी मातृभाषा थी। सत्यजीत रे को बांग्ला साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाएं न केवल बांग्ला पाठकों में बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी शैली सरल, स्पष्ट और आकर्षित थी, जो पाठकों को आसानी से अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी रचनाओं में विज्ञान, रहस्य और रोमांच का अद्भुत मिश्रण था।
1: दोस्तों, सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ वे एक लेखक, संगीतकार और चित्रकार भी थे। फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही किया करते थे, जैसे पटकथा लिखना, अभिनेता ढूंढना, पार्श्व संगीत लिखना, चलचित्रण, कला निर्देशन, संपादन और प्रचार सामग्री की रचना करना। फिल्में बनाने के अतिरिक्त वे कहानीकार, प्रकाशक, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे।
3: उन्होंने अपनी फिल्मों का संगीत भी स्वयं तैयार किया। ये बहुत दुर्लभ बात है कि एक व्यक्ति इतनी सारी विधाओं में निपुण हो। उनकी फिल्मों में आम आदमी के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी भावनाओं को बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रे को पहेलियों और बहुवर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम था। इसे इनकी कहानियों में भी देखा जा सकता है।
1: सत्यजीत रे की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी। उनकी फिल्मों में शोर नहीं था लेकिन गहराई थी। उनकी कहानियों में दिखावा नहीं था लेकिन सच्चाई ये थी कि वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी को इतनी सादगी और गहराई से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक खुद को उसमें देख पाता है।
3: दोस्तों, सत्यजीत रे ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने ये साबित किया कि सिनेमा मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी फिल्मों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया।
1: सत्यजीत रे केवल एक फिल्म निर्देशक नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक युग और एक प्रेरणा थे। उनकी कला आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची रचनात्मकता सीमाओं से परे होती है।
3: श्रोताओं, उनकी पहली ही फिल्म को तकरीबन एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे चार्ली चैपलिन के बाद सिनेमा से जुड़े अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1987 में फ्रांस के लेंजो द ओनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने उनकी विरासत को मान्यता देते हुए 2021 में अपने वार्षिक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया।
1: सन 1992 में एकेडमी ऑनररी अवार्ड ऑस्कर भी प्रदान किया गया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। ये सम्मान उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है, लेकिन असली सम्मान तो वह है दोस्तों जो लोगों के दिलों में बसता है, और सत्यजीत रे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।
3: अपने पूरे करियर में बनाई गई कुल 3 दर्जन फिल्मों के लिए उन्हें 32 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। ये मुख्तसर सा बायोडेटा दुनिया के चलचित्र पर भारतीय फिल्मों को स्थापित करने वाले उस फिल्मकार का है जिन्हें करीब से जानने वाले माणिकदा के नाम से और दुनिया सत्यजीत रे के नाम से पहचानती है।
1: आखिर ऐसा क्या था सत्यजीत रे के काम में जिसे पूरी दुनिया ने जाना और सराहा, जिसके लिए महान जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा यहाँ तक कह बैठे कि रे की फिल्मों को देखे बिना रहना चांद और सूरज को देखे बिना रहने जैसा है।
3: वाह दोस्तों, सत्यजीत रे के जीवन से जुड़ी खास बात यह भी है कि वे सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करते थे। जब वे किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो वो अपने साहित्य कार्यों, चित्रकला, पटकथा लेखन और संगीत में व्यस्त रहते थे। वे जानते थे कि खुद को कैसे व्यस्त रखना है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रचनात्मक कार्यों का एक विशाल भंडार छोड़ा है जिसका वे भरपूर आनंद उठा सकेंगे। शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक हो जिसने इतने विविध विषयों पर इतनी उच्च कोटि की रचनाएं की हों। रे का लेखन समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। रे को समझने के लिए उनकी लेखन क्षमता, उनके संगीत और चित्रकार रे को समझना आवश्यक है।
1: उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं जिन्हें हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक किस्सा हम आपको बताते हैं। ये उनकी मृत्यु से महज 3-4 साल पहले की बात है। एक बार एक इंडोर सेट पर वे 2 मशहूर अभिनेताओं को निर्देशित कर रहे थे। कमरे में मची अफरा तफरी के बीच भी वे पूरी तरह शांत थे, चुपचाप कैमरे वालों को ध्यान से देख रहे थे और सेट में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए कह रहे थे।
3: उनके आसपास के लोग उनसे काफी छोटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बीच मौजूद उस महान व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शायद ही कभी बोलते या दखल देते थे, लेकिन जैसे ही शूटिंग का समय नजदीक आता वे कमान संभाल लेते और सटीक निर्देश देते। अचानक पूरा मंच जीवंत होता, सब लोग सजग हो जाते। वे धीरे धीरे अभिनेताओं की गतिविधियों को निर्देशित करते, संवाद बोले जाते, शॉट लिए जाते और बस कोई दोहराव नहीं। अभिनेताओं को रे के निर्देश इतने कोमल, इतने सच्चे थे कि आप दंग रह जाते हैं।
1: उन्हें सेट पर निर्देशन करते देखना रे के बारे में कई निबंधों से कहीं अधिक जानकारी देता है। वे सेट पर किसी भी तरह की लापरवाही के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बार उत्तम कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे सबसे शांत और गंभीर अभिनेताओं में से एक थे जो उनकी ही तरह अभिनय से पहले पूरी तरह मौन रहते थे।
3: सत्यजीत रे का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि यदि हमारे अंदर जुनून, मेहनत और सच्चाई है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने काम के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची कला वही है जो दिल को छू जाए और समाज को एक नई दिशा दे। आज भी जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो हमें केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन भी दिखाई देता है। वे छोटे छोटे पलों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वही पल जीवन का सार बन जाते थे। उनकी कला हमेशा अमर रहेगी।
1: सिनेमा केवल चित्रों का खेल नहीं है, भावनाओं की भाषा है और इस भाषा के महान शिल्पकार थे सत्यजीत रे। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे का निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है।
3: सत्यजीत रे का अध्ययन बेहद ज्ञानवर्धक हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन अगले ही पल इस कठोर वास्तविकता का दुखद एहसास हो जाता है।
1: उनकी फिल्में, उनकी कहानी, उनका संगीत आज भी हमें प्रेरित करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। सत्यजीत रे का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों कि सच्ची सफलता वही है जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज में कुछ नया और बेहतर दे सके।
3: उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। हमें सत्यजीत रे जैसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में मेहनत, लगन और रचनात्मकता को अपनाना चाहिए। वे केवल लेखक नहीं थे, वे केवल निर्देशक नहीं थे, वो थे शब्दों के शिल्पकार। तो श्रोताओं, आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में बात यहीं तक। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी की जिंदगी के डायरी के पन्ने पलटेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन वनीता जैन। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मैंने, यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
1: और मैंने यानी खौसिया खान ने।
3: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा कर स्वामी जी बेलूड़ मठ लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। शिष्यों ने उन्हें परिश्रम न करने की सलाह दी, पर वे कहां मानने वाले थे। पठन पाठन, शिष्यों और दर्शनार्थियों से शास्त्रों की आलोचना पूर्ववत चल रही थी। साथ ही साथ चल रहा था वैद्य जी का इलाज। इलाज के दौरान कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्वामी जी को नींद नहीं आती थी।
1: उन्हीं दिनों मठ में एक नया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा गया। नई चमकदार पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने कहा,
2: इतनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, एक जीवन में इन्हें पढ़ लेना संभव ही नहीं।
1: शिष्य नहीं जानते थे कि स्वामी जी ने इन पुस्तकों में से 10 खंडों का अध्ययन समाप्त कर 11वें खंड को पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने कहा,
3: मैंने 10 खंड पढ़ लिए हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बता दूंगा।
2: क्या आपने इन्हें पढ़ लिया है?
3: और क्या, बिना पढ़े ही कह रहा हूँ।
0: इसके बाद स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों में प्रश्न करने लगा। स्वामी जी ने उन प्रश्नों के जवाब तो दिए ही, कहीं कहीं उस पुस्तक की भाषा तक ज्यों के त्यों बोलने लगे। शिष्य स्वामी जी की असाधारण याददाश्त देख विस्मित होकर पुस्तकों को यथास्थान रखते हुए कहने लगा,
2: आश्चर्य! नहीं नहीं नहीं, ये मानवीय शक्ति नहीं हो सकती, असंभव।
3: देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर सकने पर सभी विद्याएं एक पल में सीख ली जा सकती हैं। मनुष्य का श्रुति घर स्मृति घर बन जाता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारा देश विनष्ट हो गया।

0: इसी वर्ष स्वामी जी की इच्छा हुई मठ में दुर्गा पूजा करने की। स्वामी जी के संकल्प की बात जानकर स्वामी ब्रह्मानंद आदि उनके गुरु भाई तथा अन्य शिष्यगण बड़े उत्साह पूर्वक पूजा का सामान जुटाने लगे। किसी प्रकार की पूजा अथवा धार्मिक कृत्य को संकल्प पूर्वक करने का अधिकार सन्यासी का नहीं होता, इसलिए स्वामी जी ने शारदा माता जी की अनुमति मांगी। माता जी ने अनुमति दी कि उन्हीं के नाम पर संकल्प होगा। इससे स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यथा समय कुमार टुली से प्रतिमा मठ में लाई गई। पूजा के पहले दिन शारदा माता जी ने अपने बाग बाजार वाले निवास स्थान से मठ में आगमन किया। उनकी अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल महाराज सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर बैठे।
1: पंडित ईश्वरचंद भट्टाचार्य महाराज ने भी श्री माताजी के निर्देश पर देवगुरु बृहस्पति की तरह तंत्र धारक का आसन ग्रहण किया। यथाशास्त्र श्री दुर्गा माता की पूजा समाप्त हुई। श्री माताजी की इच्छा के अनुसार मठ में पशु का बलिदान नहीं हुआ। बलि के अनुकल्प के रूप में चीनी का नैवेद्य और मिठाई के ढेर प्रतिमा की दोनों ओर शोभायमान थे।
0: गरीब दुखी तथा असहायों को देहधारी ईश्वर मानकर संतोष पूर्वक भोजन कराना इस पूजा का विशेष अंग माना गया। इसके अतिरिक्त वेलूड़, बाली तथा उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पंडितों को भी निमंत्रित किया गया और वे सभी आनंद पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उस समय से मठ के प्रति उनका पूर्व विद्वेष दूर होकर ये विश्वास हो गया था कि मठ के सन्यासी गण यथार्थ में हिंदू सन्यासी हैं। श्री दुर्गा पूजा के बाद स्वामी जी की इच्छा के अनुसार मठ में प्रतिमा के सहयोग से श्री लक्ष्मी पूजा तथा श्री काली पूजा भी शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठित हुई।
1: काली पूजा के बाद स्वामी जी अपनी माँ के साथ कालीघाट गए। बाल्यकाल में एक बार स्वामी जी को कोई कठिन रोग हुआ था। उस समय उनकी माँ ने मनोती मांगी थी कि पुत्र के रोग मुक्त होने पर काली देवी की विशेष पूजा देंगी और काली मंदिर में उनको लोटपोट करा लाएंगी। बाद में वे ये बात भूल गई थी। इस समय स्वामी जी की अस्वस्थता की बात सुनकर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करके पुत्र के पास समाचार भेजा। जननी के आदेश के अनुसार काली घाट की आदि गंगा में स्नान करके भीगे वस्त्र सहित स्वामी जी श्री काली माता के पद कमलों में 3 बार लोटपोट हुए।
0: इसके बाद 7 बार मंदिर की प्रदक्षिणा समाप्त कर उन्होंने सभा मंडप के पश्चिम भाग में खुले आंगन में बैठकर होम करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। होम कुंड में घृत की आहुति देते हुए कामदेव सदृश कांति वाले सन्यासी मानो ब्रह्मा के सदृश लग रहे थे। अनेक लोग स्वामी जी को घेर कर उनके यज्ञ संपादन का दर्शन करने लगे। स्वामी जी ने मठ में लौटकर आनंद से कहा,
2: काली घाट में अभी भी कैसा उदार भाव देखा। मुझे विलायत से लौटा हुआ जानकर भी मंदिर के अध्यक्षों ने मंदिर में प्रवेश करने में किसी प्रकार बाधा न दी, बल्कि बड़े आदर के साथ मंदिर में ले जाकर इच्छा के अनुसार पूजा करने में मेरी सहायता की।

0: के दुमंजिले पर गंगा की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित था। उनके दिन का काफी समय इसी कमरे में बीतता। यही कमरा उनके भोजनालय और कार्यालय के रूप में भी काम आता। इसी कमरे में उनके वस्त्र, बिस्तर, आसन, चायदानी, मेज, कुर्सी, आलमारी, खड़ाऊ, लिखने के उपकरण, वाद्य यंत्र तथा अन्य उपयोग की चीजें जैसे पहले थी, अब भी ठीक उसी प्रकार रखी हुई है। वो कमरा और कोई उपयोग में नहीं लाता, केवल कोई कोई वहां जाकर ध्यान आदि करता है। अपने कमरे की साज सज्जा को किस तरह से देखते थे, ये एक बार उन्होंने ही कहा था। एक दिन उनके कुछ दोस्तों ने कहा,
1: स्वामी जी, बचपन में विवाह करने के लिए कहने पर तुम कहते थे, विवाह नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा देखना। तो तुमने जो कहा था वही किया स्वामी जी।
2: हाँ भाई, किया तो है। तुम लोग देख तो रहे हो, कुछ खा नहीं पाता और उस पर इतना परिश्रम। बाप रे, कितनी मेहनत की है। आज अमेरिकी लोगों ने देखो कैसी प्यार से खाट, बिछावन तथा गद्दी दी है। थोड़ा खा भी पा रहा हूं, परंतु भाई भोग मेरे भाग में नहीं है। गद्दी पर सोते ही रोग बढ़ जाता है, दमे से प्राण निकलने लगते हैं। पुनः फर्श पर लेटता हूं तभी चैन मिलता है।
3: अपने सदा के अभ्यास के अनुसार वे बड़े तड़के में ही शैया त्याग देते और बाकी मठवासियों को भी जगाकर ध्यान, जप आदि में लग जाने को कहते। स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वयं भी सबके साथ मंदिर में ध्यान करने बैठते। इसके बाद उनका सुबह का कार्य था गौ सेवा तथा उद्यान की देखभाल। स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर सब्जी तथा फूल के बगीचे की जिम्मेदारी थी। उसके बगल में ही गायों के चरने का मैदान था। इन दोनों भूखंडों के सीमा विभाग को लेकर वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ कितनी ही बार बालकोचित प्रेम कलह में लग जाते, ताकि गायें बगीचा चर न जाएं, और मठ के सन्यासीगण बड़े आनंद का उपभोग करते।
0: मठ के छोटे बड़े सारे कर्मों में स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी और मठवासियों में से भी प्रत्येक उनकी सेवा करने की अवसर पाने को तत्पर रहता। नाव में होकर मठ से कलकत्ता जाते समय मल्लाह लोग उन्हें अपनी अपनी नाव में ले जाने के लिए झगड़ते। कभी कभी वे केवल कौपीन पहने मठ में चारों ओर घूमते अथवा एक बड़े लबादे से शरीर को ढककर गांव के निर्जन पथों पर अकेले ही घूमते। कई बार वे गंगा के तट पर अथवा मठ के भीतर किसी वृक्ष की घनी छाया में बैठे रहते। फिर अन्य किसी किसी समय वे अपने कमरे में बैठकर पुस्तकों के पन्ने पलटते या चित्र देखते। कभी कभी वे रसोई घर में जाकर रंधन कार्य का निरीक्षण करते और स्वयं अपनी इच्छा से दो एक अच्छी पकवान भी तैयार करते।
3: पशु पक्षियों के प्रति शैशव काल से ही स्वामी जी के मन में एक स्वाभाविक आकर्षण था। उनमें से किसी के भी उद्यान में घुसते ही ब्रह्मानंद शिकायत करते और स्वामी जी पशुओं का पक्ष लेकर प्रमाणित करने लगते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मठ में उन्होंने कुछ गायें, बत्तख, कुत्ते, बकरियां, सारस तथा हिरन पाल रखे थे। एक बकरी का नाम उन्होंने हंसी रखा था और उसी के दूध से उनकी सवेरे की चाय बनती थी। एक बकरी के बच्चे को वो प्रेम पूर्वक मटरू कहकर पुकारते थे और उसके गले में उन्होंने घुंघरू पहना दिए थे। मटरू दिन रात उनके पीछे पीछे घूमता रहता और वो भी उसके साथ छोटे बच्चों के समान दौड़ दौड़ कर खेला करते।
0: वे तत्कालीन समाज में प्रचलित अदब कायदों की विशेष परवाह नहीं किया करते थे। कभी पांव में खड़ाऊ पहने, कभी नंगे बदन, कभी गेरुआ पहने तो कभी केवल कौपीन पहने, वे जैसी खुशी घूमते रहते। कभी कभी उनके हाथ में हुक्का या लाठी होती। कोट, शर्ट, कॉलर, जूता इत्यादि का कोई झंझट ही नहीं था। उन दिनों वे पूर्णतया स्वच्छंद अपने निर्जन मानस भूमि पर निवास कर रहे थे। नए लोग श्रद्धापूर्वक उनका दर्शन करने को आ पहुंचते। वे स्वामी जी की अवस्था देखकर कहते, अच्छा तो ये ही विश्व विजयी स्वामी जी विवेकानंद हैं।
3: अपने पशु पक्षियों से उन्हें इतना प्रेम था कि कुछ दिन बाद मटरू के मर जाने पर उन्होंने खेत पूर्वक कहा था,
2: बड़े आश्चर्य की बात है, मैं जिससे भी थोड़ा प्यार करता हूँ वही मर जाता है।
3: इन जंतुओं के आहार आदि की व्यवस्था वे स्वयं ही करते और स्वामी सदानंद इसमें उनके प्रधान सहायक थे। वे उन सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप आदि भी करते, मानो वे मनुष्यों के समान ही समझदार और बुद्धिमान हों, जैसे वे जानवर नहीं मानव हों। एक दिन उन्होंने हंसते हुए कहा था,
2: मटरू अवश्य ही पिछले किसी जन्म में मेरा कोई संबंधी रहा होगा।
3: बीच बीच में वे बकरी हंसी के पास जाकर दूध के लिए अनुरोध करते, मानो दूध देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर हो। इन प्राणियों के प्रति उनके स्नेह की स्पष्ट छाप 7 सितंबर को भगिनी क्रिस्टीन के नाम लिखे उनके पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
2: वर्षा का जो जल मठ में जमा हो जाता है उसके निष्कासन के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। उसी कार्य में हाथ बटाकर मैं अभी अभी लौटा हूं। मेरा विशाल काय सारस तथा बतखें सब बड़े आनंद में हैं। मेरा पाला हुआ काला हिरन मठ से भाग गया था। उसे ढूंढ निकालने में कई दिनों तक हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मेरी एक बतख कल दुर्भाग्यवश मर गई। उसे लगभग सप्ताह भर से सांस लेने में कष्ट हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर हमारे एक वृद्ध रसिक साधु कह रहे थे, महाराज जब इस कलयुग में नमी और वर्षा से बतख को जुकाम हो जाता है और मेंढक छींकने लगते हैं तो फिर जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। एक बतख के पंख झड़ रहे थे। इसका कोई उपचार न मालूम होने के कारण एक पात्र में थोड़े जल में किंचित कार्बोलिक एसिड मिलाकर उसे उसमें कुछ मिनट के लिए ये सोचकर डाल दिया गया था कि या तो वो पूरी तौर से चंगी होठेगी अथवा मर जाएगी, परंतु अब वो ठीक है।
0: मठ के कुत्ते का नाम था बाघा। वो मठ के अन्य सभी जानवरों की रखवाली करता, दादागिरी भी करता और सोचता कि मठ में उसका एक विशिष्ट स्थान है। एक बार उसकी अत्यधिक शैतानी से तंग आकर उसे गंगा के उस पार ले जाकर छोड़ दिया गया था, परंतु बाघा को यह व्यवस्था स्वीकार न थी। उसे मठ से लगाव था और विशेषकर स्वामी जी को छोड़कर वो रह ही नहीं सकता था। दिन भर बड़े कष्ट में बिताने के बाद शाम तक उसने उपाय सोच लिया और एक नाव में चढ़ बैठा। जब नाव के मल्लाहों और यात्रियों ने उसे भगाने का प्रयास किया तो भी वो उतरा नहीं, बल्कि दांत निकालकर गरजते हुए उन्हें धमकी देने लगा।
3: किसी तरह उसे चुपचाप पार उतरा देना ही उचित समझकर सबने उसे इस पार छोड़ दिया। इस पार आकर वो रात उसने इधर उधर छिपकर बिताई। भोर के 4 बजे जब स्वामी जी स्नान घर में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय पांव किसी चीज से टकरा जाने पर वे चौंक उठे और ध्यान से देखा तो वो बाघा निकला। बाघा उनके चरणों में लौटकर विनय पूर्वक क्षमा मांग रहा था और फिर से मठ में रहने की याचना कर रहा था। उसने ठीक समझ लिया था कि इस विपत्ति से एकमात्र स्वामी जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए अन्य किसी की भी नींद खुलने से पहले ही जहां पर स्वामी जी की शरण पाई जा सकती है वहीं बैठकर वो प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाकर स्नेह दिखाते हुए उसे आश्वस्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सबको बोल दिया कि बाघा चाहे जो भी करे अब उसे मठ से भगाया नहीं जा सकेगा।
0: बाघा की और भी कई बातें बड़ी अद्भुत थी। ग्रहण के बाद संध्या पूजन के समय शंख घंटे बजने पर यह भी सबके साथ स्नान करने गंगा में उतरता था। स्वामी जी के देह त्याग के काफी दिनों बाद जब बाघा की मृत्यु हुई तो उसका शव गंगा में विसर्जित कर दिया गया। ज्वार के पानी के साथ उसका शरीर बहकर चले जाने पर भी भाटे के समय सबने विस्मय पूर्वक देखा कि वो मठ की सीमा में ही गंगा की मिट्टी पर पड़ा है। इससे मठ के प्रति बाघा के लगाव का परिचय पाकर एक ब्रह्मचारी ने वरिष्ठ सन्यासियों की अनुमति लेकर बाघा को वहीं पर दफना दिया।

0: उन दिनों जाड़े के मौसम में प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। उस वर्ष दिसंबर में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होने तथा स्वामी जी के बेलूर मठ में उपस्थित रहने के कारण अनेक नेता उन्हें न केवल विश्व प्रसिद्ध साधु के रूप में बल्कि भारतीय नवजागरण के एक देश प्रेमी अग्रदूत मानकर उनसे मिलने को आया करते थे। स्वामी जी अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य की बात भूलकर सदा ही इन देश नायकों के साथ वार्तालाप को प्रस्तुत रहते थे और श्रोतागण भी इससे मुग्ध हो जाते तथा स्वामी जी की बातें उनके मन में अंकित हो जाती।
1: स्वदेश की अनेक समस्याओं पर उन्होंने चिंतन किया था और उनके समाधान भी ढूंढ निकाले थे, परंतु सुयोग्य कर्मियों के अभाव में उन विचारों के कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतएव आग्रह करने वाले श्रोता मिलने पर वे उत्साह पूर्वक दीर्घ काल तक इन बातों पर चर्चा करते थे। एक दिन मठ के विस्तृत प्रांगण में टहलते हुए वे उत्साह और आवेग पूर्ण भाव से लगभग 1.5 घंटे तक एक विषय पर बोलते रहे। इन साक्षात्कारों का उल्लेख करते हुए एक अखबार में छपा था,
2: पिछले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ते में हमारी उनके साथ अंतिम बार भेंट हुई थी। उस समय उत्साह के साथ उन्होंने हम लोगों से जिस विशुद्ध तथा उच्च कोटि की हिंदी में धारा प्रवाह वार्तालाप की, वैसी भाषा बोल पाना किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात होगी।
0: राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय श्रीयुत मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, वे भी स्वामी जी के दर्शनार्थ बेलूर मठ आए थे, परंतु उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है,
3: ब्रह्म समाज के घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद विवेकानंद को देखे बिना रह पाना मेरे लिए संभव न था, इसलिए मैं बड़े उत्साह के साथ लगभग सारा रास्ता ही पैदल चलता हुआ बेलूर मठ गया था। मठ का शांत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी उस समय अस्वस्थ होकर कलकत्ते के मकान में थे, इस कारण उनसे भेंट होना संभव नहीं, ये जानकर मैं बड़ा निराश और दुखी हुआ था।
1: उस समय स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण सामान्य आगंतुकों को उनके पास मिलने नहीं दिया जाता था। एक दिन लोकमान्य तिलक मठ के दक्षिणी भाग में बेल के पेड़ के नीचे नाव से उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ एक कार्ड एक वृद्ध साधु को दे दिया, परंतु साधु ने बताया कि स्वामी जी बीमार हैं और उनसे भेंट नहीं हो सकती। तिलक अपना कार्ड छोड़कर चले गए। संध्या के समय जब स्वामी जी नीचे उतरे तो कार्ड पाते ही उन्होंने तिलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वे तो जा चुके थे। ये सुनकर स्वामी जी बड़े नाराज हो गए और बोले कि उन वृद्ध साधु ने अनुचित कार्य किया है और कहा कि वे वृद्ध साधु निश्चयानंद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके लिए उचित था कि वे तिलक का नाम जानते और स्वामी जी के साथ उनकी भेंट कराते। स्वामी जी ने पत्र लिखकर तिलक से पुनः आने का अनुरोध किया और 2 दिनों के भीतर ही तिलक आए भी।
0: तिलक के साथ मठ के दक्षिणी ओर के मैदान में टहलते हुए स्वामी जी ने उनके साथ बातचीत की। उनके निकट दूसरा कोई भी न था, तो भी दूर से दिख रहा था कि स्वामी जी प्रेरणा के आवेग में सिर तथा हाथ हिलाते हुए बोलते जा रहे थे और तिलक धैर्य तथा शांति के साथ सुन रहे थे। निश्चयानंद के मतानुसार तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के बीच ही सीमित था। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद से ही वो जनता के बीच में फैल गया। उनके मतानुसार लोकमान्य तिलक ने और भी कई बार मठ में आकर स्वामी जी के साथ बातचीत की थी और एक दिन स्वामी जी ने मुगलाई चाय बनाकर उन्हें पिलाई थी। जायफल, जावित्री, इलायची, लवंग, जाफरान आदि को एक साथ मिलाकर उबालने के पश्चात उस काढ़े में चाय की पत्ती, दूध तथा चीनी मिलाकर वो चाय बनी थी।

0: दीन दरिद्र अभागों के लिए स्वामी जी का मन रोता रहता था, अतः वे हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उसी संदर्भ में एक घटना का वर्णन सुनिए।
1: उन दिनों मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी काटने के लिए प्रतिवर्ष कुछ संथाल स्त्री पुरुष आया करते थे। उनके साथ मिलकर स्वामी जी उनके सुख दुख पर चर्चा करते तथा तरह तरह से हास परिहास भी किया करते। उनमें से एक का नाम केष्टा था। वो स्वामी जी का प्रिय पात्र तथा कामकाज में बड़ा होशियार। स्वामी जी जब उससे बातें करने जाते तो कभी कभी वो कह उठता,
2: अरे स्वामी जी बाप, तू हमारे काम के समय यहाँ ना आया कर। तेरे साथ बात करने से हमारा काम बंद हो जाता है और बाद में बूढ़ा बाबा आकर डांटता है।
3: नहीं नहीं, बूढ़ा बाबा नहीं डांटेगा। तू अपने देश की बातें बता। अच्छा ये बता, आज यहाँ खाना खाएगा क्या?
2: नहीं बाप, नहीं नहीं, अब हम तुम लोगों का छुआ नहीं खाते। अब मेरा ब्याह जो हो गया है, तुम्हारा छुआ नमक खाने से हमारी जात जाएगी रे बाप।
3: तो नमक मत खा, बिना नमक का तरकारी पका देंगे, तब तो खाएगा ना।
0: केष्टा राजी हो गया। स्वामी जी ने उसके लिए पूड़ी, तरकारी, मिठाई, दही आदि की व्यवस्था कर दी।
2: अरे स्वामी जी बाप, ऐसी चीजें कहाँ से पाई? हमने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया बाप, कभी नहीं खाया।
1: स्वामी जी ने स्वयं सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया और बोले,
3: तुम लोग नारायण हो, आज मेरा नारायण को भोग देना पूरा हुआ।
0: भोजन के बाद संथाल लोग तृप्त होकर चले गए तो स्वामी जी ने शरद बाबू से कहा,
3: इन्हें देखा मानो साक्षात नारायण है। ऐसा सरल चित्त, ऐसा निष्कपट सहज प्रेम पहले कभी नहीं देखा।
0: तदनंतर मठ के सन्यासियों की ओर उन्मुख होकर वे बोले,
3: देखो वे लोग कैसे सरल हैं, इनके दुख थोड़ा दूर कर सकोगे? नहीं तो गेरुए वस्त्र पहनने से क्या लाभ हुआ? पर हिताय सर्वस्व अर्पण, इसी को सच्चा सन्यास कहते हैं। अच्छी चीजें कभी इन्हें भोग करने को नहीं मिली। जी में आता है कि मठ सब बेचकर इन्हीं गरीब दुखी दरिद्र नारायणों में बांट दूं। हमने तो वृक्ष के नीचे वास करने को ही सार समझा है। आह, देश के लोग खाने पहनने को नहीं पाते, फिर हम कैसे अपने मुख में अन्न डालते हैं? हाय।
1: कहते कहते उनके आंखों से आंसुओं की धार बह चली। थोड़ा संभल कर वे बोले,
3: देश के गरीब दुखियों के लिए कोई नहीं सोचता है रे। जो लोग राष्ट्र के मेरुदंड हैं, जिनके परिश्रम से अन्न उपजता है, जिन लोगों के एक दिन काम बंद कर देने से नगर में हाहाकार मच जाता है, हाय, उन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, उनके दुख शोक में सांत्वना देने वाला देश में कोई नहीं है रे। देखना, हमारी सहानुभूति के अभाव में मद्रास अंचल के हजारों पैरिया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग दिन रात उनसे यही कहे जा रहे हैं, छूना मत, छूना मत। देश में क्या अब दया धर्म नहीं बचा है रे भाई? केवल छुआछूत मानने वालों का दल है। ऐसे आचार व्यवहार के मुख पर मारो झाड़ू, मारो लाठी। तुम लोग बुद्धिमान लड़के हो, यहां इतने दिनों से आ रहे हो, अब तक क्या किया है बोलो तो? दूसरों के लिए क्या एक जन्म दान में नहीं दे सकते? अगले जन्म में आकर वेदांत आदि पढ़ लेना। इस बार परोपकार के लिए शरीर दान दे दो, तभी समझूंगा कि मेरे पास आना सार्थक हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।